0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक, दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ, चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ, शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम कपालभाति अग्निसार भस्त्रिका भ्रामरी। यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्र चित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस स्फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन
मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को, तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका
पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन

और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती इस पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति

नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा, हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के, रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समाहित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप, जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आज बात

उठो जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा है। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र, रब राखा सब राखा। और हाँ जी, आप सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक शो पहली किरण, और आज का दिन है बेहद खास। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम मना रहे हैं हनुमान जयंती, वो दिन जो हमें एक ऐसा बालक देके गया जिसने हमें ये समझाया कि बल क्या है, बुद्धि क्या है, और हाँ, गिर गए हैं तो उठना कैसे है। वो जब बचपन में प्रभु श्री राम के भक्त यानी हनुमान जी ने सूर्य को निगला था और उसके बाद में उनको दंड स्वरूप बहुत कुछ झेलना पड़ा। बचपन में इतनी चंचलता जैसे हर बच्चे में होती है, हर एक बच्चा नटखट होता है। उसके बाद जब आपकी प्यारी सी सौम्य वाली मुस्कान यानी मासूमियत आगे आती है तो सभी बड़े जन आपको माफ कर देते हैं, और आप इस चंचलता के चलते अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं, अपनी ही शक्तियों पे कैसे आपको पकड़ पानी है, ये सिखाया हमें हनुमान जी के जीवन ने। प्रभु बजरंगबली के जीवन से हमें अगर कोई शिक्षा मिली है तो वो ये है कि हमें अपनी शक्तियों पे नियंत्रण कैसे पाना है। इसके अलावा अपनी भक्ति से हम कैसे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, यानी वो भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की नहीं, अपने माँ बाप की नहीं, अपने काम की भी हो सकती है, आपके अपने गुणों को निखारने की भी हो सकती है। फिलहाल ऐसी बहुत सारी जानकारियों को आज हम आपसे साझा करेंगे, श्री बजरंगबली के चरणों में अर्जी लगाएंगे, हाजिरी लगाएंगे, भजन का भी आनंद लेंगे, साथ ही साथ में आज का जो ये बेहद खास वाला दिन है यानी हनुमान जयंती है उसको भी मनाते रहेंगे आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में इन योर ओन मॉर्निंग वाला शो। जी हाँ, पहली किरण।

शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विनम्रता और संयम जुड़ा हो। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। हम भी अपने ज्ञान, ताकत और सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई में करें, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और जो सबसे बड़ा हमारे अंदर धर्म होता है जिसको हमें निभाना चाहिए, वो है इंसानियत का। जब हम एक किसी पार्टिकुलर धर्म से ऊपर उठ के बात करते हैं चीज़ों की और चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास में काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चांस के लिए, किसी भी मौके के लिए हमें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जितना हम ऊपर उठेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, एक दायरे को तोड़ते हुए सभी उतने ही सारे ज्ञान, उतनी ही सारी संभावनाएं हमारे पास होंगी। तो उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इस चीज को उतारेंगे और अपने जीवन को, अपने दिन को और बेहतर बनाएंगे। चलिए फिर हनुमान जी के इस गुण को अपने जीवन में उतारते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके सुबह के भोरे भोरे वाले कार्यक्रम यानी पहली किरण में। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मनाया जा रहा है हनुमान जयंती। ये हिंदू चंद्र माह चैत्र पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला त्योहार है। पूर्णिमा तिथि आज के दिन यानी हनुमान जयंती के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान की जयंती का प्रतीक है और इसी के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज के दिन अगर पूजा की बात करें तो पूजा करने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो हमेशा से ही भोर ही माना जाता है, यानी कि सुबह। आप जितनी अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा प्रार्थना करते हैं उतनी ही स्वीकार्यता दी जाती है प्रार्थनाओं को। और कहते भी हैं जब आप शांत मन से प्रार्थना करते हैं ना तो आप ईश्वर से जुड़ाव कर पाते हैं। और सुबह सुबह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, बड़ी शांति होती है और जितनी ही सुबह पूजा की जाए उतना ही इसका महत्व माना जाता है। आज के दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और शक्ति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर बात करें तो प्रसाद के रूप में सिंदूर, लाल फूल, लड्डू और केले जैसी वस्तुएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये दिन, मतलब आज का जो दिन है हनुमान जयंती, भारत भर के मंदिरों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, जहाँ इसे जुलूसों और विशेष प्रार्थनाओं के साथ भी मनाया जाता है। और जगह जगह पर पंडाल भी लगते हैं और कहीं ना कहीं आप प्रसादी खाने को भी पा जाते हैं।

जी हाँ, आज के दिन यानी माह चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है हनुमान जयंती। ये त्योहार भारत भर में, विशेष उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनाया जाता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में याद करते हुए बड़ी श्रद्धा से ये दिन मनाया जाता है। हनुमान जी को शिव का अंश और पवन पुत्र यानी मारुति माना जाता है। ये दिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्त वीर हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिरों में शोभा यात्रा आदि निकाली जाती है। और अगर सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो उत्तर भारत में ये चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है और दक्षिण भारत में, विशेषकर तेलुगु राज्यों में, ये वैशाख महीने के दौरान मनाया जाता है। तो त्योहार तो सेम है, बट मनाने के दिवस जो हैं वो थोड़े से अलग कर दिए जाते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके लोग हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करते हैं और उनसे शक्ति और साहस का आशीर्वाद मांगते हैं। उम्मीद है कि महाबली आपके भी बल में आज थोड़े से बढ़ोतरी करेंगे और आप अपने जीवन को और कुशलता से आगे बढ़ा पाएंगे।

श्रोताओं आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का दाता कहा गया है और ये वरदान इन्हें प्राप्त हुआ है माता सीता से। अष्ट सिद्धि यानी आठ अलौकिक शक्तियाँ, यही अष्ट सिद्धि कहलाती हैं, जो माता जानकी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। ये हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व। आपने आज तक सुना तो होगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता, लेकिन वो आठों सिद्धियां हैं क्या, वो मैंने आपसे साझा किया और इनका काम क्या होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगी इन आठों नाम को आप सभी से, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा। बिल्कुल, और चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको जानकारी देती कि अणिमा अपने शरीर को अत्यंत छोटा यानी परमाणु आकार का बनाने की क्षमता रखने वाला, उसी को कहते हैं अणिमा। महिमा अपने शरीर को विशाल या बहुत बड़ा बनाने की क्षमता रखने वाला। गरिमा शरीर को अत्यधिक भारी या वजनी बनाने की क्षमता रखने वाला। और ये खाली शरीर में ही नहीं है, ये चीजें आपके मानसिक स्थिति और बाकी सभी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती हैं। गरिमा, गरिमा वही चीज होती है जो आप बेहतरी से समझ रहे हैं कि कब कहाँ पे किस रूप में हमें क्या करना है, इसकी इस सोच को पैदा करने की क्षमता प्रदान करते हैं हमारे हनुमान जी। तीन सिद्धियां जो मैंने आपसे साझा की, इसके अलावा पांच और सिद्धियां हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। लघिमा शरीर को भारहीन या अत्यंत हल्का बनाने की क्षमता, और ये जब शरीर की बात आती है तो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप जुड़े हुए होते हैं। प्राप्ति किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता, ये है हमारे बजरंगबली में। प्राकाम्य की बात करें, किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता, जैसे पानी में सांस लेना, ये भी गुण देने वाले हैं हमारे बजरंगबली। इषित्व ईश्वरत्व की प्राप्ति, मतलब देवताओं जैसे शक्ति और शासन करने की क्षमता रखने वाले हैं हमारे बजरंगबली। वशित्व किसी को भी अपने वश में करने या दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता भी देने वाले हैं बजरंगबली। तो जब इतना सब कुछ है बजरंगबली के पास में, तो थोड़े से बल को हम भी मांग लेते हैं आज के दिन इनका गुणगान करके।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका सुबह का सबसे पहला शो यानी कि पहली किरण, और मैं हूँ आपके साथ में आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। चलिए आज हम बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं हनुमान जयंती, यानी हनुमान जी के उन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब है तो वो बहुत ही विशाल और उनके गुणों का कोई बखान ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में एक कहानी की ओर, जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा पर वो मेरे तरीके से सुनिए। तो सूर्य को निगलने की कथा आपने कई दफ़ा सुनी होगी और इस पर पूरा का पूरा हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। चलिए मैं आपसे साझा कर देती हूँ। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक दिन उन्होंने आसमान में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे पका हुआ फल समझ लिया। वे उड़कर सूर्य को निगलने चले गए। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। तब पवन देव, जो कि उनके मानस पिता कहे जाते हैं, नाराज हो गए और उन्होंने हवा रोक दी और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तभी सभी देवताओं ने हनुमान जी को जीवन दान दिया और उन्हें कई शक्तियां भी दी। तो ये एक छोटी सी झलक थी हमारे बाल हनुमान के नटखट लीलाओं में से। अब नेक्स्ट कहानी मैं आपसे साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये एक और प्यारा सा भजन।

कई बार अच्छा हमारे जहन में आता है ना कि हनुमान जी आखिर अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए। चलिए ये कहानी भी मैं आपसे साझा कर देती। बचपन की शरारतों के कारण हनुमान जी अक्सर ऋषियों को परेशान करते थे, जैसे कि हर एक मासूम बच्चा, हर एक नादान बच्चा, थोड़ा सा शैतान बच्चा करता ही करता है, और बच्चों पर ये जचता भी है। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। बाद में जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया, तब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे। तो दोस्तों, कभी कभी हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर काम में समझदारी और संयम रखें, जो हमारे हनुमान जी के पास बखूबी है। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता होती है, एकदम वैसे ही जैसे हमारे बजरंग बली के पास थी। बस हम समझ नहीं पाते, हमें भी आत्मज्ञान करने का, आत्मबोध करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम खुद ही उसे भूल के बैठे होते। किसको? अपनी अपार क्षमता को। हमें बस एक जामवंत जी की जरूरत होती है, जो कि आपके दोस्त, गुरु या परिवार, जो हमें हमारी ताकत याद दिलाए में से कोई भी हो सकता है। तो खुद पर भरोसा रखें, मैं कर सकता हूँ, खुद को ये बिलीव कराएं, अहंकार से दूर रहें, जितनी सफलता मिले उतने में ही विनम्र बने, सही मार्गदर्शन लें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, दूसरों की मदद करें, यही सच्ची भक्ति है। ओम हनुमत।

अरे होकर निराश तुम जो मेरे पास आओगे, ये सुन लो कान खोल के सब मारे जाओगे। ये हुक्म सुन के चल पड़ी सुग्रीव की पलटन, सब खोज डाले।

जनी के लाल को सब मिलके पुकारे कैसे, हे वीरवर हनुमान अब संकट से छुड़ाओ, हम सब शरण हैं आपकी,

करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फार, दुश्मन के घर में अपना

जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं वो जयंती जो कि हमारे संकट को मोच लेती है, यानी हमारे हनुमान जी की जयंती, हनुमान जयंती। और इनको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। और भक्त मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं हनुमान जी की पूजा इस प्यारे से भजन के द्वारा।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं हनुमान जयंती और इसको लेकर के कई सारे अलग अलग तिथि हैं। मतलब हम उत्तर प्रदेश में आज के दिन मनाते हैं चैत्र में जब पूर्णिमा पड़ती है, और अगर हम तमिल की बात करें मतलब साउथ के साइड जाके बात करते हैं तो वो अलग दिन मनाया जाता है, और अगर पूरब में जाए पूरब राज्य यानी ओडिशा में तो पंच संक्रांति के दिन मनाया जाता है ये हनुमान जयंती। और इसी दिन को अगर हम टैली करते हैं तो ओडिया में इसी दिन नया साल मनाया जाता है। हनुमान जी को बुराई पर जीत हासिल करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इनके पास में अपार शक्ति का भंडार माना गया है, और जब हमारी शक्ति असीमित हो और उसके बाद जब घमंड आ जाता है तो उसको कैसे संभालना है, इसकी भी कला कहीं ना कहीं हम हनुमान जी से ही सीखते हैं। इनके जीवन से हम जितना भी सीखें उतना कम है, पर एक चीज तो जरूर से सीखिए कि किसी भी चीज में हम बैलेंस कैसे स्थापित कर सकते हैं।

और किंवदंतियों के अनुसार जब हनुमान जी ने सीता जी के माथे पर सिंदूर लगा हुआ देखा तो उन्होंने उनसे इस रीति रिवाज के बारे में पूछा। सीता जी ने जवाब दिया कि ये उनके पति की लंबी उम्र को और उनके सुचारू जीवन को सुनिश्चित करता है। फिर वहाँ पे जो भक्ति का मतलब आप एक दृश्य देखते हैं कि हनुमान जी एकदम भोले बालक की तरह पूरे शरीर में उन्होंने अपने पीला सिंदूर लगा लिया और उसके बाद तो क्या ही दृश्य था। मतलब ये है कि जब हम किसी के भी भक्ति में होते हैं, किसी के भी साथ में प्रेम में होते हैं तो हम अपनी वो छवि दिखाते हैं, वो छवि प्रस्तुत करते हैं जो हम किसी के सामने नहीं करते, और वो होता है एक नन्हे से बालक का। और जब नन्हे बालक का हम रूप लेते हैं तो हम जीवन को बहुत ही खुश मिजाजी से जी रहे होते हैं। और एक बात और जिस तरह से जब हम भक्ति में होते हैं तो भक्ति की शक्ति ये भी होती है कि हम अपने गुरु को आगे रखते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पे गुरु का भजन हो वहीं पे हमारा सृजन हो, तो ऐसा कुछ होता है। और कहा भी जाता है कि जहाँ पे राम धुन की महिमा का बखान होता है, जहाँ पे राम रस पान होता है, वहाँ पे हनुमान जी आज भी वास करते हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग हो या कोई भी दौर हो उसमें अमर हैं। तो फिर प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राम।

श्रोताओं, वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, डर और नकारात्मकता को दूर करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी लाइफ में। अगर हमें ग्रोथ की बात करते हैं तो इन चीजों की बेहद जरूरत होती है, और वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। आज के दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या फिर दिल से 11 बार ही, लेकिन पूरी तरह से आत्म केंद्रित होके इस मंत्र का जाप करें। सुबह की शुरुआत करें बेहतरी के साथ में, एक भक्तिमय ऊर्जा के साथ में, ताकि आपका जीवन और सौम्य, सुरक्षित और सरल हो सके।

तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति होने से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग और विनम्रता। आज इस पावन दिन पर अपने अंदर के हनुमान को पहचानिए। जय बजरंगबली। फिर मिलेंगे पहली किरण के साथ, एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। राधे राधे। जय जिनेंद्र। रब राखा तो सब राखा। अल्लाह हाफिज़।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: सलामे इश्क, इश्क, इश्क, सलामे इश्क। जी हाँ, एक बार वापस से आपको सलाम कर दें, मॉर्निंग वाला सलाम, एनर्जी वाला सलाम, एक बेहतरीन शुरुआत वाला सलाम, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाले दिन का सलाम, आपके सपने पूरे होने का सलाम, आपका बेहतर महसूस करने वाले वक्त का सलाम। तो चलिए, इतने जबरदस्त, इतने शानदार सलाम के बाद आपका हम वेलकम करते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्तर 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। तो चलिए बताते हैं कि भाई क्या है आज का थॉट ऑफ द डे और क्या कहना चाहता है आज का थॉट ऑफ द डे आपसे आज के मॉर्निंग वाले शो में। सो देखिए, आज का मॉर्निंग थॉट मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद आया, सो मैंने सोचा ये क्यों ना आप तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इस थॉट की एक अलग ही वाइब है और ये थॉट एक जिंदा थॉट है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, सो आज का थॉट कहता है कि उनके लिए फूल हमेशा मौजूद हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं। उनके लिए फूल हमेशा मौजूद हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं। कितना प्यारा थॉट है, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सोचिए किस खूबसूरती से इस थॉट को गढ़ा गया है, कितना प्यारा है। शायद इस बात से ही समझ में आ जाता है जो ये थॉट कह रहा है, अपने आप में ही ये मुकम्मल थॉट है। थॉट क्या कहता है, उनके लिए फूल हमेशा मौजूद है जो उन्हें देखना चाहते हैं। क्या बात है, सो कितनी बड़ी बात है।

कि उनके लिए फूल हमेशा मौजूद हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस थॉट के मायने जो है बहुत बड़े हैं, और ये थॉट अपने आप में बहुत शानदार है। मतलब ये, हालांकि ये जो विचार हैं ये यहाँ नहीं, फ्रांसीसी के कलाकार रहे हैं हेनरी मैटिस, इन्होंने कहा था कि देयर आर ऑलवेज फ्लावर्स फॉर दोज हु वांट टू सी देम। बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी कहीं ना कहीं इस बात से हम सीखते हैं दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसी हमारी नज़र है। अगर हमारा मन चीज़ों में बेहतरी, जिंदा दिली, जीवन देखता है, खूबसूरती ढूंढता है, तो सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद, जिसको फूल बोला गया है, या खुशी दिखाई दी जाती है। इसके उलट अगर हम सिर्फ कांटों को ही देखते हैं तो फूलों के बीच में भी हम सिर्फ कांटे ही देखते रह जाते हैं। सो हमारे आसपास ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिनके लिए हम इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सो आज का ये थॉट ऑफ द डे हमको ये याद दिलाता है कि खुशियाँ हमेशा मौजूद है, बस हमें अपनी इस बिजी सी लाइफ में, ज़िंदगी में रुक कर उसे देखने और महसूस करने की ज़रूरत है। जब लाइफ में बड़ी मुश्किलें आती हैं, चारों तरफ ऐसा लगता है कि अब रास्ते नहीं हैं, तब ये थॉट ऑफ द डे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भी एक रास्ता बन के आता है। जो लोग हार नहीं मानते, अच्छा कुछ हो जाने तक का इंतज़ार करते, उन्हें फूल या उनका सल्यूशन मिल जाता है। यानी अगर इन शॉर्ट कहे तो खुशी हो, चाहे पीस हो या ब्यूटी हो, कोई बाहरी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें ढूंढा जाए, बल्कि ये एक हमारे अंदर की चीज़ें हैं, हमारे अंदर की च्वाइस है। अगर आपके अंदर भी उसे देखने की चाहत है तो ज़िंदगी आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं करेगी। तो भाई ये उम्मीद है, ये आशा है, ये होप है जो ज़िंदगी में हम लेके चले हैं, और यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, क्योंकि ये अपने आप में मुकम्मल थॉट है। उनके लिए फूल हमेशा मौजूद हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं। तो देखिए ना कितना खूबसूरत थॉट है और कितनी खूबसूरती से बात किया है। चलिए इसके बारे में अब आपका क्या कहना है इस थॉट के बारे में, जहां हमने बताया कि भाई ये सब कुछ हमारी च्वाइस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। सो आप भी बताइए कि आपको ये थॉट ऑफ द डे कैसा लगा, ताकि हम भी समझ पाए कि आप इस थॉट से क्या समझते हैं, इस थॉट ने आपको क्या दिया, आखिर आपको कैसा लगा ये थॉट ऑफ द डे, फटाफट से बताइए। और हम वापस से आएंगे, आने के बाद आपसे हम बातचीत जारी रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस थॉट को सुन लेने के बाद आपके अंदर जो भी बात आई है वो आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल लेके चलते हैं आपको एक अगले सॉन्ग की तरफ, वापस से आएंगे आने के बाद, देखने वाले हैं और आपका साथ ही साथ वो मैसेजेस जो आप चैट बॉक्स पर लिखते हैं हम तक पहुंच जाता है, उस तक भी हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये शानदार सा सॉन्ग आपके लिए,

0: सैयारा मूवी का ये सॉन्ग भाई आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल लेकर चलते हैं अब आपके रिएक्शंस की तरफ, साथ ही आपके मैसेजेस की तरफ। साथ ही वेलकम करते हैं आपका जो फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जब मॉर्निंग में आप उठे थे तो क्या कोई सॉन्ग याद आया था, और सुबह सुबह कोई सॉन्ग आप गुनगुनाने निकल गए थे, अगर है तो कौन सा? फिलहाल परमार्थ यानी रिदम मालवीय नगर से मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग परमार्थ उर्फ रिदम, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा के शो में। मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान करते हैं, वेलकम आपका। नगेश्वर मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू नगेश्वर। सविता दुबे जी लिखती हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। और फिलहाल इंटरनेट का नेटवर्क नहीं था सविता जी, अभी सही कर लिया गया है, अभी आई होप कि आप तक ज़रूर आ रही होगी आवाज़। कंचन सविता जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी हैं।

बहराइच से सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। हरिशंद सविता जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। आशु मिश्र जी लखनऊ से हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। कंचन सविता जी ने कहा गुड मॉर्निंग अर्जुन नांग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम है, स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। साथ ही साथ मैंने कहा था भाई आज का थॉट ऑफ द डे बहुत प्यारा है, क्यों? क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे था कि भाई उनके लिए फूल हमेशा मौजूद हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं, और इसको लेकर के आप लोगों ने अपने अपने रिएक्शंस भी दिए हैं। सो पहला रिएक्शन जो आया है वो सविता दुबे जी का आया है, और लिखा है कि मुश्किल में भी खुशी ढूंढ ली हूँ, बहुत सही बात कही, आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपको सुविचार बहुत पसंद आया। इसके बाद आशु मिश्र जी लखनऊ से लिखती हैं, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी आज का थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड कायनात का है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो भाई ये थॉट सच में उनके लिए है जो आज भी फूलों को देखना चाहते हैं, तो फूल उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, उम्मीद हमेशा है, और ज़िंदगी जितना भी वक्त लेती है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ज़रा सोचिए अगर उम्मीद से हट कर जिया जाए तो कितनी भी बड़ी ज़िंदगी हो क्या कुछ उसमें होगा? शायद नहीं। उम्मीद जान है, रूह है, आत्मा है, सोल है, इसलिए उम्मीद का ज़िंदगी में होना बेहतरीन है। ज़िंदगी न सिर्फ खुशगवार है बल्कि ज़िंदगी जिंदा है उम्मीद के होने से, उम्मीद के रहने से, उम्मीद के बरकरार होने से।

वैसे यहाँ सजना जो है वो जिंदगी की उम्मीद है, और जरा सोचिए जिंदगी की उम्मीद को अगर ये सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं तो आखिर कैसा लगता है जिंदगी को। बहुत खूबसूरत, डेडिकेटेड टू लाइफ।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कभी ऐसा हुआ है कि मंजिल की तलाश में जहां से आप निकले हो वहीं वापस आकर आपको मंजिल मिले? पता नहीं, शायद आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां के लोगों के साथ फिलहाल यही हो रहा है। जहां से वो निकल के जा रहे हैं अपनी मंजिल की तलाश में, वहीं वापस आ करके ही उनको मंजिल मिल रही है। अब आप सोच रहे हो कि आरजे अदनान ऐसी पेचीदा बातें मॉर्निंग में क्यों कर रहा है। चलिए हम बता देते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा गांव है जहां गांव में ही लोगों को अब उनकी मंजिल मिलती हुई नजर आ रही है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, सो गांव में रहकर भी जिंदगी को बढ़ाने का नया रास्ता मिल गया है। और होता यह है कि कभी कभी सपने वहीं लौटकर पूरे होते हैं जहां से शुरू हुए होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी जगह और क्या हम बात कर रहे हैं। दरअसल अब हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपको हमारी कही हुई बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। हम ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ एक होमस्टे नहीं, यहां गांव की मिट्टी की खुशबू से महकती है सुबह, लोक गीतों और लोक कथाओं से गूंजती हैं रातें। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की। चमोली में पुश्तैनी घर को मेहमानों का घर बनाया गया और शुरू हुआ गौराज होमस्टे। दरअसल देवेश नैनवाल लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान मजबूरी में मेरी तरह गांव छोड़ करके जाए। तो यहां मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं रहते, वो खेतों में हाथ आजमाते हैं, गांव की दादी नानी से किस्से सुनते हैं और सादगी की असली खुशी महसूस करते हैं। सो इनका मकसद है नेचुरल और ऑर्गेनिक स्टे देना है, क्योंकि जब गांव में रोजगार लौटेगा तभी पलायन भी रुकेगा और असली आराम और सुकून अपनी जड़ों के पास ही मिलता है। जी हाँ, तो दरअसल चमोली जो गांव है उत्तराखंड का, वहां पे गौराज होम स्टे शुरू किया गया है। यानी कि कोई भी घूमने जाए और पूरी तरह से काम जीवन जिए जैसे कि वहां के लोग जीते हैं, वैसे घर में रहना, वैसे ही खाना बनाना, वैसे ही खेतों में जाना, वैसे ही सुबह उठना, सुबह में गीतों के साथ शुरुआत, रात में लोक कथाएं और लोक नृत्य का देखना, सब कुछ ऐसा ही है जैसे वहां का एक लोकल का बाशिंदा करता है। अब यहां के लोगों के लिए क्या है भाई, जो घूमने जाते हैं वो भीड़ में जा करके फोटो खिंचा करके चले आए, इतना तो काफ़ी नहीं होता ना। मन करता है कि पहाड़ों में गए हैं, ऐसी जगह हैं तो फिर क्यों ना सुकून से वक्त बिताया जाए। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, कुछ करने में नहीं, सिर्फ बैठे रहने में ही अच्छा लगता है, बादलों को देखने में ही, निहारने में, नीचे खाई की तरफ देखने में, बहते हुए झरनों को उसकी आवाज़ सुनने में और नहरों के निकलते हुए रास्तों को देखने में, चहचहाहट वहाँ की चिड़ियों की और लोगों की पुकार जो पूरे पहाड़ पे गूंजती है। इन सब के बीच में अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर आप बिल्कुल सादा जो एक जीवन कहते हैं वो अगर आप जी लें जितने भी वक्त के लिए जाएं, तो ज़रा सोचिए कैसा लगेगा। एक होता है जाना और जहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ है वहीं पर आप भी उसी भीड़ में हो करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के चले आए। एक होता है जाना और वहाँ की ज़िंदगी में भी अपना खुद को आजमाना, यानी बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, उन्हीं चीज़ों के बीच में बिल्कुल ऐसा महसूस करना जैसे आप वहीं की पैदाइश हैं, वहीं के ही रहवासी हैं। तो ऐसा होने से एक तो टूरिस्ट को बड़ा अच्छा लगता है और उसको ऑर्गेनिक होम स्टे मिलता है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल से दूर, होटल फैसिलिटीज से दूर, एकदम नॉर्मल घर में कितना मज़ा आता है। एंड दूसरी बात है कि वहाँ के लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, तो भाई जो लोग पहाड़ों में पता है कि इतना रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो वहाँ इस गांव ने ये शुरुआत की है कि अब अपने अपने घरों को गौराज होम स्टे की तरह से डिवेलप किया है, जिससे कि लोगों का वहाँ से जाना अब ख़त्म हो, लोग अपने गांव में ही रह करके एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ और लोगों को एक ऑर्गेनिक होम स्टे भी दे सके। तो इससे दोनों लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इसीलिए शायद मैंने कहा था कि एक ऐसा गांव जहां के लोगों की मंजिल वहीं जा करके वापस से मिल रही है। तो अब शायद आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि हम उत्तराखंड के चमोली की बात कर रहे थे। कैसे लगी वैसे ये जानकारी? चलिए अब आप भी क्या असली सुकून और असली आराम अपने घर पे ही ढूंढते हैं? और अगर हाँ तो बता सकते हैं। यस ऑफ कोर्स।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कहीं आपके घर में भी तो ऐसा नहीं है कि भाई एसी लगी है लेकिन ठंडी नहीं कर रही, और आपको लग रहा है कि एसी पुरानी हो गई है इसलिए शायद वर्क नहीं कर रही, तो मे भी आपको एक बार सही से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एसी में अगर गैस नहीं है तो वो चलते हुए भी ठंडी नहीं करने वाली है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी बीच में सर्विस और गैस की रीफिलिंग की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। कई बार सर्विस के दौरान टेक्नीशियन ये कहकर लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं कि एसी में गैस कम है, उसे दोबारा भरवाना होगा। हालांकि हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैकेनिक की बातों में आने से पहले आपको खुद इसे चेक करना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसी में गैस है या नहीं है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो आप गैस भरवाइए, और अगर नहीं है तो आप फालतू गैस के पैसे क्यों देंगे। सबसे पहले होता है आउटडोर यूनिट को देखना, उसके पाइप को छू करके। सो जब एसी चल रही हो तो बाहर लगे जो आउटडोर यूनिट है उसके पास आप जा सकते हैं, और वहाँ तांबे के दो पाइप आपको दिखेंगे, एक पतला पाइप और एक मोटा पाइप। अगर गैस सही होगी तो दोनों पाइप ठंडे होंगे, उन पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ख़ास तौर पर मोटा वाला पाइप काफ़ी ठंडा होना चाहिए। अगर गैस कम या ख़त्म होगी तो पाइप बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे, या फिर पतले वाले पाइप पर सिर्फ सफ़ेद बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। पहली चीज़, पहला ये लक्षण है। दूसरा, इंडोर यूनिट को चेक करके भी आप देख सकते हैं। सो एसी पर लगे प्लास्टिक के ढक्कन को ऊपर उठाएं और जाली वाले फिल्टर को बाहर निकालें। अंदर कोई मेटल या नीली सिल्वर रंग की क्वाइल्स दिखाई देंगी। अगर क्वाइल्स छूने पर पूरी तरह ठंडी और नम लगे तो समझ लीजिए कि सही है, लेकिन अगर क्वाइल्स पर बर्फ जमी हो या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल तापमान पर हो तो गैस ना होने का भी ये संकेत है। इसके अलावा आउटडोर यूनिट की हवा को चेक करना। सो एसी को ऑन करने और 10 मिनट चलने देने के बाद, फिर इसके बाद आप आउटडोर यूनिट के पंखे के सामने हाथ रख करके देखें। गैस होगी तो पंखे तेज़ी से गर्म हवा आएगी, और गैस नहीं होगी तो पंखे नॉर्मल या फिर ठंडी हवा वहाँ से आएगी। इसके अलावा अगर गैस पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है तो एसी का कंप्रेशर लगातार चलने के बावजूद कमरा ठंडा नहीं होगा। ऐसे में एसी को तुरंत बंद कर दीजिए और किसी टेक्नीशियन को बुला करके चेक कराइए। बिना गैस के लगातार एसी चलाने से उसका कंप्रेशर ख़राब हो सकता है, ये जानकारी आपको हम एज अ टिप दे रहे हैं, ठीक है। सो जब कभी आपको लगे कि भाई गैस ख़त्म हो गई है एसी में, तो आप उसके बावजूद चलाएंगे तो कंप्रेशर के ख़राब होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। और किस तरह से आप एसी में गैस है या नहीं है ये भी चेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। आई होप कि इन तरीकों को आप अपने जहन में रखते हुए चैन की सांस लेंगे। फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी बता सकते हैं, क्योंकि जानकारी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: डिलीशियस
8: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

0: आओ, चलो अब साथ चलते हैं, थोड़ा सा गांव भी घूम कर आते हैं।
1: हाँ, चलो। देखो यहाँ की कच्ची दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर कलाकृति बनी है। यह दीवार रंगों से जीवित हो उठी है। हर घर एक कैनवास है, हर दीवार पर एक लोक गाथा।
2: हर घर की दीवार सजी हुई है और सतह उभरी लग रही है।
3: बाईसा या गोबर और मिट्टी का लेप है, उस पर हम चित्र बनाते हैं और बिना ब्रश के उंगलियों और खजूर की टहनियों से इसमें रंग भरते हैं।
2: देखो दीवारों पे कितने सुंदर चित्र बने हैं, ऊँटों की कतार है। अरे ये देखो पंख फैलाए मोर कितने सुंदर लग रहे हैं। राजस्थानी दूल्हा दुल्हन भी हैं। और ये देखो सूरज चांद के भी चित्र बने हैं। अरे ये तो पूरा का पूरा विवाह का दृश्य है।
3: हाँ भाई साहब, यहाँ शादी से पहले दीवारों पर चित्र जरूर बनाते हैं। हर रंग किसी को दर्शाता है। गेरुआ रंग मरुस्थल की गरिमा को, हल्दी पीले रंग को और सूर्य के तेज को, और नीला रंग आकाश को, और हरा रंग सावन को दर्शाता है।
0: अच्छा आप सब ये बताइए कि यह सीखती कहाँ से है?
3: अरे अपनी माँ से, दादी नानी से, यह कला हमको परंपरा से मिलती है।
1: अरे ये दो छोटी लड़कियाँ दीवार पर बिंदु लगा रही हैं,
3: या मांडना बना रही हैं। यह राजस्थानी कला है और शुभता का प्रतीक है। ये दीवारों पर रंगोली की तरह बनते हैं। त्योहार करवा चौथ दीपावली सब पर बनते हैं।
4: यह केवल सजावट नहीं जीवन है। हर रंग एक भावना है और हर दीवार एक कहानी।

0: सांझ ढल रही है, गलियां फिर से सज उठी हैं। रंग बिरंगी ओढ़नियों में सजी महिलाएं हाथों में कलश और मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं लिए चौक की ओर बढ़ रही हैं। वो देखो सामने,
1: अरे ये कौन सा उत्सव है, सबके हाथ में छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं।
2: बाईसा या गंगौर है माता गौरी और भगवान शिव की पूजा। यह राजस्थान का प्रमुख स्त्री उत्सव है। गढ़ यानी शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह सौभाग्य प्रेम और समृद्धि का पर्व है।
3: और इस पर्व पर विवाहित महिलाएं और अविवाहित कन्याएं पूजा करती हैं और सुखी जीवन की कामना करती हैं।
0: सुना है प्राचीन काल में ये राजपूत रानियां जो होती थी इसको बड़े हर्ष से मनाती थी। जयपुर और उदयपुर में आज भी गणगौर की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। ये बसंत ऋतु में आता है जब प्रकृति नवजीवन से भर उठती है।
1: यही है राजस्थान जहां उत्सव जीवन है और जीवन उत्सव है।

0: आज हमने केवल एक गांव ही नहीं देखा, हमने एक जीवित संस्कृति को महसूस किया।
1: दीवारों की मांडना, कला, घूमर की लय, गणगौर की श्रद्धा सब मन में बस सा गया है।
2: यहाँ की सादगी और लोगों के अपने पन ने हमारे दिल को छू लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर परंपरा में एकता, प्रेम और गर्व है। और अब समय है आगे बढ़ने का।
3: धन्यवाद राजस्थान, तुम्हारे गीत हम अपने साथ ले जा रहे हैं, पर यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। हम जल्द ही आएंगे किसी और गांव, राज्य, नई संस्कृति और नई लोक धुनों के साथ।
4: मैं चटनी पीसूंगी, चटनी में हरा पुदीना।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

गुड आफ्टरनून एवरीवन. भाई वक्त हो चुका है बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना शो ज्ञानस्थली लाइव. जी हाँ, वही ज्ञानस्थली लाइव जिसमें आपको मिलती है ढेर सारी इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ. अभी आप इंजॉय कर रहे थे एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग, दीदी तेरा देवर दीवाना. अब भाई देखिए, अभी हाल ही में माधुरी दीक्षित का बर्थडे गया है, हमने सेलिब्रेट भी किया था उनका बर्थडे, और साथ ही साथ मुझे लगा कि ये गाना आप लोग को याद करा दें, कि ये गाना एक ऐसा है ना जो मन में कहीं ना कहीं आपके एक चुलबुलापन ज़रूर ले आता है. आपको याद तुरंत आ जाती होंगी वही माधुरी दीक्षित जिसने बैगनी कलर की सीधे पल्ले में साड़ी पहनी थी, और हमारे प्यारे सल्लू भाई यानी कि सलमान खान भाई. देखिए, पहले की मूवी का जो चार्म होता था ना, वो कहीं ना कहीं इतना स्पेशल होता था कि आज भी कितनी भी बेहतरीन मूवी बन जाए, लेकिन वो ग्रेस अभी भी मूवीज़ में मिसिंग रहता है. चलिए बात करते हैं आज के विषय की. अब देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम आते हैं लाते हैं बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी मैं लाई हूँ बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन. वो क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन भाई सबसे पहले हम बात करेंगे आप पे, यानी कि हमारे लिसनर पे. भाई कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी ले रहे होंगे, गर्मी को हराने के लिए पानी पीते रहते होंगे, और साथ ही साथ अपने आप को ठंडा रखने की देसी नुस्खे भी आप अपनाते होंगे. अगर आपको इस गर्मी में थोड़ा सा जी मचलाने का, वॉमिटिंग सा या फिर चक्करपन आ रहा है, तो आपको ये आपकी बॉडी एक संकेत देती है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉल की कमी है. तो इलेक्ट्रॉल की कमी पूरी करने के लिए आप ORS पी सकते हैं, या जो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है वो महज 4 से 5 रुपए का एक पाउच आता है, आप उसे कंज्यूम करें. और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक पाउच आप अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि क्या पता कब आपके में इलेक्ट्रॉल डाउन हो जाए, BP लो हो जाए और आप चक्कर खा के गिर जाए. तो दुर्घटना से सही है कि आप सचेत रहें और अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखें. आज ध्यान की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे भूल जाएं? जी हाँ, आप और हम. देखिए, हम इंसान हर चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ के पीछे हम लोग हमेशा पागल रहते हैं, लेकिन वो मिलती कभी नहीं है. जितना हम उसको चाहते हैं वो हमसे उतना ही दूर जाती है. भाई हम बात कर रहे हैं खुशी की, यानी कि हैप्पीनेस की. तो कभी आपने सोचा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में, अच्छा अभी सोच छोड़ते हैं, हमारी लाइफ में जो पहले के लोग होते थे वो कितने खुश रहते थे. क्या आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम आया ही नहीं है, या कोई दुख कभी हुआ ही नहीं है? देखिए, ऐसी बात नहीं है. बस ये है कि वो लोगों ने अपने दुख से सही से डील करना सीख लिया है. और आजकल की जनरेशन या आजकल के आधुनिक वर्ल्ड में जहाँ इतनी तकनीकी जो है डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी आजकल का इंसान परेशान ही है. कोई भी देखो, किसी से भी आप पूछो कि भाई क्या आप खुश हैं, तो वो यही कहेंगे कि नहीं भैया, किसी को घर में प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, कोई कमा नहीं पा रहा है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, और न जाने कितने सारे दुख आजकल पूरे समाज में फैले हुए हैं. तो आखिर अच्छा तरीका है क्या इन दुखों से डील करने का, यानी कि हम कैसे इससे निपट सकते हैं? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि आखिर में इंसान सही में खुश कब होता है, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इंसान खुश कब होता है. देखिए, क्या खुश तब होता है जब हमारे बच्चे होते हैं, या खुश तब होता है जब हमारी नौकरी लगती है? काफ़ी लोगों की तो नौकरी लग गई है फिर भी इंसान दुखी है. इसके पीछे कई सारे कारण हैं, और खुशी की अपनी अपने मायने भी लोगों के अलग अलग हैं. कोई चंद पैसे कमा के खुश हो जाता है, कोई बहुत धनवान होके भी दुखी रहता है. आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, वो है कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी में कनेक्शंस क्यों चाहते हैं. कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई TV का कनेक्शन चाहते हैं, Wi-Fi का कनेक्शन. देखिए, ये सब तो अलग चीज़ है. हम इंसानी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन कनेक्शन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, और हमें हमेशा उसकी क्रेविंग क्यों होती है. क्या हम किसी भी रिलेशन के बिना अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, या हमारी जिंदगी उसके बिना अधूरी है? देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहला टॉपिक कि इंसान हकीकत में खुश कब होता है, और क्या इंसान को सबसे ज्यादा खुश करता है. देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हैप्पीनेस आखिर होती क्या है. देखिए, हम बचपन में से सुनते आए हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम खुश रहेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी. अगर पैसे हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म है और हम खुश हो जाएंगे. लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब जानते होंगे कि ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ पैसे से हैप्पीनेस मिलती तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी आज डिप्रेस्ड नहीं होते। आप सब जानते हैं हमारी आपकी दोनों की चहेती दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण एक ऐसी अदाकारा है जिनकी अदाकारी के चर्चे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। हर एक लड़की की कहीं ना कहीं वो आइडल है, सब उनके जैसा चार्म पाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन आखिर इतना पैसा होने के बाद, इतनी कला होने के बाद भी आखिर वो डिप्रेशन में क्यों गईं, क्यों जूझी? क्या उनके पास खुशियों की कमी थी? बिल्कुल। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी के पाने अलग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पैसे अगर सिर्फ खुशियाँ देते तो आज इतनी बड़ी अदाकारा डिप्रेस्ड ना होती, सेलिब्रिटीज़ को एंजाइटी ना होती, फेम आपको हैप्पीनेस देता और अकेलापन से आप कभी नहीं गुजरते अगर आपके पास पैसे होते। देखिए, असल में जो हैप्पीनेस होती है वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई सामान नहीं होता, ये एक इमोशनल स्टेट होती है, एक फीलिंग होती है जिसमें इंसान अंदर से पीसफुल फील करता है। आपने देखा होगा कि गांव में जिसके घर पे, जिनका सही से घर भी नहीं बना है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक घर में 10 लोग रहते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत हैं। तो आखिर क्या कमी रहती है एक अमीर इंसान? मैं ये नहीं कह रही कि अमीर हमेशा दुखी होता है और गरीब हमेशा खुश रहता है, सबकी ज़िंदगी में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, पर कभी कभी हम देखते हैं कि एक गरीब भी खुश है और एक अमीर भी दुखी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको कभी अंदर से संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे शांति और खुशी का क्या ताल्लुक है? देखिए, बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप शांत नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आपको मिल ही नहीं पाएगी। संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अगर ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ में 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो उतने में ही संतुष्ट हो कि आप आगे ना बढ़ें। आप बढ़ें, लेकिन जो 10,000 है उसको भी कभी कम ना समझें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 10,000 के लिए भी दिन रात मेहनत करते होंगे फिर भी नहीं हो पाता होगा। तो अगर आप संतुष्ट हैं उससे तो आप खुश हैं, अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो आप 10,000 नहीं, आप 10 लाख भी कमा लेंगे फिर भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। और रही बात आजकल के यूथ की, तो देखिए आजकल का यूथ सबसे ज़्यादा भटका हुआ चीज़ है, इसलिए क्योंकि देखिए पहले के लोगों को ये होता था कि आपको एक टारगेट रहता था कि आपको ये अचीव करना है, आपको एक ही रास्ता आपके घर वाले बता देते थे या आपके सगे संबंधी बता देते थे। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, क्योंकि उनके पास लाखों ऑप्शन है लेकिन एक सही गाइडेंस नहीं है कि आखिर उन्हें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट पे करना चाहिए। जहाँ दुनिया भाग रही है हमें वहीं भागना चाहिए, इसीलिए वो आजकल बिल्कुल खुश नहीं है। और कुछ भी ट्राई करते हैं तो उनका इसलिए नहीं होता है क्योंकि काफ़ी लोग उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिसमें वो बस बज के कंफ्यूज होके रह जाते हैं। तो हमेशा जो है, अगर आप आगे ग्रोथ की तरफ सोच रहे हैं, जो है उसमें संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब आप खुश हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमें रिश्तों की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमारी ज़िंदगी में जो हमारी रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ये मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर आपको क्या लगता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते ना हो तो क्या उसकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी? तो ये चीज़ आप बताएंगे आके चैट बॉक्स में। फ़िलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इस चीज़ के बारे में सोच विचार करनी है और साथ ही साथ पानी को पीते रहना है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलूँगी आपसे लेके आपका, हमारा दोनों का एक बहुत ही पसंदीदा विषय कि ये खुशी क्या होती है और रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं खुशी की, यानी कि हैप्पीनेस की, और साथ ही साथ रिलेशनशिप की। भाई, कि हमारी ज़िंदगी में ह्यूमन कनेक्शन क्यों ज़रूरी है, और क्यों, क्या इंसान जो है कभी कनेक्शन के बिना नहीं रह सकता।

अभी कंपैरिजन इतना ज़्यादा है कि शायद उनके पास या जो हमारी सहेली है उसके पास लाइफ अच्छी है, शायद ये हमसे ज़्यादा सुंदर है, शायद ये हमसे ज़्यादा करियर इसका बेटर है, ये तभी खुश है। हमारे पास इतना नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? और यही कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान की खुशी को खा जाता है, क्योंकि कभी ये सारी चीज़ें आपको इनफ फील कराती ही नहीं कि आप अपने लिए पूरे हैं। लेकिन जिस दिन एक बात ये है कि इंसान ये समझ जाएगा कि मुझे परफेक्ट नहीं बल्कि रियल बनना है। देखिए, परफेक्शन के पीछे जो भागता है उसे परफेक्शन कभी मिलती है ही नहीं, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़

उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखिए, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देती है, यानी कि एक मतलब देती है। इमेजिन करिए, आपके पास लग्जरी घर है, पैसा है, सक्सेस है, लेकिन शेयर करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है, तो वो क्या हैप्पीनेस कंप्लीट होगी? नहीं, क्योंकि इंसान इमोशनली कनेक्टेड क्रिएचर है। हम अचीवमेंट भी शेयर करना चाहते हैं, दुख शेयर करना चाहते हैं, मेमोरीज बांटना चाहते हैं, और यही रिलेशनशिप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप आपका पार्टनर हो, वो आपके घर में भी आपकी माँ, बहन, भाई, पिता, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर जिनके पास कोई नहीं रहता वो अपने पेट्स से ही सारी चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होने लग जाता है। और यही जो हमारे रिश्ते होते हैं, देखिए अपने वो नहीं होते जिनसे हमारे खून का रिश्ता होता है, अपने वो होते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें उदास देख के ये जान जाते हैं कि आपको कोई ना कोई दिक्कत तो है या कोई गड़बड़ तो हुई है जिसलिए इंसान दुखी है। तो हमेशा अपना उसे मानिए जो आपके लिए हमेशा आपको समझने के लिए तैयार हो, ना कि उसे जिससे सिर्फ आपका खून का रिश्ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों ये हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। आपने नोटिस किया होगा, अभी हाल ही में बारिश हुई थी, आंधी चली थी, और उस बारिश की एक बूंद आपको ज़रूर कहीं ना कहीं खुशी देगी। आप परेशान भी होंगे कि भाई अब तो बारिश होने लग गई, कितना मेस हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस बारिश की बूंद ने आपको खुशी भी किया होगा, आपके दिल को सुकून भी मिला होगा। कई बार आपको कोई अचानक से कोई पुराना गाना याद आ जाए जो कि आपकी सिचुएशन को परफेक्टली मैच करता हो, है ना, कितनी खुशी मिलती है इन सारी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कभी बहुत दिन बाद आपकी मम्मी आपको अपने हाथ से खाना खिला दे, आप मम्मी से कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो खुशी आपके लिए आसमान से ऊपर जो है वो खुशी आपके लिए होगी। देखिए, दिल बहुत ज़्यादा एक चीज़ को क्रेव करता है, वो होती है शांति और अपनेपन की। अब ये क्यों होता है? देखिए, हैप्पीनेस में लग्जरी नहीं बल्कि इमोशनल मीनिंग छुपा होता है। ह्यूमन ब्रेन इमोशन को जो है, इमोशनल मेमोरी को डीपली स्टोर करता है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना देती है। इसीलिए जब तक आप अपने आप को कंपैरिजन करेंगे, इमोशनली अपने आप को दबा के रखेंगे कि नहीं नहीं आंसू आ रहे हैं हम रोएंगे नहीं, लेकिन स्ट्रांग बनना है, फीलिंग दूसरे को दिखानी नहीं है, हमारे पास जेन्युइन कनेक्शंस नहीं होंगे, तो हमारी ज़िंदगी में दुख अपने आप ही बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लक्ष्य की तरफ काम करने लग जाएंगे और अपने फ्लॉज की वजह से अपनी ज़िंदगी रोक नहीं लेंगे, उसको आगे बढ़ने देंगे और ज़िंदगी में बेहतर कर लेंगे। देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन सुनी थी, एक हमारी जो हमारी सीडीओ मैम थी जिनका नाम था अंकिता जैन, वो हमारे यहाँ जब आई थी रेडियो ज्ञानासली में, तो उन्होंने सबके सामने एक चीज़ कही थी कि मेरे को मेरे कल से कल को बेहतर बनाना है। और ये लाइन कहीं ना कहीं छोटी है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, कि अगर आप ये सोचेंगे कि कल को कल से बेहतर बनाना है, तो आपकी ज़िंदगी डे बाई डे और बेहतर होती जाएगी। और जब आप पलट के अपनी ज़िंदगी में पीछे देखेंगे तो आपको अपनी गलतियाँ नहीं बल्कि अपनी सीख नज़र आएगी। तो ये थी बात भाई हमारी खुशी की, कि हम खुश कैसे रहें और कैसे हम इंसान इतने दुखी रहते हैं। अब बात करेंगे हम कनेक्शंस की, यानी ह्यूमन कनेक्शन की, कि हमें कनेक्शन क्यों ज़रूरी है और क्या हम बिना कनेक्शन के जी नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी अधूरी है, आपको क्या लगता है? अपने विचार को जल्दी से आइए चैट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि इस पर आपका क्या मानना है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक भी रिलेशन ना हो तो क्या आप खुश नहीं रह सकते? फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे अपने इस अगले विषय पर।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी लेके आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं दो बहुत बड़ी और बहुत अहम चीज़ों की, जिसमें से एक पे तो हमने बात कर ली, वो थी खुशी। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरी पे, यानी कि हमारे रिश्तों पे। अब देखिए, हम सभी ने रिश्तों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को फिल्मी दुनिया से जो है तौलने लगते हैं कि शायद इस तरह से होगा, शायद उस तरह से होगा, और ये टीवी सीरियल्स, स्पेशली इंडियन टीवी सीरियल्स देख के हमने अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी की तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये ज़िंदगी जो है ये टीवी सीरियल की ही तरह होती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे घर वाले हमेशा यही कहते हैं और मैं आपको भी यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि भाई, ज़िंदगी कभी 3 घंटे की नहीं होती। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और एक जो फिल्म होती है या सीरियल होते हैं वो कुछ घंटे के होते हैं। तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी को जो है टीवी सीरियल से मत कंपेयर करिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि आजकल सास बहू का जो ड्रामा आता है टीवी पे, उसको देख के अपनी असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से सास और बहू का जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। कई सारी लेडीज़ को देखा है कि सिर्फ मूवीज़ को देख के या फिर टीवी सीरियल्स को देख के वो शादी करती हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो रियलिटी फेस करती हैं तो वो डिप्रेस हो जाती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी उतनी अच्छी क्यों नहीं है जितनी उनकी अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि भाई, लाइफ कभी सेम होती नहीं है। लेकिन आजकल शादी ब्याह जो है, अगर आप सुनते हैं, आप इमेजिन करिए, अगर मैं बात करती हूँ कि किसी की शादी हुई है तो आपके दिमाग में सिर्फ हल्दी, संगीत, शादी, फेरे, विदाई, इंगेजमेंट, यही आएगा। लेकिन असली शादी ये नहीं होती, ये तो सिर्फ 4 दिन के सेलिब्रेशंस होते हैं। असली शादी तो वो होती है जो कि फेरे के बाद, विदाई के बाद जो ज़िंदगी है वो शुरू होती है, जिसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पार्टनरशिप होती है, एक दूसरे को समझना होता है और घर की और घर वालों की जिम्मेदारी लेनी होती है। अब काफ़ी लोग काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं कि जिम्मेदारी क्या ही लेनी है, हम क्या किसी घर नौकर बनने जा रहे हैं या क्या, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई किसी के घर का नौकर नहीं बनना चाहता, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनना आपको ज़रूर चाहिए। आप अगर नहीं रह रहे हैं अपने इन लॉज के साथ, चाहे रह रहे हो, आपको रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनना चाहिए। अगर आपके पास आपके इन-लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ आप जिसके साथ रह रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को लेना होता है, और यही कहीं ना कहीं असली मैरिज का मतलब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये ह्यूमन कनेक्शन होता क्या है। देखिए, कनेक्शन सिर्फ साथ बैठना ही नहीं होता, बल्कि कनेक्शन वो फीलिंग होती है जब कोई आपको समझे, आपकी बात सुने और आपकी साइलेंस को महसूस करे। देखिए, हम सब सोचते हैं कि चुप रहना सिर्फ बातें नहीं करना होता है, पर चुप रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसे समझना हर किसी के बस की नहीं होती है। हर इंसान जो चुप होता है वो आपसे कुछ ना कुछ कन्वे करना चाहता है। वो हो सकता है कि आप उसके अपने ना हो या आपने कभी उसे समझा ही ना हो, इसीलिए बोल नहीं रहा हो, पर शांति एक बहुत बड़ा मैसेज अपने साथ लेके बैठी होती है। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमें फील होता है कि मैं इनके सामने फेक नहीं हमें बनना पड़ता, हम जिसके सामने रियल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप एक मुखौटा लगा के जाते हैं। तभी मुखौटा क्या होता है? देखिए, मुखौटा ये नहीं है कि आपने कोई कार्टून कैरेक्टर का मुखौटा ले लिया, वही लगा लिया। जी नहीं, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं, शायद वो आप अपने घर वालों के साथ नहीं हैं। इसीलिए आपके अपनों के साथ और आपके बाहर वाले रिलेशनशिप के साथ आपकी दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, जिसमें हो सकता है एक में आप बहुत ज़्यादा रूड हो, एक में बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली हो, या हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी दोनों बिल्कुल अपोजिट हो। तो ये दोनों पर्सनैलिटी एक जैसी भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, और थोड़ी बहुत अंतर भी इसमें हो सकता है। और जब आप किसी के सामने फेक नहीं कर पाते हैं या आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप रियल रह लेते हैं, वही असली कनेक्शन होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में फेकनेस दिखाते हैं और दोस्तों के सामने रियल होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी जगत में बहुत फेक होते हैं लेकिन घर में रियल होते हैं। तो कौन कहाँ किस तरीके से रियल है, ये आप खुद नहीं बता सकते, बल्कि जो इंसान ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हो वही बता पाएगा कि आखिर उसकी ट्रू सेल्फ क्या है। उसके बाद बात करते हैं कि इंसान को आखिर कनेक्शन ज़रूरी क्यों है। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक सोशल क्रिएचर है।
यानी कि सोशली यानी कि ये इंसान इमोशनली एक दूसरे से जुड़ने के लिए बना है। जन्म के बाद सबसे पहले बेबी क्या ढूंढता है, वो होता है टच। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं और वो जो है अपनी माँ से स्किन टू स्किन कनेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो वो टच फील करता है उससे उसकी ग्रोथ होती है, उसका जो है साइंटिफिकली वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे टच, वॉइस और सेफ्टी और कनेक्शन की नीड होती है। अगर बच्चा इमोशनली नेग्लेक्टेड हो तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी अफेक्ट होता है और वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाता है। यानी कनेक्शन जो है वो सिर्फ इमोशनल लग्जरी ही नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन नीड में भी कंसीडर किया जाता है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जिनके माँ बाप नहीं होते या जिनके घर वाले नहीं होते उनका क्या होता होगा। देखिए, उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी के घर में कोई नहीं है तो बाहर में कोई ना कोई उनका दोस्त या कोई सगा संबंधी उनका ज़रूर होगा। अगर वो भी नहीं है तो लोग पेट को ज़रूर प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग पेट्स को प्यार करते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा क्रेज़ होता है उनके पेट्स को लेकर के, कि उनको वो पेट्स को बिल्कुल इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है तो अपना रोने लग जाते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट और एक कनेक्शन की वजह से होता है। तो ह्यूमन बीइंग कभी भी कनेक्शन के बिना नहीं रह पाता और उनके लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। देखिए, जो ब्रेन साइंस होती है वो कनेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे जब हमें कोई हक करता है, गले लगाता है, प्यार से बात करता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, तो ब्रेन में काफ़ी सारे केमिकल रिलीज होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन। इनको हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। इसीलिए जब हम किसी से गले लगते हैं तो इंसान अपने आप शांत हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में केमिकल रिलीज हो रहा है। प्यार हमें हील करने लगता है। कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को सही कर देती है क्योंकि उसमें एक हीलिंग पावर होती है। उसके बाद जो कंपेनियनशिप होती है वो अकेलेपन को कम करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें हमारी लाइफ में कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अकेलापन आखिर इतना दुखदाई क्यों होता है और असली मतलब क्या होता है हीलिंग का। लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: वेलकम बैक लिस्टर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पते की, यानी कि खुशी और कनेक्शन की, यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप और हैप्पीनेस की। हमने हैप्पीनेस समझा क्या होता है, कैसे होता है और हम कैसे खुश रह सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि कनेक्शन क्या होता है और बिना कनेक्शन के हम रह क्यों नहीं पाते और क्यों हमारे लिए कनेक्शन ज़रूरी है। लेकिन कनेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, तो हम एक और चीज़ को कैसे भूल जाएं, वो है अकेलापन, यानी कि लोनलीनेस। और आपने सोच ये ज़रूर समझा होगा और महसूस भी किया होगा कि अकेलापन बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है, यानी कि पेनफुल होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, लोनलीनेस जो होता है ये सिर्फ अकेले का नाम नहीं होता, कई लोग बहुत भीड़ में भी अकेले रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर नोटिस किया होगा। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि लोनलीनेस का मतलब होता है इमोशनली डिसकनेक्टेड फील करना, यानी आप इमोशनली स्तर पे, इमोशनल स्तर पे आप जो है लोगों से डिसकनेक्ट फील करते हैं। और ह्यूमन ब्रेन लोनलीनेस को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए जब आप अकेले होते हैं या आप लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं, तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपकी नींद चली जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और डिप्रेशन भी ट्रिगर करने लगता है। और कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ये क्रॉनिक लोनलीनेस फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ही बुरा असर डालती है। तो दोस्तों, ये जो अकेलापन होता है, ये सिर्फ अकेले रहना ही नहीं बल्कि भीड़ भाड़ में भी अकेले रहना, अकेले में, यानी कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो इट मीन्स आप लोनलीनेस के शिकार हो चुके हैं। और अकेलापन जो लोनलीनेस होता है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कनेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा मतलब गलत कनेक्शन बिल्ड करने से बेहतर है कि आप कुछ अच्छे कनेक्शन, चाहे एक ही हो, उसे ज़रूर बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, क्योंकि ह्यूमंस को शेयर करने के लिए कनेक्शन ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ खुश रहने के लिए आपको एक्सेप्टेंस ज़रूरी है और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संतुष्ट होना, वो तो चाहे एक्सेप्टेंस हो चाहे रिलेशनशिप, सबके लिए बहुत बेहतर है। यही था आज का शो। आशा करती हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और सीखना और समझने तक ही नहीं बल्कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करेंगे। फिलहाल हो चुका है वक्त हमारे जाने का। आपसे फिर मिलूंगी आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइव में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रखेंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने दो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुँच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, माने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज़ देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो, बहू भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज़ आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम। उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना, ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
2: बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक, आप मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रीअश्योर कर देगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना, और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए, या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
2: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है, कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माएं राशन लेने जाती है ना वहां पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के

0: के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज़ में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रीअश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे, तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है, और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज़ को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज़ हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, कोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
5: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
4: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
5: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
4: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
5: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
4: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? क्योंकि आज है मंगलवार, यानी कि बड़े मंगल का तीसरा बड़ा मंगल, और तीसरे बड़े मंगल के दिन भी हम आ गए हैं। और आज के बड़े मंगल की आप सभी को बहुत बहुत बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। तो भाई आज है बड़ा मंगल, और आज के दिन बड़े मंगल के लिए भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारी गोंडा की न्यूज़ लेकर के आए हैं। गोंडा की न्यूज़ कहें तो कहां कहां भंडारों का आयोजन है, कैसे है, क्या है, सब बताएंगे। लेकिन लेकिन लेकिन जो कि औपचारिकता हमारी होती है भाई, कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई आज कुछ सेगमेंट भी चेंज किया गया है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उसके पहले आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर दे शुभ दोपहरिया।
9: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आज की दोपहरिया है बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल गर्मी का, तो हम क्या ही कहें। जो है वो कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, तो गर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि देर
8: मुझे
9: से
8: तो लग रहा था कि भगवान जी ना
9: दुरुस्त आई है।
8: मुझे लग रहा था भगवान जी भूल गए हैं, मतलब उनको लग रहा होगा कि चलो यार जीवों पे दया कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी सोच के आगे तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल वो हमारे लिए पहले से सब कुछ प्लान करते हैं। जहाँ जैसे कहा जाता है कि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो अनाज कैसे पकेगा, सब्जियाँ कैसे पकेंगी, तो हमें उनकी रजा में राजी रहना ही आना चाहिए। हम कहते हैं ना कि गर्मियाँ क्यों हो रही हैं, अच्छा अब बताओ अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो हमारी बॉडी से पसीना कैसे निकलेगा, जो कि डिटॉक्स होता है हमारी बॉडी का, तो ये सब भी ज़रूरी होता है। तो अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो उसका निवारण भी है। आप उस समय आप घर से ना निकलें जब तेज़ धूप है, अगर निकलें तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ निकलें। तो भाई गर्मियाँ तो हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ हैं, लेकिन गर्मियों के निवारण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बताएंगे आपको बाद में। लेकिन आइए जो हमारा सेगमेंट फर्स्ट रहता है बहुत ही प्यारी सी पोयम और उसके बाद में रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जानेंगे आज पोयम, उसके बाद रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आपको पता है कि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन होता है हमारे बच्चों का सेक्शन। तो भाई आज बन जाना है बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे।
9: वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन थी। और चलिए लिसनर्स, तो आज मैं जो पोइट्री आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो मैंने खुद लिखी है। तो आज मैं आपको अपनी खुद लिखी हुई सुनाऊंगी और आप सभी सुन करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं और इसका जो टाइटल है वो है बीते बचपन के वो दिन। वो नाना और नानी की कहानियों में बीते बचपन के वो दिन, एक रुपए की टॉफी में भी खुश हो जाते थे हम, रातों को छतों पर तारे गिना करते थे हम, जुगनू दिख जाए तो उसे पकड़ने दौड़ जाते थे हम, जुगनू दिख जाए तो उसे पकड़ने दौड़ जाते थे हम, सावन की बारिश का इंतजार करते थे हम, कागज की कश्ती बनाकर पानी में बहाने को बेताब रहते थे हम, बचपन की लड़ाइयों को बड़ा नहीं समझते थे हम, तुरंत रूठ कर तुरंत मान जाते थे हम, अब नहीं है वो लड़ाई झगड़े और वो कहानियाँ, बड़े हो गए हैं हम, अब नहीं है वो लड़ाई झगड़े और वो कहानियाँ, बड़े हो गए हैं हम, फिर भी दिल के किसी कोने में यादें बनकर रह गए हैं बीते बचपन के वो दिन। बहुत याद आते हैं बीते बचपन के वो दिन, हाँ हमें बहुत याद आते हैं बीते बचपन के वो दिन। सो कैसे लगी मैम आपको सबसे पहले?
8: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम तो बचपन में चले गए थे, बचपन में लौट गए थे। और ये मई जून का जो मंथ होता है ना, ये एग्जैक्टली हमें याद दिलाता है हमारी नानी का घर, हमारे मामा का घर। तो एक्चुअली हम लोगों ने अपनी नाना और मामी जो हैं, हमारे मामा मामी हैं जो कि नानी के घर, हम लोगों ने मस्ती भी बहुत की है,
9: बहुत ज़्यादा।
8: तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनलिमिटेड, जब जो पैक मिलता है ना अनलिमिटेड, वैसे हम लोगों ने मस्ती भी अनलिमिटेड की है। तो अब वो दिन मुझे लग रहा है कि वो लोग तो हैं, पर वो दिन वापस जब बड़ा इंसान हो जाता है तो वो नहीं लौटते हैं। और वो गेट टुगेदर वाला सब, पूरे मतलब मामा के बच्चे, हम लोग, मतलब ये लगता था यार कि ये दिन फिर से वही आ जाए और वो दिन
9: बस यही
8: रुक जाए। और पर उस समय की वैल्यू थी, लेकिन आज जो समय की वैल्यू है वो अलग है, पर उस समय की वैल्यू कुछ और थी। कुछ सोचना नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, कोई डांट भी देता था तो तुरंत हम लोग जा करके फिर से उनसे मतलब पलट के बात कर लेते थे। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं, इसलिए तो कहते हैं ना कि बच्चे बन के रहना चाहिए हमेशा से। कि बच्चों में कभी ये नहीं होता है, मतभेद नहीं होता है, अगर किसी ने डांट भी दिया तो अगले ही पल जा करके फिर से वो उनसे बोलने लगते हैं। लेकिन बड़ों में ये चीज बिल्कुल नहीं है। अगर कोई किसी को डांट दे, कोई किसी को कुछ बोल दे, कुछ डांटना तो दूर की बात है, कोई ऐसे ही अपशब्द बोल देता है तो सालों लग जाते हैं उन्हें मनाने में और उनके साथ फिर से वैसा संबंध बनाने में।
9: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लिखने के पीछे जब मैंने लिखा था तो मेरी फीलिंग भी बिल्कुल बचपन वाली थी। तो थोड़ा बहुत हाँ शौक है, हाथ कभी कभी मतलब जब मन करता है तो ऐसे थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज ये बताने के पीछे इसलिए था क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी फीलिंग किसी चीज़ से जुड़ी होती है तो हम बहुत साफ एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। और अब टाइम आता है हमारी रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का।
8: बिल्कुल, तो चलिए पहला आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में हम जानेंगे कि वक्त कभी नहीं रुकता, समय आपकी परिस्थितियों का इंतजार बिल्कुल नहीं करता है। बहाने सिर्फ आपको तसल्ली देते हैं, दुनिया को आपके नतीजे से मतलब नहीं है, ठीक है, दुनिया को आपके नतीजे से मतलब नहीं है, आपकी मजबूरियों से मतलब है। क्योंकि दुनिया सिर्फ ये कहलाने में होती है कि भाई आपका जो, क्योंकि दुनिया सिर्फ ये कहलाने में होती है कि भाई आपका जो भी आपका नतीजा है मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी में होता है ना तो जा करके लोग एक बार जरूर पूछ लेते हैं कि क्या हो गया। और जैसे आप ऊपर उठने लगते हैं ना, पीछे से आवाज क्या आती है, अरे इसे तो घमंड हो गया है, अरे ये तो अब हवा में उड़ने लगे हैं, इनके पास ये है, इनके पास वो है। तो इसीलिए बहाने सिर्फ आपको तसल्ली देते हैं, मौका नहीं। और कभी कभी कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय आपकी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता है। समय तो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अभी तो जून गया था और अभी देखिए फिर जून आने वाला है। मतलब समय, और जैसे दिवाली में अब हम लोग को तो कभी कभी बात करते हैं घर में बैठ करके अंशिका मम्मी और हम, कि अभी जैसे हम लोग में ना वो दिवाली में जब हम लोग वो निकालते हैं घरौंदा वगैरह,
9: हाँ।
8: तो जैसे हम लोग को आलस में होता है ना कि अरे अभी हम टार पे रख देंगे, जो वो एक छज्जा होता है टार पे हम लोग वहां रख देंगे फिर हम लोग निकालेंगे। तो अभी जैसे आलस में तो 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल गए और फिर से दिवाली, अब मतलब अब तो देखो 6 महीने होने वाले, फिर देखिए दिवाली आने ही वाली है 3-4 महीने में। तो समय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब इतनी तेजी से समय बढ़ रहा है कि ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आगे चल करके जो 60 मिनट का एक घंटा होता है वो आगे चल करके 30 मिनट का एक घंटा कहलाएगा।
9: बिल्कुल,
8: ऐसा साइंटिफिक रीजन निकल के आया है। तो आप खुद सोचो कि समय कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो समय का उपयोग करें, समय क्योंकि परिस्थितियों का मोहताज नहीं है, समय तो चल ही रहा है अपने उस पर, समय चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे हम अपने नए और बहुत ही बढ़िया वाले सेगमेंट की ओर। तब तक के लिए सुनते रहें 99.6 FM पे आपकी अपनी आरजे समता एंड आरजे अंशिका को। स्टे ट्यून्ड।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खा।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता एंड आज जे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम के सेगमेंट फर्स्ट को, जो कि है बच्चों के लिए स्पेशल। भाई हम कई बार बता चुके हैं कि मोबाइल ये है, मोबाइल वो है, लेकिन मोबाइल से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं बच्चों के जो अटेंशन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जानेंगे कि क्या है, कैसे है और उसका निवारण भी जानेंगे।
6: तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये है क्या। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अटेंशन, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है अटेंशन डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों में हो रहा है, छोटे उम्र के बच्चों में। मतलब हम आपको बता दें कि 5 साल से लेकर के और बड़े उम्र यानी कि 18, 19, 20 और यहाँ तक कि यूथ में भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसका कारण ये है कि आजकल फोन, जैसे हम कहते हैं ना कि जान चली जाए, जो आपने सुना होगा किसी किसी को कि जान चली जाए लेकिन मोबाइल खराब ना हो, फोन खराब ना हो। और अगर एक दिन आपका फोन खराब हो जाता है तो वो पूरा दिन किस तरीके से बीतता है वो आप बेहतर समझते हैं।
0: बिल्कुल।
6: तो देखिए, हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं हमें उन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे पूरी तरीके से फोन पे डिपेंड है। मतलब आप फोन दे दीजिए फिर उन्हें किसी से बात नहीं करनी है, उन्हें कोई नहीं चाहिए, बस अकेले अपना एक रूम चाहिए और फोन चाहिए। अटेंशन डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है धीरे धीरे आपका जो अटेंशन है वो हर चीज में कम होने लगेगा। हर चीज में मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम चीजों को भूलने लगेंगे, आंखें तो कमजोर होती ही होती हैं। और दूसरा होता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन में कमी। कॉन्सेंट्रेशन में कमी का मतलब होता है कि आप पढ़ेंगे, जैसे आजकल आपने बच्चों में एक बहुत कॉमन सी आपने प्रॉब्लम देखी होगी कि हम पढ़ते तो हैं मम्मी लेकिन याद नहीं रहता है। आजकल बच्चे अक्सर कहते हैं कि
0: याददाश्त में कमी।
6: हाँ, याददाश्त में कमी
0: वो हो जाता है बच्चों का जब कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है तो ही ऐसा होता है।
6: बिल्कुल। और इसके सिर्फ ये तीन ही नहीं, और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि होता है बच्चों के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है और कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं और लड़ाई भी मतलब कैसी,
0: बहुत भयंकर,
6: बहुत भयंकर वाली। और हमें तो याद है कि हम छोटे हुआ करते थे तो इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती,
0: हम लोग की लड़ाई मारपीट से शुरू के मारपीट पे खत्म।
6: हाँ,
0: अब वो गंभीरता वाली लड़ाई
6: हो जाती है,
0: लेने लगे,
6: एक लंबे में एक लेवल हो जाता है कि अरे ठीक है तुम आज के बाद मेरे घर में दिखाई मत देना, और तुम अपने आप को समझते क्या, मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बिल्कुल बड़ों की साइड चले जाते हैं।
0: और बच्चों वाली लड़ाई हम लोग होते थे, हम लोग एक दूसरे के बाल पकड़ लिया, मतलब कुछ भी हाथ में हो बस दे मार,
6: है
0: है ना। लेकिन बस उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा हम लोग दूर रहते थे कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही पल क्या हो जाता था, अरे चलो सॉरी यार मेरी गलती थी ना, ये था ना वो था। बट अब तो ऐसी चीजें हो जा रही हैं कि उसका जो परिणाम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि महीनों महीनों बातें नहीं हो रही हैं।
6: बिल्कुल मैम। तो कहीं ना कहीं बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1 घंटे से भी कम स्क्रीन टाइम को कर दिया है, और अगर 1 घंटे से भी कम अगर उन्हें स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है तो इससे क्या होता है कि इससे उनके दिमाग के जो ग्रेट इश्यूज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं।
0: ओके।
6: और इसके सिकुड़ने से ही उन्हें कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जैसे कई सारी चीजें उन्हें हो जा रही हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत अच्छे से एक वो हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट होने का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने ही मम्मी पापा से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि नहीं मुझे खेलना है, मुझे खेलने दो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा देखो फोन है बहुत अच्छी चीज होती है, और आजकल बच्चों को देना भी बहुत जरूरी है,
0: क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो भाई फोन देना जरूरी भी है जो बात है। क्योंकि अगर हम फोन नहीं भी देंगे, अगर उनको छोटी सी फोन है या फिर मतलब टच फोन है, उन्हें देना भी जरूरी है, क्योंकि वो बाहर आ जा रहे हैं। जो बच्चे जो बड़ी लड़कियां हैं तो वो अगर बाहर जा रही हैं तो उनके हाथ में फोन रहना भी जरूरी है। लेकिन उस फोन का इस्तेमाल जो है, उस फोन का जो यूज है, वो आपके काम के लिए हो, ना कि आपके दुष्परिणाम के लिए हो।
6: बिल्कुल मैम। कहीं ना कहीं आजकल तो मतलब ना पेरेंट्स ही ये समझते हैं कि हम बच्चों को दे रहे हैं तो किस उसमें देना चाहिए, और ना बच्चे ही समझते हैं कि उसका कैसे यूज करना चाहिए।
0: हाँ।
6: तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये समझें कि हमें बच्चे को किस लेवल में देना है, और बच्चे ये समझें कि उन्हें किस तरीके से यूज करना है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताएंगे कि जिनसे ये कैसे यूज करते हैं, ऐसी भी कुछ टिप्स कुछ टेक्निक्स हम आपको आज बताएंगे।
0: ओके।
6: और कुछ ऐसी चीजें भी कि जिनसे इसका जो यूज है वो एक लेवल में मतलब कहीं ना कहीं बंद जाता है। तो सबसे पहले जो चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी हमने आपको कुछ कारण बताए थे कि क्यों होता है, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि आप एक टाइम शेड्यूल कर दीजिए।

0: कि वो 18 या 21 का ना हो जाए, सबसे पहले तो आप पर्सनल फोन मत दीजिए।
1: हाँ।
0: पढ़ने के लिए चाहिए तो आप अपना फोन दे दीजिए,
1: या फिर लैपटॉप पे अगर है तो जिसमें आपने एक नंबर से कोई कनेक्टिविटी नहीं की है, तो लैपटॉप है, टैब है, उसमें आप लोग दें। क्योंकि फोन एक ऐसा मतलब गैजेट है, एक ऐसा माध्यम है कि वो हमेशा हमारे हाथ में रह रहा है।
0: जी मैम।
1: और हम अगर जैसे मैंने हम तो अपने घर में भी देख रहे हैं या फिर कभी कभी इधर उधर भी देखा हुआ है कि फोन जो है अब 6th 7th पार नहीं किया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जा रही है
0: जी,
1: तो उसका जो दुष्परिणाम है वो आपके बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक ये तीनों स्तर खराब कर रहा है।
0: अब आपने सुना होगा कि आजकल मतलब बहुत कम उम्र में, मैंने तो 12, 13 साल के, 10 साल के, 6 साल के बच्चों को भी देखा है कि वो शिकायत करते हैं कि मम्मा बैक पेन हो रहा है, मम्मा गर्दन में दर्द हो रहा है,
1: सर्वाइकल। तो,
0: हाँ
1: हाँ, वो गले में सर्वाइकल हो रहा है, बिल्कुल बताइए आप।
0: और 6 साल के बच्चे शिकायत करें, मतलब 6 साल की उम्र में तो बच्चों को दौड़ना चाहिए, उन्हें काहे की कोई ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि झुक के हम फोन देखते हैं, लेट के फोन देखते हैं। एक कंडीशन में बच्चे मुझे लगता है 2-3 घंटे अगर घर में कोई नहीं है तो वो उसी के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम क्यों आती है? हम सीधे बैठे हुए हैं, हम फोन चला रहे हैं, हम सीधे बैठ के चला ही रहे हैं, अगर कोई टोककर ये नहीं कहेगा कि बेटा यहाँ से उठो तो हम वहीं बैठे रहे।
1: रीढ़ की हड्डी से ज्यादा अंशिका हमारी गर्दन में इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्दन हमेशा झुक जाती है जब हम मोबाइल चला रहे हैं, आखिर गर्दन झुका के ही देख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लेट के मोबाइल देखते हैं।
0: हाँ।
1: तो इस अगर लेट के देख रहे हैं तो उसमें आपका सर और आंख ये दोनों पे इफेक्ट पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बिल्कुल भी ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको आप अपने बच्चों से बिल्कुल दूर रखें। और इस चीज को तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि अगर वो बिना काम के मोबाइल उसके हाथ में है, भले वो गेम ही क्यों ना हो, तो उससे उसको अवॉइड कराएं।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए हम ही अपने बच्चों को रोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं क्या सही क्या गलत, क्योंकि देखिए हम कहते हैं तो शायद इतना बुरा नहीं लगता है, बट बाहर वाला कोई कह देता है अरे दिन भर फोन ही चलाते रहते हो, तो बच्चों को एक हर्ट भी होता है कि अरे नहीं ऐसे मुझे कह दिया। तो आप समझाएं, आप उनके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, आई थिंक हमने ज्ञान बहुत सारा दे दिया है, बहुत ज़्यादा आपको। अब ज्ञान से परे आते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाते हैं, बस यूं गए और यूं
1: जी
0: स्टूडियो।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8880090400।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंश।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आज के गोंडा के जो भंडारों के बारे में। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि आज है तीसरा बड़ा मंगल। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सही विधि और सही जैसे क्या तरीका क्या है, या फिर भोग क्या कैसे लगाया जाता है, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भंडारों के लिए आपको स्वयं थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको भंडारा खाना है तो थोड़ा सा परिश्रम आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे एक जगह तो मुझे पता है कि कहाँ पे है।
8: कहाँ पे मैम?
7: तुम बताओ कहाँ पे।
8: अच्छा मैं बताऊँ? तो एक मुझे जो मालूम है, वो आज वहाँ पुरानी हनुमानगढ़ी सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे है।
7: देखो मैंने क्या कहा था, भंडारे कहाँ हो गोंडा में, ये इनको ना पता हो तो ये हो ही नहीं सकता है, है ना। तभी मैंने कहा कि आप पहले बताइए। तो देखो झट से इन्होंने जान लिया कि कहाँ पे है। तो आज यानी कि 19 मई को है तीसरा बड़ा मंगल। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ माह के हर मंगल को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम और हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आने वाले संकट भी दूर होते हैं। तो भाई आज एक मित्रता का भी दिन है, जिसे कहा जाए कि अगर हनुमान जी और राम जी की फ्रेंडशिप डे भी है, क्योंकि वो आज के दिन मिले थे। तो इसीलिए ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आज के दिन हम पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। देखो हर किसी का अलग विधि विधान होता है। कोई सुबह उठ करके भोर में ही कर लेता है, कोई दोपहर में करता है, कोई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो शाम को करते हैं पूजा। पर जो सही समय है पूजा करने का वो ये है कि सुबह उठकर स्नान कर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें, सिंदूर, चंदन, अक्षत अर्पित करें, पीले फूल और माला जरूर से अर्पित करें, हनुमान जी को नारंगी सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें, और प्रसाद भोग में क्या लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू, गुड़, चना या फलों का भोग भी लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम का नाम भी निरंतर आप जप करें, और ये काम जरूर करें आप, जो कि बिल्कुल स्पेशली बताया जा रहा है कि ये काम आप जरूर करें कि इस दिन शरबत या जल का दान करने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मंदिर या गरीब लोगों में पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि का दान करें, जिससे साधक को शुभ फल मिलता है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो अंशिका को मैं पूड़ी सब्जी खिला दूं आज?
8: बिल्कुल, नेकी और पूछ।
7: घर की छत या खुली जगह पर पक्षियों के लिए पानी रखें, घर और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें, और अगर आप बड़े

0: मंगल का व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य के पालन को भी नियम को पालन करना चाहिए। अब इन चीजों का भोग जरूर से लगाएं। क्या है उसमें कि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू बेहद पसंद हैं और वो भोग लगाने से पूजा का फल जरूर मिलता है और हनुमान जी की कृपा बरसती है। इसके अलावा गुड़ और चने का भोग भी लगाना चाहिए। इससे साधक के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कलावा बांधकर और सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों में नारियल अर्पित करें। इससे पैसों की तंगी भी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। केसरिया, जलेबी या इमरती का भोग लगाने से बजरंग बली अति शीघ्र प्रसन्न होकर शत्रु भय और मानसिक तनाव का नाश करते हैं। ओके, तो कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो हनुमान जी को मीठा पान यानी पान का बीड़ा सौंपने से वह काम तुरंत बन जाता है। हनुमान जी को कोई भी प्रसाद चढ़ाएं, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता जरूर रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है।
1: मतलब आज हमने बहुत कुछ जान लिया बड़े मंगल को लेकर के, और आप सभी से मैं यही कहूँगी कि ये जो भी हमने अभी आपको चीज़ें बताई हैं वो आप ज़रूर करें, और इसमें से कुछ चीज़ें तो मतलब मैं करती हूँ और कुछ चीज़ें मुझे नहीं आज पता चली हैं तो वो भी अब मैं करूँ।
0: बिल्कुल, तो भैया ऐसा है कि आज के दिन के लिए जिनकी भी मनोकामनाएं हैं जो भी हैं, कल एक जगह मैं गई थी और वहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छी लाइन लगी। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हम आध्यात्मिक और भौतिक, उन्होंने दो वर्ड यूज किए थे। अब मैं उसका वर्ड को सही रूप में बताती हूँ
1: जी।
0: अच्छा, तो मुझे पहले ये बताओ कि ये आध्यात्म का एक लिंक चल रही है, तो मुझे ये बताओ कि हम मंदिर क्यों जाते हैं?
1: हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए,
0: और
1: अपने मन में जो भी बातें होती हैं जो हम किसी से नहीं कहते हैं वो हम भगवान जी से कहने जाते हैं,
0: और
1: पूजा करने जाते हैं,
0: और कुछ मांगने नहीं जाते हैं।
1: हाँ, कुछ वही मैंने कहा ना, जो बातें मन में होती है वो उनसे कही जाती है, उनसे मांगा जाता है कि आप हमारी।
0: तो मांगा आपने नहीं बोला ना, आपने कहा कहने जाते हैं, तो मांगने जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो जब हम मंदिर जाते हैं, किसी आश्रम जाते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है?
1: बहुत शांत, मतलब एक बहुत
0: सात्विक होता है, आध्यात्मिक होता है।
1: हाँ।
0: और हम जब मंदिर के बाहर निकलते हैं तो हम फिर उन भौतिक बन जाते हैं, भौतिक बन जाते हैं। तो हम आध्यात्म के पास जा करके भौतिक चीजों को मांगते हैं। हे भगवान, मुझे धन देना, मुझे दौलत देना, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मुझे पास कर देना, मेरे शत्रु हैं, मेरे ये हैं, वो हैं, तो वो भौतिक तो हुआ
1: जी मैम,
0: ठीक है। और अगर आप भौतिक में रह करके आध्यात्म को अगर अपनाओ तो अपना सकते हो? नहीं अपना सकते। तो आध्यात्म के पास भौतिक से निकल करके हमें आध्यात्म के पास जाना होता है, तभी हमारी भौतिक चीजों की प्राप्ति होती है।
1: ओके,
0: अच्छी बात है ना।
1: अच्छी बात,
0: समझ में आया कि आउट ऑफ स्टेशन चला
1: गया? नहीं, आउट ऑफ स्टेशन नहीं गया, मतलब समझ में आया मुझे थोड़ा।
0: क्या?
1: कि अध्यात्म से भौतिक चीजों से निकल करके अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए,
0: और हमें अगर कुछ मांगना है तो हम अध्यात्म के ही जरिए से वो मांग सकते हैं, भौतिक चीजों को मांग सकते हैं, जो कि हर एक मनुष्य का एक काम होता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि चैट बॉक्स में अभी तक किसकी किसकी एंट्री हो गई है, और हम जो अभी इतना बड़ा ज्ञान दिए हैं वो उस ज्ञान को किसने किसने सुना है।
1: ओके, तो बैक लाइन से शुरू करते हैं, और नागेश्वर जी हैं, कह रहे हैं हनुमान जी को कौन से वस्त्र चढ़ाने चाहिए?
0: हनुमान जी के लिए तो वैसे तो वस्त्रों के लिए कोई अभी विशेष उसमें नहीं है, मतलब उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि जो जनेऊ होती हैं वो पुरुषों को आज के दिन चढ़ानी चाहिए
1: जी मैम। और साथ में लिख रहे हैं हनुमान जी को भगवान शंकर से क्या वरदान मिला था? ओके, ये हम आपको बताएंगे नागेश्वर जी। और साथ में लिख रहे हैं मुझे पूछना था कि जहाँ अगर भंडारा चल रहा हो तो मैप पर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, आजकल सब कुछ
0: मैप में, अगर जहाँ पर आपको भीड़ की क्राइसिस लगी
1: मतलब वहीं पे,
0: वहीं भंडारा है, जहाँ आपको वो ग्रीन दिखा, रेड जहाँ रेड आपको दिखा मैप में, क्योंकि देखिए आप बड़े शहरों में जाते हैं, जब आप मैप देखते हैं तो जहाँ रेड होता है वहाँ क्या समझते हैं कि वहाँ ट्रैफिक है ना, तो यहाँ गोंडा में भी ऐसा ही है, जहाँ आपको ट्रैफिक का सिग्नल मिले ना, बस समझ जाइए कि आज के दिन वहाँ भंडारा है
1: और आपको पहुँचना है,
0: आपको वहाँ पहुँचना है।
1: ओके,
0: चाहे आप वहाँ फ्लाइट से पहुँचो, चाहे आप BMW से पहुँचो, चाहे आप अपनी
1: चल करके पहुँचो,
0: नहीं चल कर नहीं, कौन सी बाइक आती है जो बुलेट आती है,
1: बुलेट
0: बुलेट जो आती है, आप उससे पहुंचे। तो आप किससे भी इन तीन लग्जरी से पहुंच सकते हैं, या तो फ्लाइट से, या तो BMW से, या तो बुलेट से। तो आप इन तीनों चीज में से आप कोई भी प्रेफर करते हैं, अगर नहीं तो सबसे साधन, सबसे सरल साधन है आपके पास 11 नंबर की बस है, आप उससे जा सकते हैं और आप भंडारा ग्रहण कर सकते हैं।
1: तो नेहा जी आ चुकी हैं जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं, हेलो नेहा जी, और नीना जी आ गई हैं और इसी के साथ बहुत सारी बातें।
0: तो आज जो अभी हनुमान जी के लिए बताया गया है और अभी तक हम लोगों की थोड़ा ही टाइम हुआ है बोलते हुए, तो आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। चलिए यहाँ लेंगे एक ब्रेक और तब तक अभी जो भी बातें हुई है उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम बस यूं गए और यूं आए एक नेक्स्ट और अच्छी एक टॉपिक को लेकर के। तो सुनते रहिए मेरे साथ और अंजलि के साथ, स्टे ट्यून।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। दोस्तों आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट चलते हैं कुछ बच्चों की हेल्थ को लेकर के। आज हम आपको बताएंगे कि भाई गर्मियां बहुत हैं और गर्मियों में बच्चों के साथ कोई भी अगर आप वो बाहर जा रहे हैं खेलने, या बच्चे क्यों, हम लोग बड़े भी हैं कि गर्मियों में खाना किसी को भी अच्छा ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों के लिए तो भाई बड़े तो ऐसा है ना कि हम लोग समझ जाते हैं कि भाई अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं ताकि वो हाइड्रेशन हमारे बॉडी में बनी रहे। लेकिन बच्चों के मामले में अगर हम ये बात बोलें कि भाई आपने क्या कहते हैं कि क्या करना है कि अगर वो लोग ज़्यादा पानी पी ले रहे हैं तो फिर ये हो जा रहा है कि पानी नहीं, वो भी चिल्ड पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या फिर कभी गन्ने का जूस पी रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, तो उससे भी तबीयत खराब होने के कारण बन सकते हैं, जिससे सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है उल्टी।
4: बिल्कुल, बच्चों में कहीं ना कहीं उल्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और वो इसलिए होती है कि उन्हें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ में अभी जैसा मैम ने बताया तो वो अपनी भूख को भी जो है समझ नहीं पाते हैं। तो आज उसके लिए कुछ टिप्स, हम कुछ टेक्निक्स आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके पानी या ORS ज़रूर पिलाना चाहिए। उल्टी बंद होने पे, जब उल्टी उसकी बंद हो जाए उसके बाद आप उसको जो भी खाना दे रहे हैं वो बहुत हल्का खाना दीजिए, जैसे कि खिचड़ी दे दीजिए। और हाँ, बच्चों को मीठा कुछ पिलाते रहिए। मीठा पिलाने का मतलब है कि जैसे मीठे में आप आजकल वो रसना वगैरह पिला हाँ। सकते हैं, या कुछ भी नहीं तो आप घर में ही नींबू पानी चीनी उनको करके पिला दीजिए। आजकल तो मैंगो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप पके आम का आप उनको रस भी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम सूप की बात करें तो हाँ, आप सूप भी दे सकते हैं, आप टमाटो सूप दे दीजिए, पालक का सूप बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी, लेकिन वो तब उन्हें दीजिए जब उनकी वॉमिटिंग रुक जाए, क्योंकि पालक जो होती है वो हैवी होती है।
0: बिल्कुल,
4: आपको तब नहीं देना है जब वॉमिटिंग हो रही है, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब आप उनको पालक का सूप दे सकते हैं।
0: ये एक अंदरूनी ताकत के लिए,
4: हाँ अंदरूनी ताकत के लिए, ये बच्चों में धीरे धीरे अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है।
0: तो अंशिका टाइम हो गया है
4: जी मैम
0: 2:52, तो अब होता है टाइम जैसा कि हमारी औपचारिकता है कि स्टोरी टाइम।
4: स्टोरी टाइम,
0: ठीक है। तो आज की स्टोरी टाइम जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा मॉरल वाली है। तो बताते हैं कि जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे, ठीक है
4: जी।
0: तो चलिए उस पर एक कहानी की आधारित है मैं बताती हूँ आज आपको कि एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और शामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि शामू आलसी और चालाक। बरसात का मौसम आने वाला था, रामू ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, समय पर पानी दिया और खेत की देखभाल की। दूसरी ओर शामू ने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उसने खराब बीज बो दिए और खेत की देखभाल भी नहीं की। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई, रामू के खेत में सुनहरी गेहूं की बालियां लहरा रही थी, पूरा गांव उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था, लेकिन शामू के खेत में सूखी और खराब फसल हुई। वह दुखी होकर रामू के पास गया और बोला, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? रामू मुस्कुराया और बोला, भाई जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, अगर मेहनत, ईमानदारी, अच्छे कर्म बोगे तो सफलता और खुशी मिलेगी, और अगर आलस, लापरवाही बोगे तो दुख और पछतावा ही मिलेगा। उस दिन शामू को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने मेहनत करने का फैसला किया। तो बच्चों, आज की मॉरल स्टोरी से यही होता है कि एग्जाम टाइम में सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और उसके बाद आपको फल का इंतजार करना है। ये नहीं कि आलस है और मन नहीं लग रहा है, अरे
4: नहीं
0: पेपर है
4: करेंगे।
0: हाँ नहीं पढ़ाई करेंगे, चलो देख लेंगे जैसा एग्जाम में आएगा, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। कुछ बच्चों की ये भी फीलिंग होती है, तो प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। इंसान अपने कर्मों का फल जरूर पाता है, इसीलिए कहा गया है जैसा बोगे वैसा ही काटोगे।
4: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्पेशली हम बताना चाहेंगे कि इस बात को अपनी लाइफ में उतारें, समझें। और आपके पास जो भी, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी काम है करने के लिए, हमें पढ़ाई करनी है या एवरीथिंग, अगर कोई जॉब में है, जो भी है, तो हर जगह पे आप हमेशा ऐसे काम करिए कि लोग आपके एग्जाम्पल दें कि हाँ देखो उसने इतना अच्छा काम किया, वैसे कर।
0: बिल्कुल, तो चैट बॉक्स में मुझे लग रहा है रंगारंग हो गया है,
4: रंगारंग कार्यक्रम है। बिल्कुल
0: रंगारंग कार्यक्रम है। नागेश्वर जी, नेहा बहराइच से, प्रीति जी, तो एक बार हम मैसेज रीड कर लेते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े से मैसेजेस भेजे गए हैं, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक सॉन्ग।
4: ओके, तो नागेश्वर जी का मैसेज है कि अब वो प्रीति जी को पूछ रहे हैं कि आप तबीयत कैसी है, आपके हस्बैंड की, और तबीयत सही हो गई है, मुझे कुछ सवाल पूछना था, अगर हम बेगुनाह होते हैं तो बहुत दुष्ट है,
0: 5 साल की
4: सजा मिल गई हो तो हमारी सजा खत्म होने के बाद हम वह गुनाह कर सकते हैं तो क्या?
0: बिल्कुल करिए, उसके बाद आपको सजा नहीं, उसके बाद सीधे कुछ और मिलेगा।
4: हमने तो सजा पहले ही काट ली, मतलब कितने दुष्ट है नागेश्वर जी, मतलब एक बार सजा आपने काट ली फिर आपको वही करना है।
0: नहीं, वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग समझते नहीं है, वो अपनी आदत में डाल लेते हैं, है ना, तो वो उनकी आदत में है। चलो कोई नहीं, नागेश्वर जी,
4: प्रीति जी लिख रही हैं, दोनों मैम को शुभ दोपहर, या शुभ दोपहर आपको भी प्रीति जी। और इसके बाद
0: प्रीति जी आप आई कितने बजे वो बताइए।
4: ओके, ये हम देख लेते हैं कि प्रीति जी कितने बजे आई। तो प्रीति जी मैम आई है 2:37।
0: वाह वाह वाह, क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग भैया। जो मेरी होनहार फ्रेंड्स हैं तो भैया वो तो टाइम से आ जाएगा। चलो मुझे देनी है गुड न्यूज आप सभी को। भाई लिसनर्स आप सुन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, वो ये है कि मैं आ रही हूँ कल मॉर्निंग में, मॉर्निंग गोंडा में।
4: okay.
0: तो गुड मॉर्निंग गोंडा में आएंगी कल आपकी आज समता, और आप सभी से निवेदन है कि ठीक 3 बज जाने के बाद ही आप अपनी फरमाइशी के लिए फोन किया करिए, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं और आपकी कॉलिंग आने लगती है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि जब 3 बज जाएं उसके बाद ही आप कॉल करें और अपनी फरमाइश को आप दे सकते हैं। तो चलिए हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में, अंशिका मिलेंगे आपको सुन सहेली में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
4: बाय दोस्तों। और चलिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा आपके उस वाले शो में जिसका नाम है फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को। गर्मी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो दोस्तों, अगर मन शांत हो तो मौसम भी थोड़ा नरम लगता है। और इस तपती दोपहरिया में दो पल निकालिए, ठंडा पानी पीजिए और अपने आस पास देखिए कहीं कोई पशु या पक्षी पानी की जरूरत तो नहीं, उसे भी पानी पिलाइए। खुद से बस इतना कहिए, ये मौसम भी है और मौसम ही तो है, गुजर जाएगा, लेकिन मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। और अब इसी सुकून के साथ में आगे बढ़ेंगे आज के अपने शो में जिसका नाम मैंने आपको बखूबी बता दिया। अगर आपको भी ट्यून करवाना है अपना पसंदीदा सॉन्ग या कोई डेडिकेशन है या फिर किसी खास के लिए, समोन स्पेशल के लिए, कुछ आपके जज्बात है जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई आपका दोस्त है जो रूठ के आपसे कहीं जा रहा है तो उसको कोई सॉन्ग अगर डेडिकेट करके रोकना चाहते हैं, बेशक से फोन मिलाइए। नंबर वही है 6393316429 जिससे आप रूबरू हैं। कई दफा आपने इस पे कॉल भी किया और लगातार आप सभी की कॉल्स आ भी रही है, बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं। लेकिन उससे पहले भाई आज है बड़ा वाला मंगल यानी कि जेठ का दूसरा मंगलवार। कहां कहां पे लगा है लंगर बताइएगा जरूर। फिलहाल शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा और आज के पहले नगमे को एंजॉय करिए। और हाँ, इस नगमे को हम डेडिकेट करेंगे यानी आपकी अपनी आर्जे आकांक्षा डेडिकेट कर रही है उस मौसम को, उस बरसात के उस ठंडे वाले मौसम को या फिर उस इंसान को जो हमें ठंडी हवाओं के झोंके की तरह लगता है, जैसे हमारे कैफ जी कई दफा में कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो हम इसीलिए उनको गुड मॉर्निंग में ही जवाब देते चाहे वो दोपहरिया क्यों ना, क्योंकि हमें एहसास हो जाता है कि हाँ सुबह का वो जो पहली पहली हवा होती है ना बहुत प्यारी सी लगती है, वो वाला एहसास हमें मिल जाता है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ करना है तो प्लीज प्लीज प्लीज कॉल कर लीजिए। फिलहाल बढ़ेंगे आज की पहली वाली डिमांड की ओर, नहीं हम जिस डेडिकेशन की हमने बात की उस सॉन्ग की ओर। और गाना बड़ा पसंदीदा है हमारा, हमारी प्लेलिस्ट का, एंजॉय करिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो हमारा नाम बदल के कुछ भी रख सकते हैं, वैसे बहुत सारे नाम दिए हैं आपने, एक आध नाम और जोड़ देंगे तो हमें खुशी होगी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए और मौसम से पूछिए भैया इस गाने के माध्यम से कि उनका आता पता क्या है। फिलहाल ये गाना

हाँ जी दोस्तों, गर्मी का हाल ऐसा है कि मोबाइल भी कह रहा है कि भाई मुझे भी थोड़ा सा आराम दे दो, मैं भी अब गर्म हुआ जा रहा हूँ गर्मी से। तो हमने कहा कि क्यों ना हम पूछ लेते हैं मौसम से कि वो अपना आता पता बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। फिलहाल एंजॉय करिए इसी ट्रैक को 3 से 4 के सफर में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी दोस्तों, तो मौसम के लिए हमने कहा थोड़ी सी आवाज लगा दे, हम भी अपनी ओर से थोड़ी सी प्रार्थना कर ले भाई। नेकी तो हर कोई कर रहा लंगर लगा के, और उस लंगर तक हम नहीं पहुंच पा रहे वो बात दूसरी है। फिलहाल जिसको भी लंगर का स्वाद मिले प्लीज उस प्रसाद को जरूर खाइएगा, बड़ा मजा आता है भाई। इतना स्वाद तो कहीं किसी पार्टी फंक्शन के खाने में नहीं होता है जो लाइन में लग के लंगर खाने में होता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे सुखी राम जी की। चलिए सुखी राम जी क्या सुनना चाहते हैं आज, हम भी हो जाते हैं सुखी इस गाने को सुन के।

भाई हम तो कहेंगे अगर किसी को दिल लेके जाना है तो प्लीज शिमला कश्मीर या ऐसी जगहों पे लेके जाइए जहाँ पे बर्फबारी हो रही है। भाई मई के मौसम में भी शिमला में बर्फबारी होती है, आपको पता है, हमको इनविटेशन भी आया होता है, लेकिन हम जाने को कैसे तैयार हो जाए आप लोग को छोड़ के, आपका कार्यक्रम फिर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमने कर दिया उसको पोस्टपोन। कभी अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे, फिलहाल एंजॉय करिए इस प्यारे से नगमे को। और अगर आपको भी कॉल करके अपना नंबर मतलब गाना ट्यून करवाना है तो नंबर वही 6093316429।

बात वैसे भी नहीं माननी चाहिए और मानिएगा भी नहीं। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड है हमारे प्यारे कॉलर यानी कि मुस्तफा जी का। चलिए सुन लेते हैं इनकी डिमांड। मुझे लग रहा है कि हमने सुखी राम जी और मुस्तफा जी के सॉन्ग को चेंज कर दिया है आज के लिए। मान लीजिए आप दोनों की यही डिमांड थी और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। आप लोग की लगातार कॉल्स भी आ रही है इसलिए कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इधर से उधर और गर्मी ने तो भैया प्रकोप ही अपना हम पे भरमार उड़ेल रखा है। फिलहाल इस गाने के बाद हम चलेंगे पंडित जी की डिमांड की ओर और फिर आएंगे हम अपने प्यारे प्यारे अहमदाबाद वाले लिसनर की डिमांड की ओर। उनका शुभ नाम है भाई अब्दुल मुजीम जी। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए।

प्यारे श्रोताओं, वैसे मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि गर्मी में इंसान पानी के लिए तरसता है, अगर उसको नहीं मिलता तो भटक जाता है। लेकिन आज मैं क्या बोलूं, लगातार आपकी इतनी कॉल्स आ रही है कि मैं भूल जा रही हूं, मुझे लिंक भी लेना है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वे डिमांड की ओर, और हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी की डिमांड है, उसके बाद आएंगे हम अपने प्यारे अब्दुल मुजीम जी की डिमांड की ओर। डिमांड फिर से खास है भाई, और हमें लग रहा है आज फिर से हमने सेठ जी को ये सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। फिलहाल पंडित जी की डिमांड को एंजॉय करिए।

0: कभी कभी
1: जी हाँ दोस्तों,
0: सबसे लंबा सफर खुद तक पहुंचने का होता है।
1: बेशक कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है ये सफर। और आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी की डिमांड पे। और अभी हम चलेंगे चैट बॉक्स की ओर और उसके बाद आएंगे अपने प्यारे लिसनर यानी कि अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड की ओर। मुझे लगता है आज भी इन्होंने अपने सेठ जी को ही डेडिकेशन में दिया होगा ये वाला गाना जो आपने एक दफा और सुना है। फिलहाल मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, प्रबल मिश्रा जी हैं सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, चैट बॉक्स की बात करी नागेश्वर धाकर जी हैं रतलाम की गलियों से, कमल नैन जी हैं शुभ दोपहर आपको भी भाई साहब, और धर्मेंद्र मोहन भारती जी भी आ गए हैं। कॉलर ट्यून गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जाओ सभी हनुमान जयंती के स्वागत में कुछ भजन है आकांक्षा जी, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः आपको भी। और इसके अलावा अब्दुल मुजीम साहब भी हमारे साथ में हैं। झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, ओहो आशिकों के महफिल में बच्चे आने लगे हैं, क्या खूब लाइन है। इन लड़कियों को वहम है कि हमारी खूबसूरती बढ़ गई, मसला तो ये है कि मोबाइल के कैमरे में अच्छे अच्छे आने लगे हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप सभी ने जी हाँ फीडबैक दिए हैं। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर जो कि इन्हीं की डिमांड है यानी कि हमारे अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड है। चलिए सुन लेते हैं, काफी देर से बता रहे हैं इन्हीं की डिमांड है। फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम देव प्रसाद जी और धर्मेंद्र मोहन भारती जी की।

0: गरीबों को दुनिया में गुर्बत ने मारा, शराफत अली का।
1: तो ऐसा लग रहा है कि कॉल्स की बारिश हो रही है भाई हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे प्यारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड। और इसमें हम ऐड करेंगे अपने देवी प्रसाद जी को। देवी प्रसाद जी, मुझे लगता है कि आपको हनुमान जी की कृपा की ज्यादा आवश्यकता है, तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ। फिलहाल बोलते हैं जय बजरंगबली और चलते हैं मचाने खलबली इस गाने के साथ में।

चुटकियों में आपका सारा संगठन लेने वाले हनुमान जी। जी हाँ, सेवा कर लीजिए और मना लीजिए अपने भोले भंडारी की तरह, उन्हीं के अंश स्वरूप हनुमान जी को। वैसे तो आप कभी भी बुलाएंगे वो आ जाते हैं, पर उनका प्रेम चुटकी बजाने से काम

की गलियों से आपका भी स्वागत करते हैं इंदु जी, और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया इस भजन को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीना शर्मा जी ने भी भाई फीडबैक दे दिया है रुड़की उत्तराखंड से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड है। बहुत सारी डिमांड्स आ चुकी है, इसलिए रफ्तार को तेज करती है आपकी रफ्तार मेल यानी कि आरजे आकांक्षा।

जी तो छोला छोला मत करिए, आज करिए छोला छोला दो। हाँ जी, क्योंकि आज लगे हुए लंगर और भंडारे, भाई हम नहीं खा पा रहे, जो खा रहा है वही उसका लुफ्त उठाए। फिलहाल के लिए हमारे बीच में मौजूद हो गई हैं रिंकू जैन जी और एस जी, आप दोनों का भी स्वागत और अभिनंदन है। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारी निशा जी की डिमांड है फ्रॉम पटेल नगर गोंडा, और उसके बाद आएंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर जो कि होने वाली है, किसकी बता देते हैं, जो कि होगी हमारे प्यारे राशिद जी की, और उसके बाद होंगे कुमार टेलर साहब, फिर होंगे हमारे कमल जी, और फिर होंगी हमारी मोहिनी तिवारी जी और कविता जी की डिमांड। फिलहाल बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है।

अच्छा जी, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी, बड़ी ही खूबसूरत पसंद आपकी, मजा आ गया सुन के। जो हमें सुनती है पटेल नगर गोंडा से। अभी बढ़ते हैं हम राशिद जी की डिमांड की ओर, और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम अपने प्यारे कुमार टेलर साहब की फ्रॉम गौरा चौकी।

क्या बात है, बहुत खूब कवाली, मुझे बड़ी पसंद आई। थैंक यू सो मच राशिद जी। और मैं भी इसमें, हाँ जी, इंदु जी के साथ में बिंदु जी भी आ गई हैं और रामकृष्ण नंदन जी आ चुके हैं इलाहाबाद से। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।

भाई मजा आ गया मुझे तो सुन के। उम्मीद आप सभी को भी उतना ही पसंद आएगा। चैट बॉक्स में वैसे हरियाली छाई हुई और लग रहा है कि आप लोगों को काफी पसंद आया है। और अब हम चलेंगे कुमार टेलर साहब की डिमांड की ओर। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आपको भी अगर कॉल करना है तो कॉल तो बेशक कर ही सकते हैं ना 6393316429 पर अपने गानों की डिमांड के लिए। फिलहाल ये गाना, और इसके बाद आएंगे हम अपने प्यारे रवि जी के बहुत ही पसंदीदा गाने की ओर, जिसकी डिमांड की गई कमल जी के द्वारा।

क्या बात है भाई, थोड़ी देर के लिए लेकिन मूड ऐसा स्विंग हुआ जिसका कोई जवाब ही नहीं। मजा आ गया मेरे को तो, और मुझे लगता है आप लोगों को भी उतना ही आनंद आया होगा। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे कमल नयन जी की डिमांड है, लेकिन हमारे चिंटू जी का बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग है जो हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। चलिए मिल के सुनते हैं इस नगमे को 3 से 4 के सफर में आपके शो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून में।

भाई आज के दिन को ध्यान में रख के अगर कहें तो बस एक ही लाइन याद आ रहा है, दैया दैया दैया रे, जल्दी लाओ गरम पूड़ी भैया रे। आप बता सकते हैं आपकी तरफ से भी अगर कोई राइमिंग बन रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। और आर के श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत है, और दीपक कुमार जी बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए मनकापुर से, हमारे प्यारे लिसनर हैं ये, बहुत बहुत हार्दिक वाला स्वागत और अभिनंदन। फिलहाल दैया दैया दैया रे, लाओ जल्दी गरम पूड़ी भैया रे।

और हाँ जी, इस गाने के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारी कविता जी की डिमांड और मोहिनी जी को डेडिकेशन में भेंट किया गया है। और गाना क्या भैया, दोस्तों को भी ऐसे सॉन्ग्स कोई डेडिकेट कर सकता है। सुनिए और एंजॉय करिए।

भाई इतना भयानक डेडिकेशन कोई अपनी फ्रेंड को कैसे कर सकता है। फिलहाल एक समय पे ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, हर एक दिल टूटे आशिक के दिल का मरहम हुआ करता था ये गाना। और चलते हैं, आज भी अगर ऐसा कुछ होता है ना तो लोग ऐसे वाले गाने को चेप दिया करते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारे कमाल जी की डिमांड, कलाम जी है सॉरी, कलाम जी की डिमांड जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। गाना बड़ा ही खूबसूरत है और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके, वो भी बहुत ही बेहतरीन सी डिमांड है। और डिमांड किसकी है ये हम तभी बताएंगे, फिलहाल ये गाना।

हाँ जी, और वक्त ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं चलता है। 3:44 हो रहे हैं भाई स्टूडियो क्लॉक, और नेक्स्ट डिमांड होगी हमारी प्यारे दिलीप कुमार जी की, जो मैं दिल्ली से सुनते हैं, और उसके बाद होंगी हमारी सबी हाजी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए, और गाने आज बहुत सारे छूटेंगे जो मैं प्ले

शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड आपने अभी एंजॉय की है हमारे कमाल कलाम जी की डिमांड पे। और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे दिलीप कुमार जी की फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद सबिया जी आपकी बारी। निबर जी आपका सॉन्ग मुझे क्लियर नहीं हो रहा, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो प्लीज कॉल कर लीजिए ताकि हम आपके गाने को प्ले कर पाए, फिर हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के। काफी सारी डिमांड आज हमारे पास में आई हुई है। हाँ जी, और नेक्स्ट डिमांड निबर जी के बाद होगी अजीज जी की। अगर निबर जी आप कॉल नहीं करेंगे तो अजीज जी के गाने में हम आपको ऐड कर देंगे।

जी श्रोताओ, बहुत ही सुंदर सी डिमांड। अभी आपने ये लव सॉन्ग सुना है, रोमांटिक हिट्स में से एक, 90s से जो लिया गया था हमारी दिलीप कुमार जी की डिमांड पे, जो हमें दिल्ली से सुनते हैं। और अभी हम बढ़ेंगे अपनी सबीहा जी की डिमांड की ओर, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड हम लेके आएंगे निब्बर जी की, फिर होंगे अजीत साहब, फिर होंगे हमारे रितेश जी, और अगर वक्त रहा तो हम किसी और के सॉन्ग को ले पाएंगे। अदरवाइज आज बहुत लंबी लिस्ट है जिनसे हम माफीनामा जारी करने वाले। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

गाना हमारी प्लेलिस्ट में से एक नगमों में से है। भाई सबीहा जी, आपकी डिमांड हमेशा से मेरे दिल के करीब रहती है, बहुत ही प्यारी डिमांड थी, थैंक यू सो मच। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो की है हमारे प्यारे निब्बर जी की डिमांड। चलिए सुनते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं। बड़े दिनों बाद रेलवे क्रॉसिंग से आज मैं इनके गाने को ट्यून कर पाई, वरना हमेशा माफी ही मांगती रह जाती।

अब्दुल मजीद साहब, हर दिन हर किसी का गाना नहीं प्ले हो सकता, एक ही घंटे का वक्त होता है, मेरे लिए सारे लिसनर में बराबर हैं और इसीलिए मैं माफी चाहूंगी। फिलहाल इसके बाद निबर जी के बाद होंगे अजीत साहब, फिर होंगे हमारे रितेश जी और आज की लास्ट डिमांड होगी हमारे पूनम तिवारी जी की। और माफीनामा जो मैं जारी करती हूँ वो है हमारे शहनवाज जी, जिनका आपने जिक्र किया था, मुजीब साहब, और फिर मोहम्मद अयूब जी हैं, प्रिया तिवारी जी हैं, राजू सलमानी जी हैं, दिवांशी जी जो कि क्लास फर्स्ट में मात्र बहुत छोटी सी प्यारी सी कुड़िया हमारी, और उनका भी सॉन्ग मैं नहीं ट्यून कर पाऊंगी, क्या करूं, एक ही घंटा है मेरे पास।

हाँ जी, और एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे जिन जिन के आज सॉन्ग हमारी रह जाएंगे उनसे हम माफी चाहेंगे, और उनके नाम है शहनवाज जी अहमदाबाद से, और मोहम्मद अयूब जी हमारे पटेल नगर से, समरीन जी हैं, और उसके बाद प्रिया तिवारी जी हैं, राजू सलमानी जी हैं यानी हमारे रॉबिन हुड जी, आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से दिव्यांशी जी, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी नन्नी सी एक गुड़िया थी एक साल मात्र की, आपको बता भी नहीं सकती कितनी प्यारी आवाज़ थी इनकी, और रीना शर्मा जी हैं उत्तराखंड से, और इसके अलावा रीत लाल जी हैं अलाहाबाद से, और नेक्स्ट डिमांड हमारे अभिनव पांडे जी की गायत्रीपुरम से, और सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, इन सभी की डिमांड आज छूटने वाली है। फिलहाल अजीज जी की डिमांड पे सुनिए ये प्यारा सा गाना।

इतनी खूबसूरत सिडिमांडी भाई अजीत साहब आपकी मैं क्या ही बोलूं, मजा आ गया ये हमें सुनते हैं मुंबई से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि रितेश जी की, और उसके बाद लेंगे हम पूनम तिवारी जी की डिमांड को। और भाई हमारे प्यारे लिसनर हैं जिनका नाम है अब्दुल मुजीन जी, और इनका कहना सहनवाज जी का गाना थोड़ा सा ही बजा दीजिए, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी, कल ज़रूर से आपका गाना मैं प्ले करना चाहूँगी। और हमारे सभी लिसनर्स ऐसे रहते हैं, तीन तीन चार चार दिन ऐसे पेंडिंग सॉन्ग रह जाता है, और फिर वो कोशिश करते हैं जल्दी कॉल करने की, तो थोड़ा और जल्दी कॉल करिएगा ताकि मैं आपके गाने को प्ले करें। फिलहाल ये मेरा फेवरेट गाना है, शान मूवी से आइए सुनते हैं।

गंगू जी जाते जाते आपका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहेगी। आपकी अपनी कन्याकांक्षा यानी कि नेहा जी आ चुकी है हमारी बहराई से, जो कि इस समय है गोंडा में ही। और फिलहाल ये गाना हम एंजॉय कर रहे हैं रितेश जी की डिमांड पे, जो कि है राधा कुंड से। गाना बड़ा ही पसंदीदा है हमारा, एंजॉय करते इस ट्रैक को। आज की लास्ट डिमांड पूनम तिवारी जी आपकी, और सुनते रहिए इसी शो को।

हम इस गाने में ऐसे खो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि वक्त हो चला है। फिलहाल लेते हैं आपसे अलविदा और मिलेंगे कल इसी शो में आपके। तब तक के लिए एंजॉय करिए इस लास्ट ट्रैक को और मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, खाते पीते रहिएगा। वैसे भी आज लंगर लगा हुआ है तो पूरी सब्जी जरूर से खा लीजिएगा, और हाजमा खराब हो ना तो पानी ज्यादा पीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
6: और जेंट्स के लिए,
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
13: गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
0: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: नाउ लिस्निंग 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो जैसे कि हर रोज गोधुली में हम अपने एक नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं आपके लिए, और वो अपने क्षेत्र के बारे में न जाने कितनी सारी ऐसी जानकारियां देते हैं जो हमारे और आपके काम की होती है। साथ ही साथ उनकी लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रगल, उनकी लाइफ का एक पूरा जो जर्नी होता है वो भी हमको पता चलता है। सो उसी कड़ी में आज हमारे बीच में भी एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, तो हम ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे और आपको बता दें कि आज हमारे बीच में डॉक्टर पद्मा मौर्या मैम मौजूद हैं, जो कि वेटनरी ऑफिसर है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली।
3: थैंक यू आरजे,
2: थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी मैंने अपने श्रोताओं से बताया कि आज पहले तो हम आपके बारे में जाने की कोशिश करेंगे कि आपके माता पिता के बारे में और आपकी पैदाइश कहाँ हुई, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। जी,
3: मैं डॉक्टर पद्मा मौर्या, वेटनरी ऑफिसर, यहाँ मोतीगंज में पोस्टेड हूँ, जो कि मनकापुर ब्लॉक में आता है, और उत्तर प्रदेश सरकार में गोंडा जनपद में मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे पदस्थापना है मेरी। और जैसा कि आपने कहा, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, तो आज की डेट में मेरा आधार कार्ड और मेरी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इलाहाबाद की है, बिकॉज आई एम मैरिड इन इलाहाबाद। सो और ऐसे मैं बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं और मैं रहने वाली अम्बेडकर नगर की हूँ।
2: ओके, और फिलहाल आप रह रही गोंडा में।
3: जी,
2: क्या बात है, ये सही था। तो ये तो आपने अच्छा बताया कि आपकी जो पैदाइश हुई वो अम्बेडकर नगर की है।
3: जी,
2: और उसके बाद आपका काफी वक्त इलाहाबाद में बीता।
3: जी,
2: अभी अपने सिब्लिंग्स के बारे में बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं।
3: सिब्लिंग्स में मेरे जो मेरे तीन ब्रदर हैं, मैं आई एम द ओनली डॉटर इन माय फैमिली, तो इसलिए मेरे बाद जो मेरे ब्रदर्स हैं, हमारी पूरी फैमिली मेडिकल फील्ड में ही है। मेरे जस्ट बाद जो मेरे ब्रदर हैं वो जो है ह्यूमन में डॉक्टर है, ही इज़ एन MBBS, और इस समय वो WHO के साथ काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ पे। और जस्ट उनके बाद जो है वो उन्होंने वेटनरी से ही मास्टर्स किया हुआ है, और वो जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारे सबसे छोटे भाई हैं, उनको कोई मेडिकल फील्ड रास नहीं आई, तो उन्होंने MBA किया और वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं इस समय।
2: दो बातें, तो ये है कि आपने कहा कि तीन भाइयों में आप इकलौती बहन है, तो प्यार तो बहुत मिला होगा।
3: जी,
2: और दूसरी बात, जहाँ तक छोटे भाई की बात कही, तो इतने डॉक्टर्स देखने के बाद उनको लगा हुआ कि कुछ नया करते हैं, सब तो वही कर रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: सो प्यार तो खूब मिला होगा, बचपना कैसा बीता आपका?
3: मेरे फादर जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो मेरा पूरा बचपन जो है नॉर्थ ईस्ट में बीता है। तो हम कभी नॉर्थ ईस्ट में रहे, कभी दिल्ली में रहे, तो अलग अलग जगहों पे काफ़ी रहने की वजह से बहुत डाइवर्सिटी मुझे देखने को मिली है कल्चर में। और अगर मैं देखा जाऊँ कि ये इसका मेरे लाइफ में बहुत असर पड़ा है, मैं अगर कहीं जाती हूँ किसी एक जगह, अब मैं जब मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, मैं कहीं पोस्ट होती हूँ, तो मैं वहाँ का इकोसिस्टम देखती हूँ कि वहाँ हरियाली है कि नहीं, हवा कैसी रहेगी, पोल्यूशन लेवल कैसा है, क्योंकि मेरा बचपन ही ऐसा बीता है कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कभी 25-30 से ऊपर जाता ही नहीं था।
2: राइट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें।
3: जी, तो बहुत गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती थी। अब तो खैर धीरे धीरे सब चीज़ें एडजस्ट हो गई है, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं वो एक जो आपका बचपन गुजरा होता है ना, जिस इन्वायरमेंट में जो आपने वादियाँ देखी होती है, जो आपने नज़ारे देखे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी आँखों में रहता है वो सारी चीज़ें।
2: क्या बात है, लोग वादियों में जाने के ख्वाब देखते हैं समर वेकेशन में स्पेशली निकल के जाते हैं, और आपका तो बचपना वहाँ बीता
3: जी।
2: तो आपका जो बचपना बीता वो नॉर्थ ईस्ट में बीता। देखिए आपने जिस तरह से जगहों के नाम बताए हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप रही, उसके बाद आप यूपी में भी कई जिलों में रही हैं
3: जी।
2: तो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कदम कदम पे भाषा और बोली सब चेंज होती है, और नॉर्थ ईस्ट से सीधे यूपी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज
3: जी,
2: है
3: जी, बिल्कुल।
2: तो कैसे आपको एडजस्ट, क्योंकि आपकी पैदाइश तो यहाँ अम्बेडकर नगर की है
3: जी, जी।
2: यानी यूपी की ही है, तो आप कितना किस एज की रही होंगी जो आप नॉर्थ ईस्ट जब आप गई थी पापा के ट्रांसफर के साथ में?
3: मेरी एक्चुअली स्कूलिंग शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश से।
2: अच्छा, स्कूलिंग की स्टार्टिंग ही अरुणाचल प्रदेश से
3: हुई है। मेरे फादर की फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे थी केंद्रीय विद्यालय में, तो मेरी वहाँ से स्कूलिंग ही शुरू हुई है। तो मुझे अभी भी याद रहता है कि हम जब वहाँ पे जा रहे होते थे ना, तो उस टाइम पे क्या आज भी मुझे लगता है कि वो जितना एल्टीट्यूड पे था तो वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चलता था
2: जी।
3: तो अगर हम मार्केट चले जाते थे तो वो एक ढलान होती थी, तो हम बड़े आराम से उतर जाते थे। फिर जब हमें चढ़ना होता था तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जो जस्ट मेरे बाद भाई थे, भाई साहब थे मेरे
2: जी,
3: वो तुरंत खड़े हो जाते थे पेरेंट्स के सामने कि मुझे गोदी ले लो और मैं अब चढ़ नहीं सकता। तो मैं अब सोचती हूँ एज अ पेरेंट कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा एक 3-4 साल के बच्चे को, वो भी पूरी सीधी चढ़ाई है, उस पर आप खुद तो अपने बॉडी वेट संभाल नहीं सकते, उसमें से एक बच्चे को आपको ले करके फिर चढ़ना रहेगा।
2: सही बात है, मतलब एक अलग ही एक अनुभव रहता है
3: जी,
2: और शायद आप ये तब फील कर पा रही जब आप खुद एक पेरेंट हैं
3: जी।
2: बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जैसा बताया कि वहाँ पे चूंकि पहाड़ी इलाका है, तो ये हम सभी को पता है कि जितना प्लेन पे रहना इजी होता है, आसान होता है, वहाँ नहीं होता है। अब चूंकि जॉब थी फादर को, तो आप लोग को जाना ही जाना था, वहाँ का कैसा आपको माहौल लगता था? मतलब एक एनवायरमेंटल तो हम समझ गए हैं बहुत अच्छा होता है, नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ की भाषा में कितना आप लोग रम पाए थे, कितना वहाँ के कल्चर को आप अडॉप्ट कर पाए थे, इसके बारे में बताइए।
3: देखिए जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, तो मैंने देखा है कि हिंदी अगर आपको आती है और इंग्लिश अगर आती है, तो हर जगह आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक अरुणाचली लैंग्वेज ऐसी है ना, वो लोग हिंदी बोलते हैं, बट जैसे हम जैसे हमारे में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहता है ना कि फीमेल्स में रही लगेगा, मेल्स में रहा लगेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो हम खाता है, सब खाता है, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो खाता ही रहेगा।
2: अच्छा, सब खाता है। तो अभी आप खाता है या खाते हैं?
3: नहीं, अब तो मैं खैर रहते रहते खाती पे आ गई हूँ। और जहाँ तक रमने की बात है, तो बहुत सरल है लोग, मतलब मैंने देखा ही नहीं कि जो चीज़ मैंने नोटिस की थी, काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे गुजारा है, तो आपको कोई बिट्रे नहीं कर रहा होता है, जिसने जो बोला वही करेगा। ये नहीं है कि आपके सामने कुछ बोला और पीठ पीछे जाके चीज़ें बदल जाएंगी, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। काफ़ी सरल लोग हैं, जैसे वहाँ की लिविंग बहुत टफ है, उस हिसाब से वहाँ के लोग बहुत सरल रहते हैं।
2: अच्छा, आपने कहा जैसे लिविंग वहाँ की बहुत टफ है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वहाँ पे ट्राइब्स के बारे में लोग काफ़ी पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए, ट्राइब्स भी काफ़ी रहते हैं
3: जी,
2: और काफी कुछ वहां पे देखने लायक है। आपने कितना एक्सप्लोर किया अरुणाचल प्रदेश को?
3: देखिए अगर देखा जाए तो इंडिया की बात करें, तो सबसे पहले सूरज वहां निकलता है, ये आप हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो सूरज का जो होता है इंडिया में, जब पहली रोशनी मॉर्निंग की आती है, वो अरुणाचल में ही आती है। तो मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैं अभी बहुत धुंधली सी मेमोरी है, मुझे अभी भी याद है कि हम जब मार्केट जाते थे तो एक बहुत बड़ा बाग था, और वो सेब का बाग था। अभी गोल्डन एप्पल अगर कहा जाए, तो हम जिसे कहते हैं ना गोल्डन एप्पल, बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। मतलब दैट टाइम मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब मैं नियरली क्लास 1 में जब एडमिट हुई थी, तो आई वॉज 4 and 4.5 years, तब ये इतना नहीं था कि एकदम 5+ होना ही होगा या तभी बच्चे जा पाएंगे। तो मैं डायरेक्ट क्लब क्लास 1 में गई थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ बिस्तर के नीचे ना वो सेब ऐसे पीछे रहते थे, जैसे यहाँ यूपी में नहीं होता आलू सीजन में ऐसे पीछे रहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो वहाँ पे सेब की सब्जी खा रहे हैं लोग, कोई उसका अचार डाल रहे हैं, कोई और ये रेड एप्पल कोई नहीं जान रहा, सब वो ग्रीन एप्पल, गोल्डन एप्पल जो बहुत महंगे मिलते हैं इस समय।
2: ओके।
3: और वो हमने मतलब इस कदर खाए हैं वहाँ पे।
2: अच्छा, तो उसी का नतीजा है जो मतलब ग्लो जो आ रहा है स्किन पे।
3: मे बी शायद। फ्रूट्स की बहुत एबंडेंस है, फ्लावर्स के भी बहुत अच्छे, मतलब आपको वो लोग मतलब चीजें मिलेंगी जो फ्लावर्स मिल जाएंगे हिल्स पे। आप यूजुअली देखते होंगे कि बहुत वैरायटीज रहती है फ्लावर्स की जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ यहाँ हाई टेम्परेचर पे वो नहीं होते। अपने यहाँ देखिए विंटर्स में ही रोज आते हैं, नहीं तो नहीं आते।
2: राइट,
3: ऑर्किड्स जो है वो भी, उसको भी बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता। तो बहुत प्लम और ये एप्पल, मतलब ऐसे फ्रूट्स जो यूजुअली अभी हम, मतलब हम यहाँ आम खा रहे होते हैं तब हमको वहाँ आम की क्रेविंग होती थी, और अभी हमें उनकी क्रेविंग होती है जो हम वहाँ खा रहे होते हैं।
2: क्या बात है। तो ये तो इंसानी फितरत है कि जो आपके पास होता है वो आप हमेशा नेक्स्ट वाला देख रहे होते हो।
3: जी जी।
2: तो आपके लिए तो फिर भी इजी था, आप लोग छोटे थे। मम्मी के लिए कितना ज्यादा टफ रहा होगा कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अडॉप्ट करना, फिर आप लोग को उसी तरह से ट्रीट करना, क्योंकि भाई अब यहाँ से अगर आप हो तो आप तो दाल चावल मांगोगे, हालांकि काफी छोटे थे उस टाइम, लेकिन मम्मी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि सारी चीजें मैनेज करना होता है। मम्मी का कितना सपोर्ट रहा?
3: मेरी अगर लाइफ को देखा जाए तो मेरी लाइफ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर का ही रहा है, किसी भी चीज में, मैं मतलब मेरी एजुकेशन में देख लिया जाए या मेरे व्यक्तित्व में। और मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज वेरी एजुकेटेड, उन्होंने BA BEd किया हुआ था, मतलब नियरली आज से 20-25-30 ईयर्स पहले। तो बट फादर की जॉब की वजह से उनको यहाँ अपनी UP में जॉब क्विट करनी पड़ी थी वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वो जो एजुकेशन था ना उनके हर कामों में झलकता था। शी वॉज सच अ क्विक लर्नर, आप उनको कोई चीज़ बस बता दो या उनके सामने से कोई चीज़ हो के जा रही हो ना तो वो अच्छा। दैट टू उन्होंने होम साइंस में किया था उनका जो ग्रेजुएशन था, तो होम साइंस की मतलब मैं अभी भी कहूँगी क्योंकि मास्टरी है। वो किसी भी चीज़ को तब तक नहीं छोड़ती है अगर वो कुछ सिलाई कर रही हूँ जब तक वो परफेक्शन पे ना आ जाए।
2: क्या बात है।
3: और मैं अभी भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनती हूँ।
2: वाओ,
3: उनका मतलब उस चीज़ों में इतना अच्छा वो है। और अगर उन्होंने कोई चीज़ अगर वर्क करके एम्ब्रॉयडरी करके अगर रख दिया है ना तो आप बिल्कुल नहीं पता पाएंगे कि वो मार्केट का है या वो हैंड है, वो भी इतने परफेक्शन में, मतलब किसी व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली इतने परफेक्शन के साथ उसको किया है।
2: क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जो माँ बाप की चीज़ें होती हैं वो बच्चों में ज़रूर आती है। क्या हम ये मान के चले कि आपका, आप में भी जो कुछ अंश है वो मम्मी का ही है?
3: हाँ, मैं चीज़ों के साथ स्ट्रगल मम्मी की तरह ही करती हूँ कि जब तक मुझे आ ना जाए तब तक मैं लगती हूँ। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरी एजुकेशन की वजह से ये घरेलू कामों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं जा पाया है, मतलब इतना समय नहीं मिल पाया है करने का। लेकिन हाँ, ये है कि जो जूझने की शक्ति है वो मुझे उन्हीं से मिली हुई है कि मतलब किसी काम को, ये उनके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना, आज तक नहीं सुना है। नाउ दिस ईयर शी विल बी 60 कि मतलब ये, मतलब उनका ये होता है ये कैसे किया जाएगा, वो कभी नहीं कहती अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, ये वाला तो सेंटेंस मैंने आज तक सुना ही नहीं है उनके मुंह से।
2: वाह, क्या बात है। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि जिस तरह से आपने अपनी मम्मी को देखा है काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, और कहीं अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, आप घर से ही ले रहे होते हो उस इंसान से जिसके साथ आप शायद बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हो, जो सबसे ज्यादा करीब भी आपके होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका चूंकि विजन कुछ बचपन से रहा होगा, आपका कुछ एम्बिशन रहा होगा, क्या वो एम्बिशन अभी आप जो कर रहे हैं वही रहा था या कुछ और था?
3: देखिए, जब जो हम ये 90s के बच्चे हैं तो हमारे टाइम पे क्या होता था, ये बिल्कुल क्लियर होता था। आज की तरह हमारे सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था, आप भी जान रहे होंगे बहुत अच्छे से।
2: राइट।
3: तो जो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे वो IIT जाते थे क्लास 12 के बाद या फिर MBBS जाते थे, और जिनकी रैंक थोड़ी पीछे आ गई वो बाकी चीजों में चले गए। और उसके बाद जिनमें स्ट्रगल करने की बड़ी ज़्यादा कैपेसिटी रही उन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर वो प्रिपरेशन के लिए पहुँचे। तो IAS के प्रिपरेशन से शुरू करते करते करते करते वो लास्ट तक की प्रिपरेशन करते थे, जिसमें क्लिक हो गया उसमें चले गए। ये तो जान ही रहे हैं आप।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो उसी के क्रम में आई गॉट वेटनरी। तो मैंने, चूंकि मैं मतलब आई वॉज द इल्डेस्ट, तो इल्डेस्ट की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि जैसे आप होते हो वैसे ही आपके जो सिबलिंग्स आपको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो वेटनरी क्लियर हुआ तो फिर मैंने और नहीं देखा, आई जस्ट वेंट टू कॉलेज। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब इधर उधर नहीं देखने के बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे चीज़ें ही बहुत समझ में आई, मतलब मुझे अच्छा लगा। हमारे कॉलेज का जो माहौल था काफ़ी अच्छा था, और हर एक चीज़ का जो सिस्टमेटिक अंदाज था पढ़ाने का वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं इसको क्विट करके कोई और वो करूँगी। हालांकि मेरे फादर ने कहा कि बिकॉज मैं हम चारों भाई बहन में सबसे अच्छी थी पढ़ने में, तो उनको लगता था कि नहीं तुम एक चांस और देखो, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत अच्छा लगने लगा था।
2: यानी कॉलेज के एटमॉस्फेयर से आपको कह सकते हैं कि प्यार हो गया था
3: जी,
2: वहाँ का माहौल आपको रास आ गया था
3: जी।
2: क्या बात है। तो वेटनरी ऑफिसर बनके अभी तो आप सर्व कर ही रही हैं
3: जी।
2: वो भी ऐसे लोगों को कर रही हैं जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं। हमारे श्रोता भी बखूबी समझ रहे होंगे हम बात कर रहे हैं जानवरों की, और आप जानवरों को ही ट्रीट करते हैं, उनको क्योर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पापा ने कभी क्या ऐसा कुछ कहा कि आपको ये करना है, ये बनना बेस्ट रहेगा आपके लिए? क्योंकि 90s के किड के साथ ये भी प्रॉब्लम होती थी कि माँ बाप का बड़ा दखल होता था। आपके मामले में कितना रहा है?
3: मेरे मामले में बहुत फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये था कि एक मेडिकल फील्ड में आपको जाना है। बट जब मैंने वेटनरी चूज किया तो उसके बाद फिर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। जब उन्होंने देखा कि नहीं मतलब हॉस्टल भी ठीक है इसके, कॉलेज भी ठीक है, टीचर्स भी अच्छे हैं, उनको इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि मतलब कैसे रह पाएगी। जैसे एक होता नहीं पेरेंट्स को एक बार हॉस्टल भेजने के बाद काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है, तो उन्होंने जब सारी चीज़ों की और सारा हमारे कॉलेज का जो सिक्योरिटी सिस्टम और सारी चीज़ों को जब देखा तो फिर वो थोड़े निश्चिंत हो गए कि नहीं ये दिस इज़ ओके फॉर हर।
2: ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपके पेरेंट्स ने आपको बखूबी समझा, आपका साथ दिया, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आज दिख भी रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और अपनी जॉब अपने काम में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, सो जाइएगा कहीं मत। हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा डॉक्टर पद्मा मौर्य मैम से, जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं। मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधुली और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर पद्मा मौर्य जो की वेटनरी ऑफिसर है। आपने बताया अपने बचपन के बारे में, माता पिता के बारे में, साथ ही साथ चूंकि आपका बचपना इतनी ज्यादा जगह भी था, आपने न जाने कितनी जगह को एक्सप्लोर किया, वो बताया बखूबी आपने बताया, उसको सुन के भी हम विजुलाइज कर पा रहे थे कि शायद हाँ आप भी अपने बचपन में खो गए हैं और हमको भी कहीं ना कहीं अपने अपने बचपनों की याद आने लगी गई थी। बहुत अच्छा लगा। अभी आते हैं चूंकि आपके काम के ऊपर, आप वेटनरी ऑफिसर हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि वेटनरी ऑफिसर बनने के लिए आपने किस एग्जाम को क्रैक किया था और आपकी हायर एडुकेशन क्या है?
1: जब हमने वेटनरी ज्वाइन किया था तो उसमें ICR जो है काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते हैं, ये उस टाइम पे वेटनरी का एंट्रेंस वो करते ऑल इंडिया लेवल पे वेटनरी में जाने का एंट्रेंस होता था। तो उसमें क्या होता था, सबसे हाईएस्ट मेरिट वेटनरी पाते थे, फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर होते थे, फिर फिशरीज, होम साइंस, ये सारी ब्रांचेस होती थी। आज की डेट में मैंने जो अभी जाना है, मैं इतना बहुत 100% क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जान रही हूँ कि अभी ये नीट के थ्रू होता है। नीट के थ्रू में जो मेरिट्स के हिसाब से आपको MBBS, डेंटिस्ट्री एंड वेटनरी, ये सारी चीज़ें अब मिलती हैं। अच्छा, इनका है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे वेटनरी काउंसिल ऑफ अलग से है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो भी वेटनेरियन होता है, जब हम वेटनरी कॉलेज में मतलब हमको डिग्री मिलती है BBSC एंड AH, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें वेटनरी साइंस जो है वो पशु चिकित्सा हो गया और एनिमल हस्बेंड्री है जो वो पशुपालन हो गया। तो मतलब जो भी एक व्यक्ति वेटनरी के लिए क्वालिफाइड है, BBSC एंड AH है, तो वो किसी को भी कैसे एनिमल रियरिंग की जाती है, मतलब पाला जाता है, उसके बारे में भी किसी को भी वो उनको बता सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, और कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं ट्रीटमेंट से भी वो बहुत बखूबी उसमें सारी चीज़ें कवर हुई हैं। जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो मैं MBSC हूँ, मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंस। तो जो हम BBSC में सिलेबस पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स, उसमें हम अलग अलग स्ट्रीम में मास्टर्स भी करते हैं। तो मेरा मेन स्पेशलाइजेशन मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट, मतलब एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं।
0: प्रोडक्ट्स से हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगी? क्या
1: प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपका एनिमल है, एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, एडिबल जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपका या जिसमें आपका मिल्क है, सबसे ज़्यादा मिल्क जिसे कहा जाएगा, फिर आपके मीट आते हैं, अलग अलग फूड एनिमल्स के अलग अलग मीट हैं, फिर आपके पोल्ट्री में के भी देखिए उसके भी चीज़ें हैं। फिर क्या होता है ना कि इंडिया में तो चलिए हमको फ्रेश हर चीज़ फ्रेश खाने की आदत है, हमें मीट भी चाहिए तो तुरंत स्लॉटर हो करके नहीं, वहीं पर स्लॉटर करवाएंगे, वहीं लेके आएंगे, नॉर्मली ये टेंडेंसी रहती है। लेकिन फॉरेंस में क्या होता है ना, प्रोडक्ट की बात होती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना करके पैकेज्ड मीट यहाँ भी मिलते हैं, सिटीज़ में आप जाइए, हायर सिटीज़ में, तो आपको वो पैकेजिंग की भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है, उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसके पैकेजिंग होती है, फिर प्रॉपर उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है, फिर उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, मतलब जिससे क्या होता है कि आपको लंबे समय तक स्कार्सिटी पीरियड में भी आपको मिल सके। जैसे फूड प्रिजर्वेशन मेनली आपका कुरकुरे मिल रहा है, चिप्स मिल रहा है, मतलब ज़्यादातर हम वेजिटेरियन चीज़ों पर फोकस करते हैं, लेकिन अब्रॉड में या कुछ इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, मतलब नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसी जगहों को फोकस करने के लिए मीट के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उनको हर समय अवेलेबल हो सके।
0: ओके, तो अगर मान लीजिए कोई श्रोतागढ़ है जो इस वक्त आपको सुन रहा है, वो भी वेटनरी में ही जाना चाहता है, यानी वेटनरी ऑफिसर, उसके लिए सुनना होगा।
1: अगर कोई श्रोतागढ़ जाना चाहता है तो क्लास 12 जो है उनको बायो से करना होगा, और बायो से करने के बाद फिर वो नीट का एंट्रेंस दें, नीट के एंट्रेंस में उनके मेरिट के बाद। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेरे से स्किप हो गया
0: जी।
1: अलग अलग जो वेटनरी कॉलेजेस हैं, जैसे अपने UP में जो है, यहाँ पे आपका फैज़ाबाद में वेटनरी कॉलेज है, मथुरा में वेटनरी कॉलेज है, और यहाँ उत्तरांचल में पंतनगर में है, और अभी तो BHU में भी कुछ सीटें, मतलब BHU में भी इसकी बात हो चुकी है, मुझे एकदम क्लियर नहीं है कॉलेज खुल गया, लेकिन इसका प्रपोजल गया था और नियरली ये खुलने के लिए था, तो ये पता कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इनमें कॉलेज भी इंट्रेंस लेती है। आप नीट के थ्रू तो जाते ही जाते हैं, लेकिन उनका प्री वेटनरी टेस्ट होता है, मतलब कॉलेज अपना इंट्रेंस खुद भी लेते हैं। तो आप या तो नीट के थ्रू जाइए या तो आप डायरेक्टली उस इंट्रेंस को क्रैक करिए। बायो ग्रुप से आपको करना है, और ये जैसे आपके नीट के इंट्रेंस के जो सिलेबस रहता है, सेम वेटनरी का भी सिलेबस वही है। क्लास मतलब आपके नीट का जो सिलेबस होगा या वेटनरी में जाने का जो सिलेबस है बीबीएससी नीएच करने के लिए।
0: ओके, तो ये तो आपने बताया तरीके जाने के
1: जी।
0: अब जरा आपके काम के ऊपर आते हैं
1: जी,
0: क्योंकि आप वेटनरी ऑफिसर हैं, तो आपको किस तरह के काम करने पड़ते हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या होती है, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, एज अ वेटनेरियन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, मतलब आपकी इकोसिस्टम उस जगह का कैसा है, किस तरह का वहाँ टेम्परेचर है और वहाँ किस तरह के एनिमल रियर किए जाते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ अमूमन जो है गौवंश है या बेफलोज है, और सिटी में अगर आप आ जाएं तो आपको डॉग मिलेंगे और कहीं कहीं कैट भी मिल जाएंगे, पर ज्यादातर यही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी ही आपको मिलती है।
0: करेक्ट।
1: और एज सच अगर वेटनेरियंस कहाँ कहाँ पोस्ट होते हैं, तो जितने भी जूज हैं सब में है वेटनेरियंस, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी वेटनेरियंस की पोस्ट होती है। जो कि मैंने आपको बताया मेरा स्पेशलाइजेशन मीट साइंस में है, मीट टेक्नोलॉजी में, तो स्लॉटर हाउसेज में भी वेटनेरियंस की ही पोस्टिंग होती है।
0: स्लॉटर हाउस में क्या काम होता है?
1: स्लॉटर हाउस में उनका बहुत बड़ा काम होता है। पहले तो वो एनिमल को स्लॉटर होने से पहले इंस्पेक्ट करते हैं कि ये फिट फॉर कंजम्पशन है कि नहीं। हम किसी बीमार एनिमल को मीट प्रोसेस नहीं कर सकते कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिजीजेस लेके आएगा जो हम कहीं ना कहीं उनसे हमें आ जाएगी। फिर पोस्टमार्टम मतलब उनका पोस्ट स्लॉटर भी उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि ऊपर से एनिमल फिट है, हमने उनको स्लॉटर के लिए दे दिया, लेकिन आफ्टर स्लॉटर हमें उनके मीट पीसेस में, मीट कट्स में कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो कि फिट नहीं है, और उसके बाद फिर उनके आगे प्रोसेसिंग में भी हर एक स्टेप में देखा जाता है कि मतलब वो चीजें चूंकि हमारे कंजम्पशन के लिए होता है तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत कहने की बात है, जैसे आपकी हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो हमारे सिस्टम को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगी, फिर कुछ दिन बाद वो सही हो जाएगा। लेकिन ये एनिमल प्रोटीन का जो मसला होता है, ये कहीं ना कहीं इतने लॉन्ग रन में हमें डिजीज दे के चला जाएगा कि हम उसको मतलब ठीक करते करते हमें बहुत साल लग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि उस समय तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो कोई ना कोई हमें डिजीज कॉज करता रहा।
0: तो वहां पे इंस्पेक्ट करने का जो काम होता है वो वेटनरी ऑफिसर का होता है। कई सारी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम

0: रिलेटेड है, वेदर वो लाइव एनिमल है, डेड एनिमल है, मीट पीसेस है, तो वहां पे एक वेटनेरियन चाहिए और उसको देखने के लिए। और अभी तो जो आप जैसे अपने कंपनीज का नाम लिया, तो मैं कहूँगी कि वेटनरी मेडिसिन की भी जितनी फर्म्स होती है उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में, क्योंकि एनिमल फार्माकोलॉजी जो है, मतलब वेटनरी फार्माकोलॉजी जो है, वो वेटनेरियंस ही पढ़ के जाते हैं। तो क्या मेडिसिन होनी चाहिए, कैसे डोज होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कैसे प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वो भी वेटनेरियंस के थ्रू ही गवर्न होती है।
1: ऑलराइट, ठीक है, ये तो बात रही कि मैंने पूछा कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, तो वहाँ पे अपॉइंट किया ही जाता है
0: जी।
1: अभी चूंकि देखिए इंसानों के साथ क्या होता है कि मौसम का बड़ा असर होता है, और आप जानवरों के बारे में काफी जान रहे हैं चूंकि आप खुद एक तराई एरिया में हैं, तो यहाँ जैसा कि आपने बताया गौवंश का ज्यादातर आपके पास केसेस आते हैं या फिर बफेलोस के आते हैं यानी भैंस के आते हैं, और लोग किसान अपने ये जानवरों को लेके आते हैं, तो गर्मी में तो अभी जैसे काफी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि भाई पानी की कमी ना हो
0: जी,
1: है ना, ग्लूकोस लेते रहिए या थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहिए, तो इस तरह से जानवरों पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर पड़ता है तो फिर कैसे इसको आप एडवाइस करते हैं?
0: आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आज का मौसम देखा जाए तो सबा मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स ये बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि समर में क्या होता है कि हम खुद इतना ज़्यादा अपने आप को मैनेज करने में व्यस्त होते हैं कि एनिमल्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनसे उनके लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो मेनली जो एनिमल्स रखे जाते हैं, जैसे आपके रूरल बेल्ट में जो है गौवंश है, बेफलोज है, जो है इनको हम मिल्क के लिए रखते हैं
1: जी,
0: तो जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तैसे मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे चला जाएगा। आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन या आपका, अगर आप उसी से आपका जीवन चल रहा है, आप डेयरी चला रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप इकोनॉमिक लॉस में चले जाएंगे। तो सबसे जो मैनेजमेंट के मेन एथिक्स यही है कि आप पानी पिलाइए, और एनिमल्स के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉस वेंटिलेशन। जैसे अगर आप, अगर मैं अलग अलग स्पीसीज का आपको समझाऊँ, तो जैसे गौवंश है, गाय जो है, उनके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जो स्पेशली जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, लोकल ब्रीड्स में ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते क्योंकि वो यहीं पे जन्मे हैं, उनके मतलब बहुत जनरेशन से वो यहीं की ब्रीड है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मैनेज कर लेते हैं जैसे तैसे भी, क्योंकि उनको इस टेम्परेचर की आदत है। लेकिन चूंकि अभी क्या हुआ कि हमने अपने मिल्क को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे जो बहुत ठंडी जगहों से कुछ एनिमल्स को मंगाए और उनको क्रॉस ब्रेड किया, तो जो क्रॉस ब्रेड वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि आपको बता दूँ जर्सी है, फिर होल्स्टीन फ्रिसन है, जैसे HF कहते हैं लोग यूजुअली, तो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है ना, वो हीट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम जो एडवाइस करते हैं कि आप पहले बात तो उनको शेड दीजिए, शेड का मतलब वो छाया रहे, या तो वो नेचुरल छाया रहे, नेचुरल इन सेंस पेड़ वेड़ के नीचे बांधिए, वहाँ पे भी क्या होता है ना, छाया रहती है, मिट्टी रहती है, तो वो उनको हवा लगती रह रही है तो वो थोड़ा कम्फर्टेबल है, और पानी रेगुलर देते रहिए। और ये कहा जाता है ना कि मॉर्निंग में, मतलब मैं जो लोगों को एडवाइस करती हूँ कि जब थोड़ा ठंडे का टाइम रहता है, जैसे अर्ली आवर्स में मॉर्निंग में कितनी भी गर्मी पड़े, वो थोड़ा टाइम आपका 8-8 बजे तक थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो आप उसी टाइम पे उनको खिला दीजिए उसके पहले, क्योंकि जब बहुत गर्मी रहती है तो वो खाना भी नहीं चाहते, उनका फीड कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है,
1: जैसे हमारे आपके साथ होता है
0: जी जी, जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो खाया नहीं जाता,
1: नहीं जाता, करेक्ट।
0: अच्छा, फार्म्स में क्या करते हैं, अब यहाँ पे मतलब लोकल, अगर किसी के पास एक एनिमल है तो वो तो उसको धो दे, सुबह भी उसको नहलाए, शाम को भी नहलाए, और अगर ज़्यादा है तो अगर आप फार्म चलाते हैं तो आप एक स्प्रिंकलर ले लीजिए जो यूजुअली मिलते हैं मार्केट्स में, तो उससे जैसे यूजुअली हम फार्म्स में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ये बताया जाता था कि ये स्प्रिंकलर लगे रहते थे, और स्प्रिंकलर से उनको पूरा स्प्रिंकल कर दिया जाता था, पानी स्प्लैश जैसे कहते हैं, छींटे मारना
1: जी,
0: तो कुछ कुछ टाइम पे छींटे मारे जाते थे, और फिर उनके जो विंडोज होती थी उन पे भी जो चटाइयाँ पड़ी रहती थी उस पे भी छींटे मारे जाते थे कि कहीं से भी हवा चले तो एक ठंडा ठंडा सा एक एनवायरनमेंट जो है उनका वो बना रहे। फिर अगर हम बेफलोज में आते हैं तो वो एक बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो गाय से 1/6 टाइम्स कम होते हैं, मतलब गाय में जितने भी स्वेट ग्लैंड्स होंगे 1/6 गुना जो होता है उससे कम जो है, उसके 1/6 ही जो है बेफलोज में होते हैं, तो उनमें जो हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोइंग, मतलब जो हिंदी में कहा जाएगा कि आप यूजुअली देखते होंगे जब कहीं ट्रेवल के लिए निकलते होंगे, बहुत सारे लोग जो है भैंस को हाँक करके कहीं ले जा रहे हैं पानी में रखने के लिए, तो वो उनका हीट डिसिपेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर ऐसी जगह है जहाँ तालाब है या नदी है तो आप उनको पानी में लेके जाइए दोपहर में।

0: आराम से वहाँ पे वो बैठे रहे, लेकिन चूंकि अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पॉसिबल हो इस तरह से ले जाना, तो ऐसी जगह पे ये किया जाता है कि आप उनको वही वाटर स्प्रिंकल करिए और जितना भी हो सके मतलब सुबह शाम धोइए, मतलब पानी की कहीं ना कहीं उनकी मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करिए, चाहे आर्टिफिशियली करिए, जैसे अब आर्टिफिशियल सेट्स में आप घरों में रखते हैं जहाँ पे छत लगी रहती है, तो छत पे भी हम ये कहते हैं कि अगर वो टीन शेड है, यूजुअली क्या करते हैं एनिमल हाउस के लिए लोग थोड़ा सा एक सिंपल व्यवस्था चूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस टाइम पे कहते हैं कि आप उनके ऊपर एक मोटी घास की जो लेयर है लगा दीजिए, जब से हम 4 से 5 इंच जो है उस पर पुआल डाल दीजिए या जो भी स्ट्रॉ मिले, ताकि ऊपर से वो गर्म ना हो। और पानी उनको रेगुलर पिलाते रहिए, और इस समय हम उनको ये कोशिश करते हैं कि आप सॉल्ट भी थोड़ा सा उनको दीजिए। यूजुअली सॉल्ट तो 12 महीने देना चाहिए, लेकिन इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सॉल्ट का, कि वो सॉल्ट ले, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 5 to 10 grams अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं तो ठीक है। आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 15 to 20 grams भी जा सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि एक बंदा आए और वो एक मुट्ठी से भर के नमक लाए कि अरे ये तो बहुत बड़ा जानवर है, फिर दूसरा आया तो उसकी मुट्ठी और बड़ी निकली तो उसने और बड़ी मुट्ठी से डाल दिया। तो ये चीज़ें जो होती है ये थोड़ा सा देखने वाली बात होती है कि थोड़ा एक उसमें कोई एक नापने वाली चीज़ रहे, जिससे बिल्कुल फिक्स रहे कि कोई भी व्यक्ति अगर पर्सन जो है अटेंडेंस बदले तो ये ना हो कि उनके डोज में भी वेरिएशन आ जाए।
1: राइट, मतलब ये कि जो भी पालक है
0: जी
1: उसके द्वारा दिया जा रहा है
0: जी,
1: तो उनकी खुराक में कोई भी ऐसे ज्यादा ऊपर नीचे बदलाव ना आए,
0: ऊपर नीचे बदलाव जी। और अगर हम पेट एनिमल्स को देखें तो पेट एनिमल्स चूंकि सिटी बेस में ज़्यादातर लोगों के पास रहते हैं, डॉग्स हैं, फिर कैट भी कुछ कुछ लोग रहते हैं, तो उनको तो आप अपने घरों में रह रहे हैं तो अगर आप फ़ैन के नीचे बैठ रहे हैं तो फ़ैन पे रखिए, कूलर पे है तो कूलर में, और एसी भी जो है एडजस्टेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मत करिएगा कि मतलब आप बैठे हैं 24 में और फिर एक बार वो डॉग बाहर जा रहा है आ रहा है, क्योंकि यूजुअली हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमने एक टेम्परेचर सेट किया है कमरे का, हम उसमें बैठे हैं, बाहर 45 degrees है, अंदर 24 है या उससे भी कम है, फिर हम अचानक से जाते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं झेल पाते, भाई एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन पर एज अ ह्यूमन तो हम भले मैनेज कर लेते हैं पर एज अ एनिमल वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टेम्परेचर एक जैसा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है उनको एसी में ही रखे, लेकिन जहाँ भी रखे एक जैसा रहे, मतलब मैनेज जो मैनेजेबल रहे उनके लिए।
1: ओके, यानी आपने अभी तक जो कुछ भी बातें बताई कहीं ना कहीं हम इंसानों से मिलती जुलती ही है
0: जी।
1: यानी एक तो हमको भी पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पीने की हो चाहे वो नहाने की हो, यानी अंदर भी हमको पानी चाहिए होता है और बाहर से भी हमको ठंड रखने की जरूरत होती है क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी तरह समर के लिए यानी गर्मियों के लिए एक स्पेशली पशुओं का स्पेशली ध्यान देना बहुत आवश्यक है, आपकी बात से मुझे ये समझ में आया। साथ ही साथ हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अभी फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, और हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा डॉक्टर पद्मा मौर्य मैम से जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ।

0: बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधली। नाउ यू आर लिसनिंग ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में और बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर पद्मा मौर्य मैम से, जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं। अभी आपने, चूंकि मैंने क्वेश्चन किया था कि गर्मियों को लेकर स्पेशली क्या ध्यान दिया जाए, आपने बखूबी उन चीज़ों को बताया। मुझे डॉक्टर साहब ऐसा भी लगता है कि इकोसिस्टम भी एक होता है, तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं को आप ज़रा ये बताइए कि पशुपालना और इकोसिस्टम का क्या रिलेशन है।
1: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये वाकई में अगर देखा जाए तो आज की डेट की डिमांड है। अभी आपने सुना होगा कि सद्गुरु जी हैं जो उन्होंने सेफ सॉयल अभियान के तहत बहुत लंबी उन्होंने बाइक चलाई है
0: जी।
1: तो अगर हम देखें, पहले हम बचपन में पढ़ते थे फूड चेन में क्या पढ़ते थे कि ग्रास है, ग्रास को हर्बीवोरस खाते हैं, उनको कार्निवोरस खाते हैं, फिर उनके ऊपर ओमनीवोरस आ जाता है। एक सिस्टम, एक फूड चेन सबने पढ़ी है, क्लास टू से शुरू होती है और हायर क्लास में चली जाती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप देखिए एनिमल्स रियरिंग, और आजकल कहीं ना कहीं लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, एनिमल रियरिंग कहीं ना कहीं दूर चला जा रहा है। हम क्या करते हैं कि इतना अवॉइड करने लगे हैं कि हमने अनाज उगाया, ग्रेन्स हमने खा ली, और उसके बाद जो बची हुई चीज़ है उसको हमने कई बार जो है पराली जला दी या फिर ऐसे कर दिया, और इसके हम पूरा सिस्टम ख़राब करते जा रहे हैं। ह्यूमंस कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिस्ट्रक्टिव मोड पे इस कदर पहुंच गए हैं कि वो डिस्ट्रक्शन का लेवल ही बहुत बढ़ गया है। और अगर इसी फूड चेन को हम सुधारने की, और इससे क्या होता है कि हमारा जो डिस्ट्रक्शन का लेबल देखिए, अगर हमने उनका फीड ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर हम सॉयल पे आए, सॉयल को भी हमने जला दिया, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी हमने कहीं ना कहीं, हीट जो रहती है जलने से ज़मीन के नीचे जाती है, तो उसको भी हमने कहीं ना कहीं ख़त्म किया। लेकिन अगर हम इसको दूसरे वे में देखें, अगर कि सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम सब ने सॉयल फॉर्मेशन बचपन से पढ़ना शुरू किया है, क्लास सिक्स से शुरू हो जाता है सॉयल फॉर्मेशन। तो सॉयल फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल ह्यूमस का भी रहता है। ह्यूमस में प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट आते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम को सही तरीके से चलाएं, तो अगर आप एक सिंपली आज की डेट में देख लीजिए, एक गेहूं का पौधा है, एक गेहूं के पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 30 35 जो मैक्सिमम होते हैं ग्रेन्स निकलते हैं। उसके अलावा रूट को अगर छोड़ दिया जाए तो वो पूरा पौधा जो है एनिमल की प्रॉपर्टी है। वो कभी हमसे फूड के लिए फाइट नहीं करता है। हम जो खाते हैं, हमारे अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो खाते हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस अगर करें, तो हम ये देखेंगे कि हम फूड लें और उसके बाद जो एनिमल का शेयर है हमने एनिमल्स को दे दिया, फिर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो है या ह्यूमन एनिमल वेस्ट जो भी निकला, जो चीज़ हमने खाली उसके अलावा जो चीज़ें, वो सारी की सारी सॉयल में गई। तो जब सॉयल में गई, जैसे अब आप देखेंगे, अब क्या आपको ये लगेगा कि एनिमल से कहाँ जाता है, आप पोल्ट्री देखेंगे, पोल्ट्री बहुत सारे लोग जो यहाँ पे होंगे जो पोल्ट्री प्रोडक्शन में लगे होंगे, उनका बहुत बड़ा लिटर बेड बनता है। धीरे धीरे वो वहाँ पे उनके वेस्ट इकट्ठा होते जाते जाते जाते जाते, और वो बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, और जो इसकी वैल्यू जानते हैं वो बहुत एक्सपेंसिवली उसको, बहुत शिद्दत से उसको खरीदते भी हैं अपनी खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये है कि एनिमल वेस्ट जो है, उनका जो डंग है, उनकी जो यूरिन है, और ये जो आपके प्लांट के वेस्ट है, ये सारे के सारे सॉयल को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम इतने पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का एक चेन बन गया है। पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में रहते हैं, प्लांट्स से थोड़ा सा रेजिड्यू इफेक्ट हमारे में आता है, थोड़ा एनिमल्स में आता है, फिर वो जा करके हम किसी न किसी हॉस्पिटल में जा करके अपनी अंतिम सांसें लेते हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा थोड़ा पेस्टिसाइड्स जो इकट्ठा हुआ है। इसको सही करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ह्यूमन और एनिमल और इकोसिस्टम तीनों का रिलेशन बराबर रहे। इसी बात में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रही थी कि अमेज़न, आप जान रहे होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल
0: जी।
1: तो अमेज़न के जंगल में एक फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में ही उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहा कि जितने भी फूड वेंडर्स हैं जो जूसेस निकालते हैं, वो अपना सारा का सारा वेस्ट जो है अमेज़न के जंगलों में डंप करेंगे। उन्होंने गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, और वहाँ पे ऐसा ही हुआ, और वहाँ वो जंगल उस पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल ख़त्म होने की वर्ष पे था, और 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो जंगल पहले 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स पहले था उससे भी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे वो ग्रो हो गया।
0: क्या बात है।
1: तो ये सोच लीजिए कि हर चीज़ एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है ना, कि इस कनेक्शन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आज वाटर स्कार्सिटी है। अभी बहुत रिसेंटली न्यूज में आया था कि केप टाउन में वाटर स्कार्सिटी का ये आलम है कि वहां पे पुलिस और आर्मी लगी हुई है कि लोगों को 25 लीटर से ज्यादा पर पर्सन वाटर ना मिले, नहाने पे वहां बैंड लग गया है। धीरे धीरे हम पॉपुलेशन में सब जगह इतना डोमिनेट करते जा रहे हैं कि हमें सब चीज़ें देखना है। जितने ज़्यादा हम बढ़ेंगे, हमें वाटर चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें लैंड चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों को सही तरीके से बचा के नहीं रखेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मतलब दोनों ही चीज़ों का बहुत अच्छा रिलेशन है।
0: क्या बात है, इकोसिस्टम पे आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है। और ये बात एकदम सही है कि हर चीज़ की एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई है, और उस चेन को अगर कहीं भी ब्रेक होती है तो उसका असर हम सब पे पड़ता है
1: जी।
0: तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपने बताया एक एग्जांपल भी दिया कि किस तरह से वहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, जो भी बायो वेस्ट था उसको डाला गया, उसके बाद वहाँ पे जंगल जो ग्रो किया पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ। शायद यही चीज़ें खाद के साथ भी है
1: जी।
0: जानवरों का जो आपने बताया कि खाद होता है, उस तरह से अगर इसी इकोसिस्टम के साथ हम बढ़ेंगे तो शायद वो प्योरिटी जो हमें कहीं ना कहीं खो गई थी वो हमको वापस मिलेगी। कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम हमारा फिर से मजबूत होगा
1: जी।
0: और कहीं ना कहीं बर्बाद करने में हमारा इंसानों का ही सबसे बड़ा हाथ है
1: जी।
0: इसमें कोई गुरेज की बात नहीं कहने में। ये तो रही बात इकोसिस्टम की, और हमारे श्रोताओं को शायद ये जो बात अभी हुई है ये सबसे ज्यादा अहम बात है, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे हम खुद हों, चाहे जानवर हों, और चाहे ये प्रकृति हो, ये तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि अगर किसी का भी लॉस होगा तो तीनों के तीनों घाटे में जाएंगे। ये तो हुई बात। अब चूंकि बात आती है कि हमारे इंसानों के लिए बहुत सारी बीमारी होती है, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है सरकार, सरकार की नज़र में जानवर बहुत अहम है। जानवर के लिए कोई एक योजना का नाम बताइए, उसका काम क्या है, उसमें होता क्या है।
1: इस समय चूंकि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी में कार्यरत हूँ, तो इस समय पर्टिकुलरली जो हमारी बहुत ही ज़्यादा इफ़िशेंट, जिसे कहते हैं, और बहुत ज़्यादा जिसपे फोकस किया जा रहा है, जो हमारी योजना चल रही है, वो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये जो है एनिमल्स के लिए है। तो कोई भी व्यक्ति जो पशुपालन करना चाह रहा है, जिस अगर वो जैसे गाय भैंस के लिए, सबके लिए अलग अलग है, जैसे कि आपका गौवंश है, भैंस है, उनके लिए अगर आपके पास टू एनिमल्स हैं तो उनके भरण पोषण के लिए 1 लाख प्लस समथिंग जो आपको अमाउंट रहेगा। फिर अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसकी एक अलग धनराशि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आवेदन जो है आपको हमारे डिपार्टमेंट से, जो है आपके नियर बाई जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे संपर्क करिए, आपको फॉर्म उसके मिल जाएंगे और क्या क्या प्रक्रिया है वो भी आपको बता देंगे। फिर बैंक से संपर्क करके आपको इसे करवाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस योजना की ये है कि ये आपके मिल्क एनिमल्स के लिए भी है, फिर बकरी के लिए भी है, फिर ये आपके पोल्ट्री सेक्शन के लिए भी है, और ये फिशरीज़ के लिए भी है। फिशरीज डिपार्टमेंट भी इसके लिए काफी लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट काफी कम है, 7% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन वो भी ऐसा है कि अगर आप बहुत ही रेगुलर उसके प्रीमियम पेयर हैं, अगर आपको ये मिल गया है योजना, आपने इसका लाभ उठा लिया है, तो फिर लास्ट में 3% उसमें भी आपको रिबेट मिलेगी। मतलब आपको कुल मिलाकर के 4% ही आपको उसके जो इंटरेस्ट रेट के साथ उसको आपको रिपे करना पड़ेगा। तो इस समय डिपार्टमेंट काफ़ी जोर शोर से इस चीज़ पर लगा हुआ है, और ये सिर्फ यूपी की स्कीम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि लगभग हर स्टेट में इस समय चल रही है। और इसी तरह से पशुपालन के थ्रू लोगों की रोजगार और उनकी आय बढ़ाने का जो तरीका है वो हमारी गवर्नमेंट ने इस समय निकाला हुआ है। तो ये एक बहुत इफ़िशियंट है, ऐसी तो योजनाएं बहुत है, पर सबसे इफ़िशियंट यही मैं कहूँगी कि इसमें आप थोड़ा सा प्रयास करें।
0: ओके, तो आपने केसीसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो योजना है ये जानवरों के लिए है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और सरकार का इस पर गौर भी कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो यूँ तो अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अक्सर अगर करियर बनाने की बात आती है तो इंसान सोचता है बिजनेस कर लिया जाए, या फिर अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS प्रायोरिटी में होता है, या फिर कहता है कि डेंटिस्ट बन जाएंगे, या फिर आपने जैसे बताया कि आपने वेटनरी चूज़ किया। तो वेटनरी की अगर हम बात करें तो वेटनरी ऑफिसर आप हैं
1: जी,
0: इस सेक्शन में या इस डिपार्टमेंट में कितना स्कोप है?
1: देखिए वेटनरी जो है एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, जैसे हमने कहा ना बीबीएससी एंड एएच, मतलब आप वेटनरी साइंस भी जानते हो और एनिमल हस्बेंड्री मतलब उसका मैनेजमेंट भी देखते हो, और नियरली जे एक एनिमल की बात आ जाती है वहाँ पे सभी जगह पे एक वेटनेरियन की वो एक रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो आपके लैंड एनिमल्स हो, चाहे आपके कह लीजिए डोमेस्टिक एनिमल्स हो, चाहे आपके वाइल्ड एनिमल्स हो, सभी जगह। और अगर स्कोप का देखा जाए तो स्कोप आज की डेट में बहुत है, बहुत इन अ सेंस ऑफ फ्यूचरिस्टिक भी बहुत है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अभी जब अभी लखनऊ में ही इन्वेस्टर्स सबमिट हुआ था, बहुत रिसेंट की बात है, अभी मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीना हुआ होगा, तो इन्वेस्टर समिट्स में भी वेटनरी डिवीजन पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें कि मेन यही है कि गोट फार्म को कैसे बढ़ाया जाए। और अभी ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय हम वर्ल्ड में नंबर वन है पॉपुलेशन के मामले में, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी हमारी फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो फूड रिक्वायरमेंट में तो प्लांट्स है ही, लेकिन एनिमल प्रोटीन के लिए हमें एनिमल सेक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें आप चाहे मिल्क को ले लीजिए, चाहे पोल्ट्री ले लीजिए, चाहे एग ले लीजिए, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है इन्वेस्टर समिट्स में। तो उसमें फ्यूचर ये है कि अगर आप गोट रियरिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे उसको प्रोसेस करना है कि आपका जो बिज़नेस शुरू होने से, क्योंकि कई बार होते हैं ना, हमारे पास कभी काफ़ी सारे लोग आते हैं कि हम करना चाहते हैं पर हम कैसे करें, तो उसकी स्कीम कैसे बननी है, फिर आप उसमें हर स्टेज पे कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, फिर कैसे उसका प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन से मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे, तो इन सब में आपको एक वेटनेरियन की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। और मेडिसिन के फील्ड में भी देखा जाए तो वेटनेरियंस का काफ़ी अच्छा वो है, चाहे ह्यूमन मतलब हम चूँकि वेटनरी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने रिसेंटली आपने देखा होगा अगर आप न्यूज़ और बाकी सब चीज़ें देख रहे होंगे, तो कोविड के टाइम पे भी वेटनेरियंस का बहुत बड़ा रोल रहा है अपनी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत ऊपर से मतलब कह सकते हैं कि बहुत ग्राउंड लेवल पे नहीं, मतलब बहुत हायर लेवल पे, ग्राउंड लेवल से बहुत हायर लेवल तक वेटनेरियंस ने इसमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हर एक चीज़ में, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग और फिर एनिमल रियरिंग, उसका मैनेजमेंट, हर एक चीज़ में वेटनेरियंस का एक अच्छा स्कोप है। तो अगर कोई वेटनेरियन का करियर चुनना चाहता है, और आप जब ड्यूरिंग द कोर्स भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप या तो ट्रीटमेंट डिवीजन में आ सकते हैं या तो आप मैनेजमेंट वाले फील्ड में जा सकते हैं, तो दोनों को मिला करके आप कहीं ना कहीं एक सिक्योर हाथ में जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाएंगे।
0: क्या बात है, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं सिक्योर हाथ में जाएंगे और अच्छा ही करेंगे। जाने से पहले आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी लाइफ से पूछे वो भी आपने बखूबी जवाब दिए, साथ ही साथ आपने इस कोर्स के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया, उनकी बीमारियों के बारे में, उसका प्रबंधन के बारे में। अब एक संदेश जो लोगों को आप देना चाहें, क्योंकि आप एक वेटनरी ऑफिसर हैं, जानवरों को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए हम लोगों का?
1: देखिए मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ, नियरली 10 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं मुझे जॉब करते करते, और वेटनरी पढ़ने के साथ ही आप जिस दिन एडमिशन लेते हो उसी दिन आप वेटनरी फील्ड में जुड़ जाते हो। तो यूजुअली जो मैंने नोटिस किया है कि जब आप खुद बीमार पड़ते हैं तो, या फिर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है तो आप जब लेके जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें एकदम डूज एंड डोंट्स बना के जाते हो कि आपको क्या वहाँ बताना है, क्या नहीं बताना है, क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, वो मतलब एक तरह से समझ लीजिए वो बच्चों की पीटीएम जैसा हो जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन मतलब हमने अपने फील्ड में देखा है कि ढूंढा जाता है कि घर का सबसे खाली बंदा कौन है जो कि एनिमल को वहाँ तक और स्ट्रांग मतलब जिसके हाथ में एनिमल मैनेज हो सके उसको, क्योंकि 1.5 किलोमीटर उसको हाँक के जाना पड़ता है, तो ऐसे हाथ में दे देते हैं, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ले आते हैं, वो बताते कुछ और है, डायग्नोसिस कुछ और निकलती है। अगर हम उनको पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है एनिमल प्रेग्नेंट है तो फिर कब सिमेन दिया, नहीं हमें तो पता नहीं, हमको तो बस बोल दिया गया ले आने के लिए, हम लेके आ गए, तो ऐसा मतलब मेरे एक समझ से ऐसा रहता है, ये हमेशा नहीं 100% नहीं है ये, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अभी अगर कह लूँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये 50% में तो केसेस में रहता ही है,
0: मतलब अक्सर देखने को मिलता ही रहता होगा। सही बात।
1: अच्छा पेट्स के केस में ऐसा नहीं है, पेट्स के लिए लोग बहुत प्रोटेक्टिव है, एकदम उसको गोद में बिठा करके लेके आएंगे, और मतलब आप पेट्स का नाम भी नहीं लीजिए, मतलब as such उनको as an animal मत डिनोट करिए, मतलब उनका बेबी है वो, उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन लार्ज एनिमल्स के केस में ये अक्सर देखने को मिलता है, तो मेरा ये कहने का है कि आप अगर आपके, या तो आप रखिए नहीं, लेकिन अगर आपके दरवाजे पे आपने एक एनिमल को रखा हुआ है तो वो भी आपका एक फैमिली मेंबर हो गया।
0: बिल्कुल सही बात है
1: जी। तो उसके प्रति भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, और जितनी पॉजिटिविटी आप उसको देंगे वो उतना ही पॉजिटिविटी आपको भी देगा। जैसे कि अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, वीडियोस देखते हैं आजकल, तो YouTube काफ़ी चलन में है, तो कहीं आप देख रहे होते हैं म्यूज़िक थेरेपी दे रहे होते हैं, म्यूज़िक थेरेपी देने से उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, या फिर एक बहुत पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट अगर बना करके रखेंगे, एनिमल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे। और मैं तो कहूँगी कि जो यूजुअली क्या होता है, मैंने जो नोटिस किया है कि लोग जब आते तो कहते हैं कि एक बंदा उनका घर का है जो एनिमल हैंडलर है, मे बी वो घर का सबसे बुजुर्ग मेल होगा या फीमेल होगी, तो ऐसा मत करिए। और क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति घर में नहीं है तो फिर एनिमल बीमार पड़ गया और आपको पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये चीज़ें ना होने दीजिए, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, तो सबको पता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो भी सबके साथ कनेक्टेड रहता है। जब वो सबके साथ कनेक्टेड रहेगा तो फिर उसकी भी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मूड सबके होते हैं और खुशी सबको चाहिए, सब खुश रहना चाहते हैं।
0: बड़ी अच्छी बात आपने कही, और शायद बड़ी ही बात सही है ये, कि जिस तरह से मूड आपका चेंज होता है, आप अपने अच्छे मूड के अकॉर्डिंग अच्छा काम करते हैं, उसी तरह जानवरों के साथ भी होता है। फिर वो चाहे आपके फायदे की बात हो, उससे मिल रहा दूध के प्रोडक्शन की बात हो, या फिर जो भी आप उससे फ़ायदा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारी ये ड्यूटी है कि जिस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि खांसी आने पे क्या देना है, जुकाम होने पे हमें क्या करना है, चोट लगने पे हमें क्या करना है
1: जी।
0: उसी तरह आपको अपने जानवर के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि आपको इस स्थितियों में क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आप आई मैम और आपने जिस तरह से एक एक चीज पे बात रखी, साझा की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत काम की बातें आज हुई हैं, क्योंकि हमारे कई सारे श्रोतागण जो आज सुन रहे हैं उनको काफी सारी नई बातें जानने को, समझने को मिली होंगी एनिमल्स के रिगार्डिंग। क्योंकि आप हमारी गेस्ट हैं, और जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम और करना चाहेंगे। अभी इस वक्त आप बैठी हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में, जो कि है गोंडा शहर की धड़कन। इसके आने से आपको क्या लगता है गोंडा शहर में क्या बदलाव होने वाला है, पहला FM है?
1: देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ना बहुत टाइम तक सेम टाइप का म्यूजिक नहीं सुन पाती हूँ। अगर मेरी पर्सनल बात आप पूछेंगे तो FM मेरा एक बहुत पसंदीदा है ट्रैवलिंग के टाइम पे।
0: क्या बात है।
1: एंड अभी मैंने चूंकि रिसेंटली ही मतलब एक व्हीकल चेंज किया, तो उसमें इनबिल्ट चीज़ें रहती है ना, जिसमें आपको वो म्यूजिक सिस्टम पहले जैसा नहीं रहता, तो आपको उसमें माइक लगाना है, फ़ोन के साथ अटैच करना है, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। उस पर भी अगर फ़ोन आए तो मैं इतना यूज टू नहीं हुई थी कि फोन आता था तो पता चला सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया।
0: राइट।
1: तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने ऐसे ही कुछ एक लगा दिया, और वो उस पर चाहे नेपाली गाना बज रहा है चाहे कुछ बज रहा है, आई यूज टू ट्रेवल। बट जब ऐसे स्क्रोल करते करते, मतलब मेरा जो एक्सप्लोरेशन था वो स्क्रोल करते करते अचानक से उसमें हिंदी म्यूजिक बजना शुरू हुआ।
0: ओके।
1: तो मैंने देखा कि एंड व्हेन ये टैग आया कि गोंडा शहर की धड़कन, तो लाइक आई वाज सो सरप्राइज्ड, और मुझे इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट मतलब इतना क्लोज लगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे स्टूडियो में बैठ के मुझे उससे भी ज्यादा कहीं कनेक्टेड लग रहा है।
0: क्या बात है।
1: और आपका मॉर्निंग शो में यूजुअली अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, ड्यूटी जाते जाते मैं सुन रही होती हूँ, तो फिर आप उसमें बता रहे होते हैं कि मॉर्निंग का कैसा चल रहा है, आज का मौसम कैसा है, फिर आज की थॉट क्या है, आज की हिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब यहाँ बहुत सारे मतलब मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज़ के आने से।
0: समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम हर गोंडा वासियों की फीलिंग थी कि अपने शहर में भी एक एफ एम आए। शायद एक सपना ही था कभी आएगा, या कई लोगों को तो फिर लगा ही नहीं कि कभी आएगा भी, क्योंकि हमें लगता था सारा काम तो हमारे लखनऊ फैजाबाद आकाशवाणी वाले ही कर रहे हैं। सो इस लिहाज से सच में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अपने गोंडा के ही लोग हैं, गोंडा का एफ एम है, गोंडा की जानकारियाँ हैं, दुनिया भर की जानकारियाँ मिलती हैं। आप जैसे लोग आते हैं, अपने स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं एक ये जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है लोगों के, और जागरूकता के लिए भी यहाँ से हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को चलाते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट करता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे बीच में आई और आपने हमारे लिए इतनी सारी जानकारियाँ दी। थैंक्स अ लॉट।
1: थैंक यू आरजे अदनान, थैंक यू वेरी मच।
0: सो हमारे साथ में ये थी डॉक्टर पद्मा मौर्य मैम, जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं, और कल हम फिर से हाजिर होंगे किसी एक नए मेहमान के साथ। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे और कुछ नया ज़रूर सीख के जाएंगे इस प्रोग्राम से। आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, निसंदेह आप सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला। बस फर्क ये है कि आज नहीं है आरजी बीना वाला, तो चलिए आपको ले चलते हैं कुछ यादों के सफर पे। बहुत ही अच्छा दिन भी है आज, और दिन की भी बात करते हैं। या तो ज्येष्ठ का दूसरा मंगल है और आज का दिन बड़ा शानदार है। हाँ, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है और

ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। जी हाँ, तो मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात बिल्कुल नहीं होती। बस आप लोगों का साथ रहे और शाम को थोड़ी सी और खास बनाते हैं। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं शाम का ये प्यारा सा सफ़र। और जब सफ़र प्यारा हो तो हमको लगता है कि भाई शाम चूँकि अच्छी होनी चाहिए, तो कोई ऐसी शाम हो जो अच्छी हो, जो मस्तानी हो, और मस्तानी शाम में आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ, चलिए मस्तानी शाम में आपका एक बार स्वागत है। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल इस शाम को बनाते हैं मस्तानी इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो प्यार गुलवे बुलबुल सा करना। जी हाँ, वास्तव में मोहब्बत हो तो ऐसी ही पाकीज़ा हो, पवित्र हो, नहीं तो ना हो। और ये जो कहानी कही गई, ये कहानी नहीं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं सच है। जिस प्रकार से अभी भी हम जाते हैं गांवों में तो देखते हैं कि शहरों में जितना जीवन प्रभावित हुआ है, लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागे हैं, दिखाई पड़ता है कि गांव में अभी वो थोड़ी बहुत तरबियत संस्कार बचा हुआ है। कहा भी जाता है कि गांव से आया हूं, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। एक गांव वाले की बात है ये, कि गांव से आया हूं, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, शहर के लोग हैं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। गांव से आया हूं, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, शहर के लोग हैं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर, बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर, कितना चाहा था कि अपनों को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, लेकिन कितना चाहा था, लेकिन नहीं हो पाया। और वास्तव में अगर हम देखें तो सब कुछ वक्त है। न नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। कलंदर मतलब जो कलमकार है, जो लिखता है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। है मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है। तो ना साहब, वक्त कैसा होता है इसको हम वक्त पर ही परिभाषित कर सकते हैं। कहा जाता है कि नसीब से पहले, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा शायद ही कभी किसी को मिला और शायद ही कभी किसी को मिल पाएगा। लेकिन फिर भी हम वादा तो करते हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इसी उम्मीद का नाम तो साहब जिंदगी है। आइए जिंदगी के इस सफ़र में आपको ले चलते हैं और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत आपको सुनाते हैं। हो सकता है ये गीत आपके दिल की अतल गहराइयों को छूता हुआ निकल जाए।
1: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए

0: जी आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। वास्तव में और जब बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हिस्से में किसी का प्यार आता है, और शायद बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो इस प्यार को समझ नहीं पाते, उसका एहसास नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार मिले तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि इस समय ज़माना ज़रा सच्चे मोहब्बत करने वालों की ओर कम है। और अगर आपके नसीब में है ऐसा कोई तो भाई जी ये जायज़ है कि आप उसकी ओर ध्यान दें। कहा जाता है तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। उरोज पर नसीब था, मतलब नसीब जब अच्छा था, उरोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो जमी से भी फिसल गया। तो इंसान नहीं बड़ा होता, हमको लगता है इंसान का वक्त, इंसान का मुकद्दर, ये उसके बहुत बड़े पहलू होते हैं, और सब कुछ वक्त से ही है। और वक्त की एक खूबी है कि ये पलटता जरूर है, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो अगर कहीं कोई दिन खराब निकला है तो हो सकता है, कहा जाता है कि आप फूलों को अपने पैरों से कुचल सकते हैं लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। बसंत तो आएगा ही आएगा, वो चाहे जिंदगी हो या पेड़ हो। और कुदरत की हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर एक चीज। अगर पेड़ से लेकर के हम सूर्य तक की बात करें तो सूर्य पर भी कहा जाता है उदेति सविता ताम्र, ताम्र वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। मतलब सूर्य भी उगता भी है तो भी लाल रंग का होता है, और डूबता है तो भी लाल रंग का होता है। उसके लिए उगना या डूबना, इन दोनों में प्रसन्नता या दुख जैसी कोई बात नहीं होती। वो अगर उगा है तो अपने उगने की खुशी है, और अगर डूब रहा है तो इस बात की खुशी है कि ये डूबना इस बात का प्रतीक है कि हम कल फिर उगेंगे। पेड़ से हम देखें तो बहुत कुछ पाते हैं, होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। तो पत्ते भी साहब पेड़ों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पेड़ जानता है कि अगर हम खड़े रह जाएंगे या डिग रह जाएंगे तो कल इन पर फिर से पत्ते आएंगे। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, पीवी शैले ने कहा था कि अगर पतझड़ आया है तो बसंत भी आएगा। और सब कुछ न कुछ हमको कोई न कोई हर एक चीज कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे अगर हम चांद से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, रोज बढ़ा घटा। एक दिन महीने में पूरा हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे कटना शुरू हो गया, मतलब फिर अमावस्या का दिन भी आता है और इसके पश्चात देखिए आप चांद को, तो अमावस्या की रात में चांद की क्या स्थिति होती होगी, शायद वो तो कहता होगा बताओ यार अंधेरा ही अंधेरा छा गया। लाइफ में जब कभी अंधेरा छा जाए तो उजाले की ओर देखना चाहिए, हो सकता है उजाला आपसे कुछ ही दूरी पर बैठा हो और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कहा जाता है कि एक चाबी का गुच्छा आपको दिया गया जिसमें 100 चाबियां हैं, आपने 99 चाबियों का प्रयोग किया और एक का आप नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है जिस 100वें चाबी का आपने इस्तेमाल नहीं किया उस ताले की वही चाबी रही हो। कभी कभी हमारी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही हो जाता है, हम 99 कोशिश करते हैं और 100वीं कोशिश ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, और ये नहीं हो पाएगा हमारी असफलता का कारण बनता है। जी हाँ, देखिए प्रकृति में आपको क्या कुछ दिया, आइए कुदरत की सैर कराते हैं आपको इस प्यारे से गीत के माध्यम से। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।
1: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को

आह जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सोना रात अंधेरी है। क्या गजब की पंक्तियां। एक व्यक्ति के न रहने से जिंदगी कितनी खोखली हो जाती है, ये एहसास ये गीत हमको कराता है। और वास्तव में अगर हम सच देखें, सच माने, तो ऐसा ही हमारे जीवन के भी साथ है। मैं कई बार हमेशा कहता हूं कि हो सकता है आप इस दुनिया के लिए महज एक इंसान हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी एक इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया हो। वो ख्वाब था बिखर गया, ख्याल था मिला नहीं। वो ख्वाब था बिखर गया, ख्याल था मिला नहीं। मगर ये दिल को क्या हुआ, ये क्यों बुझा पता नहीं। हर एक दिन उदास दिन, हर एक सब उदासियाँ। हर एक दिन उदास दिन, हर एक सब उदासियाँ। किसी से क्या बिछड़ गए कि जैसे कुछ बचा नहीं। जी हाँ, किसी इंसान से बिछड़ना इतना आसान नहीं होता, और बिछड़ कर जीना तो साहब और मुश्किल कर देता है। हमारे साथ इंदु शर्मा जी हैं। गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड इवनिंग। जी हाँ बिल्कुल, आपको भी शुभ शुभ शुभ शुभ शुभ शुभ शुभ शुभ शुभ संध्या। हमको एक बात कह गई यहाँ पर गुड गुड से और शुभ शुभ से। हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्ची को पढ़ाते थे, तो वो सा को शा बोलती थी, मतलब दंत सा को तालव्य शा बोलती थी। सामान्य भाषा में कहें तो सब्जी वाले सा को शलजम वाला शा। तो बड़े पड़े पड़े मतलब बहुत परेशानी हुई मुझको कि क्या करे भाई, कैसे कहती थी समाज में बहुत मतलब वो अजीब सा लगे। तो उसके लिए हमने कुछ पंक्तियां बनाई। हमने कहा कि कहो साई के सरपतवा में सांप सुसुआत रहल, तो कहती थी साई के सरपतवा में सांप सुसुआत रहल। हमने फिर कहा कहो साई सुटकुनिया से सुटुक सुटुक सुटुक दें, वो कहती थी साई सुटकुनिया से सुटुक सुटुक सुटुक दें। हमने फिर कहा कहो सपवा सर सर सर सर सर सर सर सर सर से भाग गा, उसने फिर कहा सपवा सर सर सर सर सर सर सर सर सर से भाग गा। तो ये जिंदगी है साहब, मतलब इसमें सुधार लाने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जी हाँ, इंदु शर्मा जी की गुड इवनिंग से भाई हमको ये याद आ गया। और चाय आपने ऑनलाइन भेजी है साहब, लेकिन इसका टेस्ट हम नहीं ले पा रहे हैं। और दलक शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सर। और जी हाँ, अनुष्का जी हमारे साथ सरवस्ती से हैं भाई, आपको भी शुभ संध्या प्रणाम। कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। जी किस एहतियात से पलकें, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये पत्थर पलक से उठाने पड़ते हैं। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये पत्थर पलक से उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते। बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो। ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो। पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता। बिना गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, और किसी को दिल से

भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये आंसू पलक से छुपाने पड़ते हैं। ये जीवन बहुत आसान नहीं होता साहब, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। तो आइए जीवन की ओर चलते हैं और आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

डब्बा थाली बोतल खाली डब्बा।

0: भैया,
1: इसकी चाल तो देखो,
0: अरे रंग लगाया,
1: इसके बाल तो देखो,
0: अरे झूठे मूठे,
1: इसके दांत तो देखो,

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी को ज्येष्ठ के द्वितीय मंगलवार की शुभकामनाएं। भगवान बजरंग बली आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जी हाँ, चलते चलते आपको उन्हीं के चरणों में लेकर चलते हैं। और आसमान गलने चाहा तो भी फिर मिलेंगे आपसे 9:30 पर बाहर गजल में। तब तक फिलहाल आप सभी को ज्येष्ठ मंगल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये श्री हनुमान चालीसा, अगर आपने आज नहीं पढ़ी है तो कम से कम आप सुन लीजिए।

सो दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे नहीं आता आसमान से तोड़कर सितारे लाना, मुझे नहीं आता आसमान से तोड़कर सितारे लाना, मैं जमीन का इंसान हूँ बस पलकों पर बिठा सकता हूँ। लेकिन आजकल जमीन के इंसान भी पलकों पर बिठाने की गनीमत नहीं उठाते हैं, पलकों पर भी बिठाना शायद नहीं जानते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल, और क्या है आज की मंगलवार शाम में खास खास और मंगल मंगल बात ज़रूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और हमेशा की तरह लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, नाम आपके, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। क्या हाल चाल है आपका? अनुष्का जी श्रावस्ती से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, सविता शास्त्री जी सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, उदालक शर्मा मनकापुर से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, कमल नैन, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, शशि सिंह जी गोंडा से, रिंकू जैन मुस्तफ़ा और सुरेश कुमार जी चौक से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर जी और इंदु शर्मा, नागेश्वर धाकर, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, ओ माय गॉड बहुत सारे लिसनर हैं। आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत और इस्तकबाल है। एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की, ऑलरेडी बहुत देरी हो गई है, इस देरी की वजह भी आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल जरूर आप सबको देगी, और वो देरी की वजह भी आज का खास खास खास मंगलवार ही है हमारा, तो वो भी मैं रीज़न आपको ज़रूर बताऊंगी। इस मंगलवार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इस दिन भर में मेरे साथ 99.9% बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन 0.1% चीज़ ऐसी हुई है कि जिसने सच में मुझे हताश कह सकते हैं शायद, या फिर निराश थोड़ा सा अपसेट कर दिया है। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों। पहली फरमाइश हमारे पास में है किसकी आखिर, अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है एकदम अपने जोन वाला गाना। बीड़ी जलेले जिगर से पिया और जिगर माँ बड़ी आग है, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इस गाने ने तो आज की शाम में सच में चार चांद लगा ही दिया। एंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड। बना ले हाफ ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी, ना ले हाफ ठंडी हवा के खिलाफ।

और जिगर माँ बड़ी आग है, हमने एंजॉय किया है ये ओमकारा का गाना हमारी अनुष्का की फरमाइश बजो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीर जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीर जी को बाराबंकी से सुनना है गाना जुआरी का, पर्वत रोके सागर रोके। आहा, सो एंजॉय करते हैं जुआरी मूवी का ये वाला गाना मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम विशाल बेदर्दी प्रमोद श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी मोहम्मद मुशीर जी की बाराबंकी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की, मनकापुर से। और उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना ये दिल आशिक काना। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा 90s का रोमांटिक सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड। मेरे लिसनर्स का कहना है कि मैम, आपने लेट आने की वजह अभी तक हमें बताई नहीं, तो लेट आने की वजह जो मैं बताऊंगी ना, उसकी कहानी बहुत लंबी है, तो क्यों ना उसको 9 से 9:30 वाले टाइम में बताएं। हाँ।

नहीं खाना। दिल आशिकाना से अच्छा तो ये लगता है, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि खाना पकाना अगर ऐसा हो कि हाँ आपका आज कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा है कि चलो ये बनाते हैं, घर वालों को खिलाएंगे, बहुत तारीफ पे तारीफ मिलेगी, मजे ही मजे, मम्मी पापा भी खुश, सब खुश, वाह पार्टी,

राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। वाओ कितना बढ़िया गाना था ना। सो थैंक यू सो मच मालवे नगर से राजेश सिंह जी इस गाने को आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के, क्योंकि आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल ने ऑलरेडी आपके गानों को बजाने में बहुत देरी कर दी है। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है मंगल को जन्मे मंगल ही करते। सो एंजॉय करते हैं ये पवन सुत हनुमान का डिवोशनल गाना, भजन सिर्फ और सिर्फ आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम उस्मान खान जी, स्टे ट्यून्ड। और किस किस को आज आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह गोंडा के हर चौराहे हर तिराहे पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जाम ट्रैफिक यही दिख रहा है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया है आशा मिश्रा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है इश्क प्यार मोहब्बत के प्लेलिस्ट से। जी हाँ, आपने एकदम सच और एकदम सही सुना है। अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन की, और कमल नयन को सुनना है गाना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आहा, सब कसमें वादे भी झूठे खाने लगे हैं कमल नयन जी, तो किसी की बातों पर मतलब आपको विश्वास नहीं करना है, एकदम आंखों पे पट्टी बांध के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो विश्वास पर ही दुनिया चलती है, विश्वास पर ही दुनिया में गाड़ियां चलती हैं रोड पर, विश्वास पर ही दुनिया में लोग चलते हैं रोड पर, है ना। तो समझ रहे हैं, विश्वास पर ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन फिर भी दिल से विश्वास कभी किसी पे नहीं करने का। एंजॉय करते हैं हमारे कमल नयन जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

करते हैं तुमको सनम और कसम, चाहे ले लो खुदा की कसम। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनमा साजन मूवी का हाउ रोमांटिक सदा बहार गाना। कमल नैन जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की ओ माय गॉड न्यूज़ की दुनिया में, और जहां हम रूबरू होंगे देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे आपके अपने हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक। हाँ, अगर आपको कहीं जाना है तो देश दुनिया की खबरों को सुनते सुनते आप अपना पेट पूजा भी कर सकते हैं। पेट पूजा करने के बाद में आप अपने बिस्तर के अंदर आप विराजमान भी कर सकते हैं। अपने बिस्तर के अंदर विराजमान होकर आप विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन 9 बजे सीधे फिर से आपको अपने फरमाइशी प्रोग्राम के चैट बॉक्स में आ जाना है और फरमाइशी गीतों का लुत्फ उठाना है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, उनको सुनना है झंकार बीट्स में गाना रंग मूवी का। सो एंजॉय करते हैं ये गाना, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: That we will convert the current situation.
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मैंने कहा। ठाकुर मैं आ गया हूं, तुम्हारे कब्जे में हूं। अंजू को छोड़ दो।
1: छोड़ दो? हाथ आई हुई ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो? जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है।
0: सुना था डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, और फिर तुम तो ठाकुर हो, तुम्हें अपनी जबान का पास होना चाहिए।
1: कहां का ठाकुर, कैसी जबान? तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है। जब्बर सिंह ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना।
0: देख ठाकुर, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो, इस बिचारी से तुम्हारा क्या बैर है?
1: बैर इससे नहीं है, इसकी जालिम जवानी से है। ये रंग, ये रूप, ये जोगन, तुम्हारी कसम ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है।

घबराओ नहीं, तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। तेरे लिए मैंने ऐसी मौत सोची है जिसे सुनकर सारा इलाका कांप उठे।

मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए और बोल के साथ क्या सलूक किया जाए। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, अभी हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मेरा गांव मेरा देश मूवी का, जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा की फरमाइश पर जो कि है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, उनको सुनना है गाना लैला मजनू का, फिर से लता जी की आवाज़ में। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ सबलू सावंत की फरमाइश पर जो कि है बोरीवली मुंबई से। स्टे ट्यून्ड।

कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानी को। किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्वाबों में जो हंसता है असल में वही रोता है। ख्वाबों में जो हंसता है असल में वही रोता है, और जो रोता है वही दुनिया को हंसाता है। सो ये लाइन्स थी सबलू सामंत जी की तरफ से, जो कि हैं बोरीवली मुंबई से, और अभी हमने इंजॉय किया है गाना हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इसकी भी फरमाइश हमारे पास में आई थी सबलू सावंत की तरफ से, जो कि हैं बोरीवली मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह की, और उनको सुनना है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ओल्ड इज़ गोल्ड वाला नगमा। सो इन्जॉय करते हैं कहना एक दीवानी तेरी, सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये बहुत ही दर्द भरे से नगमे की फरमाइश हमारे पास में आई थी शशि सिंह जी की तरफ से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि फरमाइशें बहुत हैं और समय बहुत ही कम है। अगली फरमाइश हमारे पास में है रिंकू जैन की, और उनको सुनना है गाना याद तेरी आती है मुझको बड़ा सताती है। सो इंजॉय करते हैं अफसाना प्यार का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, अलका याग्निक की आवाज़ में ये सदाबहार नगमा, सिर्फ और सिर्फ रिंकू जैन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अफसाना प्यार काका अलका याग्निक की आवाज में। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों बिना किसी देरी के, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा की। मुस्तफा को सुनना है गाना मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वैसे दोस्तों मैं भी कहीं भी किसी के पास भी जाने के लिए कोई भी काम हो करने के लिए देर कभी नहीं करती, लेकिन देर हो जाती है
1: मेरे जागने से पहले।
0: ये गाना मेरे

सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, जिसके साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल आप से लेना चाहेगी अलविदा। सो हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है विशाल बेदर्दी की। विशाल बेदर्दी को सुनना है गाना कुछ तुम सोचो, तो इंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गाना और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड।

0: हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
11: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी

0: हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। आज जिस कलमकार को हम आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम शैलेंद्र, ये नाम आप सबने सुना होगा, बहुत सारे गीत लिखे इन्होंने, इनके बारे में आज बात करेंगे। और उनका लिखा हुआ एक गीत है जो फिल्म सीमा में आया था, बहुत ही प्यारी आवाज दी थी इस गीत को मन्ना डे ने, नूतन और बलराज साहनी प्रमुख भूमिका में, संगीतकार शंकर जयकिशन और गीत लिखा शैलेंद्र ने। आप इस गीत को सुनिएगा और इस गीत को सुनने के बाद हम बात करेंगे कि कोई भी कलमकार जब लिखता है किसी गीत को, किसी कविता को, किसी गजल को, तो वो शब्दों के मोती कहाँ से पिरोता है। जरा ध्यान से, आपने कई बार ये गीत सुना होगा लेकिन एक बार जरा ध्यान से प्रत्येक शब्द को सुनिएगा, क्योंकि हम एक एक शब्द की गहराई पर जा करके आपसे बात करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आपका साथ भी हमको मिलेगा। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कलमकार ने अपनी आत्मा निचोड़ कर रख दी। आप सभी का सुना हुआ गीत है, एक बार पुनः सुनिए और सुनने के बाद एक बार फिर आपके साथ होते हैं रूबरू और चर्चा करते हैं इस प्यारे से गीतकार पर जिसका नाम है शैलेंद्र। फिलहाल आप सभी के लिए ये गीत है, ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद हम इस कलमकार पर करेंगे बहुत ढेर सारी चर्चा। जी हाँ, उम्मीद है और आपका साथ हमको मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

उम्मीद है इस नगमे को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी तो शायद आप वहां तक न पहुंच पाए या शायद मैं आपको वहां तक न पहुंचा पाऊं जहां तक इस कवि ने छुआ। शैलेंद्र, जिनका वास्तविक नाम शंकरदास केसरीलाल, शुरुआत से भुखमरी गरीबी का साया आन पड़ा और मजबूर होकर के ये माया नगरी पहुंचे। लिखने का शौक था, लिखते थे और वहां पर उनको रेलवे में जॉब मिल गई। रेलवे में जब जॉब मिल गई तो उससे गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था उनका, और कुछ दिनों के पश्चात उनका विवाह भी हो गया। और विवाहोपरांत जब वो मुशायरा कहीं होता था तो उन मुशायरों में शिरकत किया करते थे, आते थे शंकरदास केसरीलाल के नाम से। मुशायरा हो रहा था बॉम्बे में, ये पहुंचे और अपनी कविताएं पढ़ी और इत्तेफाक ये था कि राज कपूर साहब वहां बैठे हुए थे और वो उस समय फिल्म बना रहे थे आग। शंकरदास केसरीलाल से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने उनको अपनी फिल्म में गीत लिखने का ऑफर दिया। उनका गीत लिखोगे हमारे लिए, फिल्मों के लिए आवाज। वे जानते थे कि शोमैन दुनिया की भारतवर्ष में एक बड़ा नाम उनका, तो जानते थे कि उत्तर हाँ में ही आएगा, लेकिन जो उत्तर आया उसे सुनकर वो भौचक्के से रह गए। उस कवि ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिएगा, बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन उसमें दृढ़ता भी थी, मैं अपने गीत नहीं बेचता। राज कपूर जी को लगा कि ये व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी है। जिंदगी चल रही थी और ऐसी चलती हुई जिंदगी में शादी के बाद पत्नी को डिलीवरी होने का समय आया। बहुत मामूली तनख्वाह थी और गुजारा करना मुश्किल था, जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा था। उन्होंने बड़े भारी कदमों के साथ राज कपूर साहब के बंगले की ओर कदम बढ़ा दिया। पहुंचे, मिले राज कपूर साहब से और कहा कि क्या वो काम मुझे अब भी मिल सकता है। राज कपूर साहब ने कहा कि आप तो गीत नहीं बेचते हैं। उसने कहा, जी अगर मुझे खुद के लिए बेचना होता तो कभी ना बेचता, लेकिन इस समय संकट मेरे परिवार पर है और मैं विवश हूं, क्या वो काम मुझे आज भी मिल सकता है। राज कपूर साहब ने बिना कुछ सोचे समझे 500 रुपए उनको दिए और कहा कि इसे लेकर जाइए, पहले आप अपने घर को व्यवस्थित कर लीजिए, पत्नी की और बच्चे की जान बचाइए, इसके बाद मिलिएगा। 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकर चले आए। सोचिए, जिस इंसान ने इतना दर्द झेला हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि कलमकार की जब कलम बोलती है तो उसके अंदर का दर्द बोलता है। अब इस कविता के अंतरे पर आते हैं। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। अब ये घायल मन का पागल पंछी कौन है, उड़ने को बेकरार, मतलब इस दुनिया में जीने का मन नहीं कर रहा है।
एकदम आहत हुआ है कवि अपने भीतर से। पंख है कोमल, सैलरी बहुत कम है, आंख है धुंधली। अब देखिए, एक पक्षी है जिसका जो चाहता है कि उस पार पहुंच जाऊं, लेकिन उसके पंख कोमल है, आंख धुंधली है और समुद्र के उस पार जाना है। अब तू ही इसे समझा, राह भूले से भूले थे कहां से हम। अब कवि के मन में प्रश्न आता है कि अब इस स्थिति में कौन पार लेकर जाएगा, क्योंकि जो पक्षी है वो समुद्र के उस पार जाना चाहता है, लेकिन पंख कोमल है, आंख धुंधली है, उड़ने के लिए तरस रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। और आगे देखिए, जब जिंदगी में आपके कुछ उसूल होते हैं, हर इंसान के होते हैं,

और कहा जाता है कि अगर उसूल से आप जिंदगी नहीं जी पाए तो फिर अपनी नजरों में गिरते हैं। पंक्ति मुझे याद आ गई कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। अब अगला स्टैंजा देखिएगा, मतलब कविता क्या कह रही है, शैलेन जी क्या कहते हैं कि इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। एक तरफ जिंदगी है, परिवार है, और दूसरी ओर अगर इस परिवार को बचाने के लिए मैं जा रहा हूं तो वो मेरे उसूलों के साथ बहुत बड़ा समझौता है, और वो समझौता मेरे उसूलों का मेरे लिए मौत है। What should I do in this situation? इस स्थिति में हम करें तो क्या करें? इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। आगे क्या होने वाला है हम जानते भी नहीं है। अब जब इंसान को कोई सहारा नहीं होता तो मेरा अपना मानना यह है कि जब और सहारे छिन जाते, कोई ना सहारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता है। अब कवि कहता है ईश्वर से, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस कविता को लिखने के लिए कवि अपने हृदय की किन गहराइयों तक गया होगा, कितने दर्द का सामना किया होगा, इसका अनुमान लगाना शायद हमारे और आपके लिए संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति, ऐसा जीवन, सोचिए ऐसे कलमकार होते हैं साहब जिनको हम कहते हैं कि क्या गजब का गीत लिख दिया, कितना बढ़िया म्यूजिक है, गाने वाले ने कितना बढ़िया गाया। लेकिन अगर आप देखें तो जो वो बुनियाद है, वो जो ईंट की नींव है, वो कहाँ खड़ी है, शब्द ही नहीं होंगे। तो संगीत शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएगा जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न जला। वो प्रीत करेगा क्या, वो गीत लिखेगा क्या। इंसान के हृदय में अगर इंसान का दिल टूटा है, इसका मतलब उसके पास दिल है। और जब किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, जब उसको लगता है किसी से नहीं कह सकते, किसी से नहीं, पत्नी से क्या कह दें, बच्चों से क्या कह दें, परिवार से क्या कहें, जब किसी से न कह पाए तब उनसे कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे ईश्वर, आप तो समुद्र हैं, बस हम एक बूंद चाहते हैं आपसे, एक बूंद चाहते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। हमको जितना मिलता है हम उतना ही अधिक चाहते हैं। लेकिन कवि कहता है नहीं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उम्मीद है कि आप इस नगमे को दोबारा सुनेंगे तो एक बार सोचने पर विवश होंगे। सामान्य तरीके से सुनना और सिंबलिज्म में कि कविता ने, कवि ने कहने की क्या कोशिश की है कि मन घायल है, पंछी चाहता है उस पार चले जाना, आंख धुंधली है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं,
और ऐसी स्थिति पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जी हाँ, और जिंदगी की दास्तां बड़ी अजीब है। और देखिए, अब देखिए बात मुझको याद आ गई, या हा हा, फिर याद आ गए मुझको शंकरदास केसरीलाल उर्फ शैलेंद्र। जिंदगी की उसी उधेड़ बुन में उनके कलम से एक और गीत निकला जिसने लोगों के हृदय को चीर करके रख दिया। आज भी वो नगमा आपके जहन में ताज़ा होगा। आइए आपको शैलेंद्र जी का ही लिखा हुआ एक नगमा और सुनाते हैं और फिर इस नगमे पर बातचीत करते हैं। उम्मीद है आप गीतों को, गज़लों को जरा ध्यान से सुनेंगे तो इसके अर्थ निकालने में हम और आप कामयाब हो पाएंगे। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल शैलेंद्र जी का ये नगमा आप

क्या बात है शिवता शास्त्री जी, शुभ संध्या सर जी, प्रणाम करते हैं। धर्मेंद्र मोहन जी हैं भाई, आवास विकास कॉलोनी से आपको भी प्रणाम करते हैं जी। बात दूसरे गीत में आई है, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, नूर मतलब प्रकाश, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। सोचिए कवि कहना क्या चाहता है। हम आज शैलेंद्र जी के गीतों के एहसासात की बात करने उतरे हैं। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। यानी उनकी अपनी जिंदगी का जो कर्ब है, जो दर्द है, वो शामिल है उनके हर गीत में। हाँ, तो मैं आपको बात बता रहा था कि 1948 में, 1948 में आग फिल्म के लिए जब गीत लिखने की बात हुई तो उन्होंने कोई गीत नहीं लिखा उस फिल्म के लिए। उस फिल्म के सारे जो गीत हैं वो मजरूह सुल्तानपुरी और बेहजाद लखनवी, इन दोनों के द्वारा लिखे गए थे और संगीत राम गांगुली ने तैयार किया था। और शुरुआत में हुआ क्या था कि राज कपूर ने जब उन्होंने इस गीत के लिए एक लिखा था तो वो चाहते थे कि इसमें शीर्षक हो जलता है पंजाब, ऐसी कुछ टाइटल हो जिसमें ये बताया जाए कि यहाँ पार्टीशन में ऐसा कुछ हुआ। और शैलेंद्र जी उस समय वामपंथी विचारधारा के थे तो उन्होंने मना किया था उनको कि हम पैसे के लिए गीत नहीं लिखते। और बाद में मुकेश के लिए आहा, शैलेंद्र जी ने वो गीत लिखे हैं साहब कि आज भी आपकी जुबान पर होंगे। बरसात के लिए गीत लिखा उन्होंने जो 1949 में आई, और गीत आपको याद होगा बरसात में हमसे मिले तुम सजन, आपने सुना होगा, और पतली कमर है तिरछी नजर है, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। और फिर उसके पश्चात शैलेंद्र के गीतों का दौर शुरू होता है। 800 से ज्यादा गीत उन्होंने लिखे। आपको बताएं कि राज कपूर के साथ उनकी जो जुगलबंदी थी, उनके साथ शंकर जयकिशन संगीतकार, और हिंदी फिल्में, हिंदी सिनेमा की जो सबसे बेहतरीन जोड़ी थी उसमें ये जोड़ी थी, पर्दे पर राज कपूर, गीत शैलेंद्र के, और संगीत शंकर जयकिशन का। मतलब आप कह सकते हैं कि आपने, आप सभी ने गीत सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, सबने सुना होगा, ये उन्हीं का लिखा हुआ गीत है, जागते रहो। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखिए मतलब फिलॉसफी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जिंदगी किसे कहते हैं वो डिफाइन देखिए, जीवन को जो परिभाषित किया है वो शंकर शैलेंद्र जी ने कैसे परिभाषित किया कि जीवन क्या है, कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, आपकी वजह से किसी इंसान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर गम आपको मिल रहा है, दूसरे का गम अपना लीजिए, अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखिए, यही है जिंदगी। ये जिंदगी को परिभाषित करते हुए चलते हैं। आप ओ बसंती पवन पागल अगर आपने सुना होगा तो बहुत ही प्यारा गीत। और अब फिलॉसफी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी देखिए, आध्यात्मिकता देखिए,
सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न बंगला है घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। क्या कहते हैं, तुम्हारे महल चौबारे यहीं सब रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन से झूठ मत बोलो। अब देखिए क्या फिलॉसफी है जिंदगी की, कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। ये सबकी जिंदगी का सच है, लड़कपन खेल में, जवानी मस्ती में, जब बुढ़ापा आ गया, रे वृद्ध हो गए, क्या मतलब, कहां से उनके गीतों में जो दर्द आता है वो स्वाभाविक नहीं आता, उस दर्द को उन्होंने झेला होता है। गाइड फिल्म की बात करें अगर हम, उनका लिखा हुआ गीत आज फिर जीने की तमन्ना है, और जीने की तमन्ना है के साथ साथ दूसरी पंक्ति आज फिर मरने का इरादा है। सोचिए जिंदगी और मौत एक ही लाइन में, दोनों दिल अपना और प्रीत पराई का गीत हमने आपको सुनाया, अजीब दास्तां है ये। अब देखिए मधुमती में आते हैं वो, तो सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, और सबसे खास बात चैलेंज की ये थी कि बहुत सीधे और आम बोलचाल के शब्दों में उनके गीत होते थे, लेकिन उनका जो अर्थ होता था वो दिल को छूता था। मतलब शैलेंद्र जी के गीत को अगर आप बाहरी नजर से देख रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, उसके अर्थ पर नहीं जा रहे हैं, तो शायद आपको लगेगा कि ये सामान्य गीत है, लेकिन जब आप उसके अर्थ पर जाएंगे तो आपको लगेगा वाह क्या कमाल कर दिया शैलेंद्र जी ने, कमाल। मतलब दुनिया में बहुत सारे गीतकार होंगे, लेकिन जब मैं शंकर जयकिशन जी को पढ़ रहा था ये कि इनके साथ इनकी मूवी हुई शैलेंद्र जी के गीत, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। और ये वो इंसान है जिसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए अपने गीतों को पहली बार बेचा था। इंसान अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं कर जाता। पंक्ति मुझे याद आती है कि आंखें खराब हो गईं बच्चों को पालकर, आंखें खराब हो गईं बच्चों को पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, जीते जी बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। कहीं ना कहीं दर्द है जिंदगी में साहब, और यकीन करें तो ये दर्द हमारी जिंदगी का आधार है, बेस है। जब ऐसा तनिल शास्त्री जी हैं, दादा प्रणाम करते हैं आप, क्या बात है। जी हाँ, और SSS हैं भाई, गुड इवनिंग। और आशु मिश्रा जी हमको सुने लखनऊ से, प्रणाम करते हैं बहन जी आपको। जी आइए अब आपको चलते हैं, और अब इन सारी चीजों के साथ साथ होने के साथ साथ वो कहते हैं आवारा हूं, गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। मतलब यहां भी दुख है, ऐसा कोई गीत नहीं है जहां पर वो प्रसन्नता के साथ दुख को मिला ना दे, क्योंकि वो उनकी रगों में बह रहा था। या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। अब ये गीत भी सुनिए और देखिए आपको इसमें क्या महसूस होता है। आज के पहले आपने ये गीत सुना होगा तो बड़ी मस्ती से सुना होगा, अब आप इस गीत को सुनिए और देखिए क्या इसमें आपको दर्द नजर आता है या नहीं। नजर आएगा तो बताइएगा, चैट बॉक्स में आपके उत्तर की प्रतीक्षा में मैं हूं। फिलहाल सुनिए ये गीत और जरा इसके अर्थ पर जाइए और बताइए कि आपने इस गीत का क्या अर्थ निकाला।

जी पहले गीत की अगर बात करें तो कभी कहता है आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सोचिए इंसान कहाँ जाए, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ। फिर अगली पंक्ति आती है, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। क्या बात है, बर्बाद ही है लेकिन खुशी के गीत गा रहे हैं। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। जो सीना है ना वो जख्मों से भरा हुआ है, यानी इस दिल में दर्द के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये आंखें हंस रही हैं। यानी जब दिल रोता है तब

0: क्या बात है। और फिर अगला गीत जहाँ शुरू होता है, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, कभी वीडियो में देखिएगा तो ये गीत जब शुरू होता है तो राज कपूर साहब चलते रहते हैं, म्यूज़िक बजती है और अचानक उनका पैर एक कीड़े पर पड़ने वाला होता है, और कीड़े पर जो उनका पैर पड़ने वाला होता है तो एक पत्ता लाते हैं, उस पत्ते से कीड़े को उठाते हैं और फिर रख देते हैं ताकि कहीं किसी दूसरे का पैर न पड़ जाए। बहुत छोटी बात है, छोटा सा कीड़ा, लेकिन फिल्मांकन देखिए। और वो कहते हैं कि रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, शुरुआत के लिए वीडियो देख लीजिए आप रो पड़ेंगे। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे। शब्द देखेगा कि आंसुओं में मुस्कुराएंगे, रोएंगे नहीं, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। यही जिंदगी है साहब, यही जिंदगी है। हम लोग समझ जाते, लेकिन कहा जाता है कि जब तक इंसान समझता है तब तक जिंदगी समाप्त होने को आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज हम शैलेन जी को लेकर चले थे, और जो मैं सोच कर बैठा था, हो सकता है आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो या न रखते हो, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय को उठाना चाहिए, आज दर्द को उठाना चाहिए, और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ दर्द को उठाया, जहाँ पर कवि कहता है किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। क्षमा चाहेंगे आशु जी, आपका गीत आज हम नहीं बजा पाए। और इंदु शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग, बिल्कुल मैं अच्छा हूँ। और जी, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। कल बुधवार है, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बहार गज़ल, ठीक 9:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।
1: रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही मैसेंजर पर मैसेजेस की बौछार हो गई। हे क्यूट, हाउ कैन यू बी सो मच फिट। इन शब्दों की ठंडी बौछार से प्रीति ऐसे खिल उठी मानो किसी बंजर जमीन पर अरसे बाद एक गुलाब खिल आया हो, महकता, मुस्कुराता, लुभाता। याद नहीं आखिरी बार श्रेयांश ने उसे कब इन शब्दों से संबोधित किया था। उसमें कुछ आत्मविश्वास जगा था और उसने इटलाते हुए रिप्लाई भेजा था, इट सीम्स योर टेक्निक फॉर एवरी फीमेल फ्रेंड, इफ वी बिकम बेस्टीज इट विल बी लास्ट। उसने तुरंत जवाब भेजा, कांट मेक यू बेस्टी, आई हैव ऑलरेडी 3 बेस्टीज, माय हबी एंड 2 किड्स। प्रीति का जोश दोगुना हो गया था, यू कैन ऐड मी इफ यू वॉन्ट, उसका मैसेज आया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इजहारे प्यार। अब तक आपने सुना प्रीति का पति श्रेयांश अपने काम में हद से ज्यादा व्यस्त रहता था। प्रीति उसके साथ समय बिताना चाहती थी लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं था। अपनी नीरस जिंदगी से तंग आकर एक दिन प्रीति फेसबुक पर किसी से बात करने लगी। अब आगे कई दिनों तक इस तरह के प्रणय निवेदनों से पिघलकर प्रीति ने फेसबुक अकाउंट खोलकर देखा। वो दिल्ली के एविएशन स्कूल से पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका नाम था सौरभ। इम्प्रेस्ड होकर प्रीति ने भी एक मैसेज कर दिया, हाय डूड, लव्ड योर प्रोफाइल। बस फिर क्या था, वो एक ऐसी अनजानी राह पर चल पड़ी थी जिस पर कोमल पंखुड़ियां बिखरी थीं और जिनकी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। एक नई जिंदगी की आहट अपनी दोनों बाहें पसारे उसे बुला रही थी। इस राह पर चलने के लिए उसे हौसले की जरूरत थी, जो हौसला वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं जुटा पाई थी। पर अब वो हौसला जाने कहां से उसमें आ गया था। उससे बात करके प्रीति अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रही थी, एक अलग ही दुनिया में जहां वो माँ और पत्नी नहीं बल्कि शायद एक नई उम्र की लड़की थी। शुरू शुरू में चैट करते समय वो खुद अचंभित थी कि वो आखिर चाहता क्या है। उसे पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी, पूरे 10 साल बड़ी और वो भी मैरिड। उसके संकोच को देखकर उसने ही कहा था, विश्वास रखो कोई गलत इरादे से आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं भी साहित्य में रुचि रखता हूँ। FB पर पोस्ट की हुई आपकी रचनाएं बहुत अपनी सी लगी और आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव सा हो गया। कभी भी उसकी बातों में, उसके प्रणय निवेदन में प्रीति को छिछोरेपन की बू नहीं आई। कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी तरफ धकेल रही थी। उसे अक्सर एक किताब की पंक्ति याद आ जाती, कुछ रिश्ते आत्मिक होते हैं और हर जन्म में हम किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं। शायद ये पिछले जन्म में बिछड़ा हुआ कोई रिश्ता हो, प्रीति ने अनुमान लगाया। यू आर लाइक अ डायमंड इन माई लाइफ, वो अक्सर कहता था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि प्रीति एक बच्चे की माँ है। वो चुपके से उसकी आदतों में शामिल सा हो गया था। दोपहर के 2 बजते ही मन आतुर होकर फेसबुक की तरफ खिंचता। वो अपने फ्लाइंग क्लब की क्लासेस खत्म करके 2 बजे लौटता और आते ही प्रीति से चैट करता। मैसेंजर पर लहराते 3 डॉट्स उभरते ही प्रीति का मन हिलोरे खाने लगता। वो चाहती वो यूं ही लिखता रहे, वो पढ़ती रहे। उससे चैट करके उसे आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। उसकी इंग्लिश में एक शोखी, एक नशा, एक बेफिक्री थी नए जमाने की पुरशोख अदा के साथ, जो उसके तो आसपास भी भटक नहीं सकती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इजहारे प्यार। अब तक आपने सुना, प्रीति के पति श्रेयांश अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और प्रीति को खुद की जिंदगी नीरस लगने लगी थी। फिर उसे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल से और प्रीति उससे चैट करने लगी। अब वो खुश खुश सी रहने लगी थी। अब आगे प्रीति उससे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। थैंक्स टू गूगल, वो चैट की एक एक लाइन का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करती, फिर उसे मैसेंजर पर टाइप करती। वो उसके प्यार को, उसके एक एक लव्स को बहुत ही आहिस्ता से संभाल कर अपने मन के एक कोने में रखती जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्षणभंगुर है। उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था। ऐसी आकुलता, ऐसी सिरहन कि रोम रोम पुलकित हो जाता। स्क्रीन पर उभरा एक एक अक्षर उसकी आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता। वो गुनगुनाने लगी थी, चहकने लगी थी, फुदकने लगी थी। प्रीति ने उसका नाम अपने फोन में सौरभ नहीं, खुशबू नाम से सेव किया था, जिससे कि कभी भी श्रेयांश को शक ना हो सके। मुद्दतों बाद उसके इतने अच्छे दिन गुजर रहे थे। उसे रह रहकर उसकी एक एक बात याद आती और वो अंदर तक खुश हो जाती। वो सपनों की इस सतरंगी दुनिया से कितनी बार खुद को वापस बुलाना चाहती जब भी वो मायरा को देखती, पर वो इतना जिद्दी हो गया था कि लौटकर आना ही नहीं चाहता था। वो लाख कोशिश कर खुद को सच्चाई के धरातल पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी दोनों जिंदगियां आपस में क्लैश हो रही थीं, उसकी सच्चाई और स्वप्निल लोक, पर स्वप्निल जिंदगी का पलड़ा भारी हो रहा था। जिंदगी ऐसी ही है, वो दोनों सुख एक साथ क्यों नहीं पा सकती, जहां पति और मायरा भी हो और उसकी सपनों की दुनिया भी। पर नहीं, उसे एक को तो चुनना ही पड़ेगा। एक सुख को पाने के लिए दूसरे सुख का दफन करना ही पड़ेगा। वो विचारों में डूबी हुई थी, इतने में उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी बेटी के स्कूल से था। मैम, आप मायरा को स्कूल से ले जाइए, उसे तेज बुखार है। ये सुनते ही उसका समूचा बदन कांपने लगा। मैं कैसे भूल गई, उसे कल भी बुखार था। मुझे आज उसे स्कूल ना भेजकर डॉक्टर को दिखाने ले जाना था। मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना तक भूल गई। प्रीति ने अपनी गाड़ी निकाली और स्कूल की तरफ बढ़ा दी। वो खुद को अपराधिनी महसूस करने लगी। प्रीति ने उसे डॉक्टर को दिखाया, दवाई दे सुला दिया। पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल गया। रात को थकान से चूर होकर उसने अपनी गरम क्विल्ट में पनाह ली और फोन स्क्रॉल करने लगी। मोबाइल देखने का समय न मिलने के चलते सौरभ के बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वो फिर से अपनी स्वप्निल दुनिया में खो गई और उसे अपने आसपास का होश भी नहीं रहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इजहारे प्यार। अब तक आपने सुना, अपने अकेलेपन से तंग आकर प्रीति फेसबुक पर सौरभ से बात करने लगी। अब उसे श्रेयांश के समय ना देने से कोई शिकायत नहीं होती, वो खुश रहती। अब आगे इतने में श्रेयांश ने प्रीति के हाथ से फोन छीन लिया और मैसेजेस पढ़ने लगे। वो बहुत ही सहज और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सब कुछ जान लेने के बाद भी वो संयमित ही रहे। उस दिन श्रेयांश के सामने प्रीति के सब्र का बांध टूट गया। आई एम सॉरी श्रेयांश, मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। आपके टूर्स, ऑफिस के चलते आपको मेरे लिए समय ही नहीं मिलता था। आप देर से घर लौटते थे तो भी फोन पर ही बात करते हुए, और फिर खाना खाते हुए भी लैपटॉप आपके चेहरे के सामने होता था। आपके लिए अपनी फीमेल को नहीं, क्लाइंट्स को उनकी ईमेल का रिप्लाई देना ज्यादा जरूरी लगता है। काम के दबाव में आपकी झल्लाहट और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करती थी। प्यार प्यार रोमांस आपको बहुत बचकाना और फैंटेसी लगते थे। मैं आपके प्यार के लिए वक्त के लिए तरस गई थी। सौरभ ठीक ऐसे ही वक्त मेरी जिंदगी में आया जब मैं अकेलेपन के कारण डिप्रेशन में जा रही थी। और ये कहते हुए वो श्रेयांश से लिपट कर रोने लगी। प्रीति ने खुद को संयत करते हुए आगे कहना शुरू किया, मैं रोने के लिए एक मजबूत कंधा चाहती थी, पर मेरे हिस्से में हमेशा तकिया ही आया। मेरे आंसू प्रेम की संवेदनाओं के रेशे मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, पर वो सब हमेशा आपके सामने रहने वाली स्क्रीन पर ही उलझ कर रह जाते। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। हम शादी करते हैं इसलिए कि हमें एक साथी की जरूरत होती है, पर समय के साथ ये उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार जताना भी तो उतना ही जरूरी है ना जितना प्यार करना। ये दिल मांगे मोर स्वीट हार्ट। मैं कुछ पलों के लिए सिर्फ आपकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती थी। शादी के कुछ ही सालों में मैं बस माँ और आप पापा बनकर रह गए। मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना, और मैं रात दिन इतनी मेहनत तुम्हारे और मायरा के लिए ही तो करता हूं ना, जिससे तुम दोनों को सारे जहान की खुशियां दे सकूं। श्रेयांश ने प्रीति के आंसू पोंछते हुए कहा, अक्सर ऐसा ही होता है, हम भौतिक सुखों की चाह में जीवन की सच्ची खुशियों को बहुत पीछे ढकेल देते हैं, और शादी का असली उद्देश्य यानी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना, भावनात्मक सहयोग देना, कहीं छूट जाता है। प्रीति कहती जा रही थी और श्रेयांश उसे पहली बार इतनी ध्यान से सुन रहे थे। प्रीति को महसूस हुआ आंसुओं से उसकी पलकों में 2 महीनों से बसे हुए सारे

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इजहारे प्यार। अब तक आपने सुना, प्रीति अपनी नीरस जिंदगी से तंग आकर फेसबुक पर सौरभ से बात करने लगी। अब वो खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन श्रेयांश ने उसे चैट करते हुए पकड़ लिया। प्रीति उसके सामने बिफर पड़ी। उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। उसने श्रेयांश से कहा कि वो इतना व्यस्त रहता है कि प्रीति खुद को बहुत अकेला और डिप्रेस्ड फील करती है और इसीलिए वो इन सब चक्करों में पड़ गई। श्रेयांश ने उसे माफ कर दिया। अब आगे। अगले दिन शाम को प्रीति अपने बेड की क्विल्ट तैयार कर रही थी। मायरा को भी कितना टोके, वो सारा दिन बेड अस्त व्यस्त कर देती थी और श्रेयांश को अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद नहीं थी। चद्दर पर पड़ी सिलवटों को देखकर उनके माथे पर भी सिलवटें उभर आएंगी। इतने में श्रेयांश ने पीछे से आकर प्रीति को पकड़ लिया। प्रीति ने चौंक कर खिड़की के बाहर की तरफ देखा और उसके बाद घड़ी की तरफ, जो 5:30 बजा रही थी। यानी श्रेयांश भी नवंबर की छुलबुली ठंडक भरी शाम की तरह ऑफिस से कुछ जल्दी लौट आए थे। शायद इन 10 सालों में पहली बार। कोई और दिन होता तो श्रेयांश ऑफिस से आते ही कुशन को अपनी बाहों में लेकर सोफे पर उल्टे लेटे टीवी देखने लगते, पर उस दिन तकिया की जगह उनके बगल में प्रीति थी। मैंने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दे दी है, अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना। मैंने कल ही डलहौजी जाने के लिए टैक्सी और 5 दिनों के लिए होटल में रूम बुक करा लिया है। माहिरा को तुम मम्मी के यहाँ छोड़ देना। इट विल बी ओनली यू एंड मी टाइम। अच्छा बताओ, हमारी 10th एनिवर्सरी पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? श्रेयांश बोले, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ एक प्यारी सी हग, बस इतना सा ख्वाब है। प्रीति ने नजरें झुकाते हुए ये कह दिया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू पलकों से सरक कर गालों पर लुढ़क आए। श्रेयांश ने उसके सिर पर चुंबन देते हुए कहा, इस एपिसोड से मैं शादीशुदा जिंदगी में प्यार की अहमियत को अच्छे से समझ गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उनकी बातों में कब शाम को हल्के से समेट रात की आगोश में तारे सरक आए, उन्हें पता ही नहीं चला। उस रात प्रीति सालों बाद इतनी सुकून से सोई, एक मुस्कुराती हुई मीठी सी नई सुबह के इंतजार में।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी इजहारे प्यार। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके उस पसंदीदा कार्यक्रम का जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहां हम बात करते हैं कुछ कलाकारों की, कुछ यादों की, कुछ गीतों की, कुछ नगमों की और कुछ उनके किस्से कहानियों की। पर आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा हटके है। कारण ये है कि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गीतों भरी कहानी। अब गीतों भरी कहानी ये क्या है, आपके जहन में जस्ट यही सवाल आया होगा ना। हाँ, तो आज एक कहानी और कुछ नगमे। ये वो कहानी है जो कभी हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से गुजरती है, और कहानियाँ तो एक दूसरे से रिलेटेड ही होती हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी आज के इस रात के सफ़र में आपको ले चलेगी गीतों भरी कहानी की ओर। जी हाँ, लेकिन उससे पहले वो गाना जो कि जितनी भी दफ़ा सुना जाए और अगर किसी सफ़र में किसी को डेडिकेट किया जाए तो बेशक आज, कल और हमेशा गुनगुनाया जाता है, वही गीत पाकीज़ा मूवी से, चलते चलते यूं ही कोई

तो दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत के इस सफरनामे में हम चल रहे हैं उस गीत भरी कहानी की ओर, जो किसी के जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो है कौन और क्या कहना चाहते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। ये कहानी एक स्त्री की है, एक लड़की की है, या यूं कह सकते हैं कि हर किसी की है, हर उस लड़की की जिसने ये दौर फेस किया। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से, मौसम फरवरी का, भोर होने को थी, हवा में फरवरी माह की हल्की सी ठंडक, ट्रेन लगभग खाली थी, ऊपर की पूरी बर्थ पर स्टोरी की प्रमुख महिला पात्र यानी संध्या, उम्र लगभग 23 वर्ष, जो कि खड़ी धारी के सफेद सलवार कुर्ते में लेटी थी, उसके ऊपर एक हल्का सा चादर और काला कढ़ा हुआ शाल था। जस्ट नीचे की पूरी सीट पर कहानी का नायक यानी राजू, उम्र लगभग 25 वर्ष, वो भी नीचे की बर्थ पे लेटा था। दूसरी साइड में नीचे संध्या के चाचा और ऊपर संध्या की माँ माला जप कर रहे थे। राजू ने कैसे भी संध्या के चेहरे की एक हल्की सी झलक पा ली थी, फिर उसे क्या हुआ, उसको चढ़ गया बुखार। ये बुखार कैसा, ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे जनाब। कहानीकार को लगा कि जैसे संध्या ने भी उनींदी आंखों से राजू की झलक पा ली थी, अब दोनों को एक जैसा बुखार था। बुखार यानी वो बुखार जो हर दफा चढ़ने की फिराक में होता है और एक दूसरे के दीदार में होता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए राजू की तरफ से एक गाना बनता है, तो चलिए फिर देर किस बात की। और जिस तरह से आज के इस कहानी का सिचुएशन है, उस सिचुएशनल सॉन्ग की ओर चलते हैं। सॉन्ग के बोल है, ऊपर वाला जानकर अनजान है, अपनी तो हर राह एक तूफान है। होता है ना, जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, पहली झलक के बाद ही एक तूफान सा उबड़ पड़ता है, बुखार सा चढ़ जाता है, किसका, प्यार का। मूवी है काला बाजार, आइए आनंद लेते हैं इस नगमे का।

दोस्तों होता है ना कि हर कहानी में एक मोड़ आता है और हर बातचीत कहाँ थमती है, थोड़ी सी जान पहचान पे आके। तो इसी तरह हमारे हीरो पात्र यानी राजू की बात आके थोड़ी सी आगे बढ़ी, मतलब संध्या के चाचा और माँ दोनों ही गीत को सुनकर भाव विभोर हो उठे। गाना खत्म होते ही उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया और कहा।

फैक्ट्री में चौकीदार थे। शराब बहुत पीने के कारण बहुत बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और मृत्यु के बहुत ही करीब थे। फफक कर रो पड़ी संध्या। इस बीच राजू भी कई बार वहां आया। दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आए। राजू और संध्या अस्पताल की कैंटीन में मिलते तो कभी कभी लॉन में वक्त बिताते। संकट की घड़ी में राजू ने संध्या को सहारा दिया। यहाँ के विषाक्त वातावरण में जीना और ड्यूटी करना बहुत कठिन था। कंपनी ने कुछ खर्चे तो उठाए पर फिर लापरवाही करने लगी। संध्या के पिता ने गुड़गांव में ही बसे एक परिवार से संध्या की शादी की बात रखी थी, पर लड़के वाले बाद में लालच के कारण किनारा काट गए। ऐसे में राजू ने संध्या के चाचा व पिता दोनों से आज्ञा लेकर परस्पर विवाह की अनुमति प्राप्त कर ली। कुछ ही दिन बाद संध्या के पिता स्वर्ग सिधार गए। फिर वे सब अपने गांव लौट आए। राजू वहीं रह गया। वहां के उन्मुक्त वातावरण का लोभ वो त्याग ना सका। दिन बीतते रहे, दुख पर धूल पड़ती गई। एक बार फिर राजू गुरुग्राम से वापस आया तो राजू ने फिर संध्या से विवाह की बात रखी। गांव के प्रधान एक भले इंसान थे, उन्होंने सरकारी खर्चे पर दोनों की शादी करवा दी। संध्या के चाचा ने वेदी पर बैठकर उनका विवाह संपन्न करवाया। चाचा और प्रधान ने संध्या के पैर पूजे यानी पांव पूजन किया और कन्यादान भी किया। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसकी हर स्त्री को चाहत होती है। राजू और संध्या ने प्रेम के गीत गाए। चलिए, पर हम क्यों गानों को सुनने से देरी करते हैं, बढ़ते हैं इस नगमे की ओर जिसके बोल है चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। मूवी है इंसान जाग उठा, मधुबाला और सुनील दत्त जी की जोड़ी, रफी और आशा जी की युगल जोड़ी जिन्होंने इसको स्वरों से सजाया, शैलेंद्र जी की लिरिक्स और एस

तो इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं आगे कहानी में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गीतों भरी कहानी को, जो कि किसी की जिंदगी का एक किस्सा है। वो है कौन, वो आपको जरूर बताएगी आपकी आरजे अनोखी। लेकिन उससे पहले कहानी का एक और पार्ट। विवाह हो गया, प्रेम के गीत गाए गए, फिर राजू गुरुग्राम चला गया, दिन बीतते गए। जब संध्या उदास होती तो अपने बचपन के स्कूल चली जाती और प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खो जाती।

जी हाँ, संध्या भी सोचती कि ये कौन चित्रकार है जिसने इस धरती को सजाया, इसको बूंदों बूंदों से संजोया। अब कहानी का वो हिस्सा जो इस कहानी को और आगे बढ़ाएगा। दिन महीने और फिर एक साल बीत गए। राजू पैसे नहीं भेज रहा था। संध्या बहुत स्वाभिमानी थी। किसी के आगे हाथ फैलाने की सीख उसकी स्वर्गवासी माँ ने नहीं दी थी। अब वो एक बच्चे को भी जन्म देने वाली थी, कैसे काम चलेगा, इन सब चीजों से चिंतित रहती थी। पति से बात की पर पति ने भी वहाँ के रंग ढंग सीख लिए थे, यानी शहर के। वहाँ विविध संस्कृति का अमलगम था, वो भी उसी में ढल चुका था। संध्या ने अपनी स्थिति बताई तो उसने घर का खर्च भी उठा पाने से इनकार कर दिया। संध्या का दिल टूट गया। उधर आर्थिक रूप से संपन्न न होने के कारण राजू भी हालात से हार मान गया और दुर्व्यसन में फंस गया, बुरी तरह से पीने लगा। संध्या पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाने लगा। संध्या पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। माहौल गमजदा हो गया था।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत और आज हम बात कर रहे हैं गीतों भरी कहानी की। ये कहानी संध्या और राजू की है। कहीं ना कहीं हर आम लड़की में हर दसवीं लड़की ऐसी पाई जाती है। चलिए बढ़ते आगे कहानी की ओर। संध्या बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी अपने हालातों में, अपनी चिंताओं में। ऐसे कठिन समय में गांव के प्रधान ने पिता के समान उसका संरक्षण किया। उपवन नाम की एक योजना गांव में आई जिसके अंतर्गत संध्या को कुछ आर्थिक सहायता दिलवाई और पौधशाला की योजना में उसे स्त्री समूह बनाने को कहा। उसकी बच्ची भी अब 3 वर्ष की हो चुकी थी। कभी कभी पापा को पूछती तो संध्या उसे किसी तरह बहला देती। वहीं संध्या आज अपनी पौधशाला के चलते आज कम से कम 30 परिवारों का सहारा हो चुकी है। उसकी उपवन पौधशाला आसपास के गांवों की महिलाओं को प्रेरणा दे रही है। पौधशाला के पौधे, फूल और फल, औषधीय पौधे और संध्या खुद लोगों को दुख से उबारने का माध्यम बन गई है। उसकी बच्ची ही उसका सहारा और लक्ष्य है। विधि के विधान आज तक न कोई समझ पाया है न ही समझ पाएगा, पर आप जरूर सुनेंगे ये वाला गाना जिसके बोल है किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, फिल्म एक फूल दो माली से।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम एंजॉय कर रहे हैं गीतों भरी कहानी को, और अब वो पड़ाव आ गया है संध्या के जीवन में जब कहीं ना कहीं हम सभी अपनी लाइफ से भी इसको रिलेट कर पाएंगे कि पहले तो बहुत कठिन वक्त आता है, फिर हम अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अब संध्या की जिंदगी में परेशानियों से हटके कुछ अच्छा हो रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री ने उस समूह को संज्ञान में लेकर गांव में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें संध्या को सम्मानित करने माननीय जिलाधिकारी महोदया को आदेशित किया गया है। सारे गांव में उत्सव सा माहौल है, रंगोली वंदनवार सजाए जा रहे हैं। प्रधान जी अब और बूढ़े हो चले हैं, सारे अधिकारियों की उन्होंने अगवानी की, स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत गाया, स्वल्पाहार हुआ, सभी अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आसपास के गांव के सभी लोगों के सहयोग की पूरी पूरी प्रशंसा की। संध्या ने सबको नम आंखों से विदा किया और धन्यवाद कहा।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना दिन ढल जाए, जो कि है मूवी गाइड से 1965 में जो कि आई थी। स्वर दिया था मोहम्मद रफी साहब ने। अब कहानी का अगला पड़ाव। और संध्या की खुशी में ये खुशी बस उसके सम्मान तक नहीं थी, एक खुशी की बात और हुई। माननीय जिला अधिकारी महोदया ने संध्या की बच्ची का आजन्म, पढ़ाई एवं विवाह तक के खर्चे सरकार द्वारा उठाए जाने का लिखित आदेश किया। संध्या ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में कृतज्ञता आंसू बहकर उमड़ पड़ी थी। जिला अधिकारी ने उसकी पीड़ा और खुशी के आंसू पोंछकर गले से लगा लिया, जैसे दो बहनें परस्पर मिलती हैं। थालियों की आवाज से पंडाल

इस प्रकार सभी प्रमुख वक्ताओं ने आज के बदलते परिवेश में बड़े शहरों की ओर पलायन और वहां की विकृत संस्कृति से घरों के तबाह होने से बचने के प्रति आगाह किया। सबने अनुभव किया कि संध्या की गृहस्थी को कैसे शराब निकल गई। शराब से बचने के लिए गांव में या गांव के आसपास ही कोई कार्य किए जाने पर बल दिया और बताया कि शहरों की प्रदूषित वायु और जल वहां जाने वालों की आयु कैसे 10 वर्ष कम कर दे रही है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। चलिए अब एक नगमा आपको और सुनाते हैं और फिर आपसे विदा लेने का वक्त हो चलेगा। गाने के बोल हैं अज्जी रूठ कर अब कहां जाइएगा। फिल्म आरजू 1965 में जो रिलीज हुई थी और आवाज से इसे सजाया है लता।

संध्या ने अपने समूह के प्रांगण में एक शिव जी का मंदिर बनवाया और प्रतिदिन अपना काम समाप्त करने के बाद अपनी बच्ची को लेकर वहां जाती और बच्ची से कहती, भगवान जी से कहो ये चाहे तो तुम्हारे पापा वापस ला सकते हैं। वर्षों बीत गए। एक रात भीषण वर्षा हुई। सुबह जब संध्या ने द्वार खोला तो दयनीय अवस्था में उसके पति द्वार पर पड़े थे। उसने पहचाना, इससे पहले कि कोई और देखे वह उन्हें घर के अंदर घसीट लाई। बच्ची के उठने से पहले उसने अपने पति को साफ सुथरा कर डाला। उसके पति संध्या के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैंने तुम्हें बड़े कष्ट दिए, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मेरी बच्ची को लाओ, मैं अब उसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि संध्या कुछ कहे, पीछे से उसकी बच्ची खड़ी पूछ रही थी, क्या भगवान जी ने मेरी बात मान ली, ये मेरे पापा है ना। संध्या अपना मुंह अपनी आंचल में छिपाकर फफक फफक कर रो पड़ी। फिर तुरंत ही संभल कर अपनी बेटी और पति को चिमटा लिया और बोली, हाँ बेटी हाँ, ये ही है तुम्हारे पापा, और दूसरे कमरे में भाग गई। अंदर से कुंडी लगाकर अपने स्वर्गवासी पिता की फोटो सीने से लगा, बोली, पिताजी धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से आज का आपका भूले बिसरे नगमों का ये सफर यहीं पे थमता है और उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बेशक पसंद आई होगी, क्योंकि ये गीतों भरी कहानी किसी के जीवन का हिस्सा है और इस कहानी का पूरा श्रेय उस कहानीकार को जाता है जिनका नाम है अंजनी श्रीवास्तव। जी हाँ, हम सभी में से एक पर किसी एक दर्द से परिपूर्ण स्त्री की कहानी को उकेरती उनकी कलम आज आप तक पहुंचाने का बस इतना ही माध्यम कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है। आस बांधे रहे, निराश मत हो। फिलहाल सुनते हैं ये नगमा बतौर तोहफा आपकी अपनी आरजे अनोखी की ओर से। फिर मिलेंगे किसी और नए किस्से कहानी या कलाकार के साथ में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता